महत्वपूर्ण आसन है, लेकिन जब हम उसके आगे उत्कृष्ट लगा देते हैं तो उसका मतलब है कि वह श्रेष्ठता में सबसे आगे और उत्तम सबसे महत्वपूर्ण। तो आइए हम उत्कृष्ट के बारे में पहले जान लेते हैं कि उत्कृष्ट क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है। उत्कृष्ट का अर्थ होता है हम जिस भी एक बात को उच्चारण करते हैं, जिस बात को हम सोचते हैं, जिस काम को हम करते हैं, वह अपने आप में श्रेष्ठ हो, अच्छे से अच्छा और सर्वोत्तम माना गया हो। सर्वोत्तम का मतलब होता है ऊपर से उठाया हुआ, यानी कि एक महत्वपूर्ण भाग। तो आज उत्कृष्ट को हम उसके एक शब्द का अर्थ और कहते हैं, जो कि है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का किसी चीज में वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होने का गुण ही प्राप्त करना उत्कृष्टता को दर्शाता है। वह इसलिए क्योंकि यदि कोई अपने में बहुत महत्वपूर्ण या श्रेष्ठ है तो उसे उत्कृष्टता की उपाधि से नवाजा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई आसन प्राणायाम अपने आप में श्रेष्ठ, उत्तम और सबसे ऊपर की स्थिति से उठाया गया हो, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए अब हम करते हैं उत्कृष्ट उष्टासन। तो उष्टासन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उष्टासन है क्या। उष्टासन के कई प्रकार हैं, कैसे करना चाहिए, कितनी सावधानियां होनी चाहिए और किस समय यह करना चाहिए। तो सबसे पहले उष्टासन के बारे में हम आपको बता दें। साधारणतः यह बोला गया है कि उष्टासन उष्ट आसन यानी कि ऊठ मुद्रा में आधुनिक योग से व्यायाम के रूप में घुटने के बल पर झुकने वाला आसन है। लेकिन यह मेन जो इसका काम होता है, यह रीढ़ की हड्डी को, पैर को, कंधों को सुव्यवस्थित करने का आसन है। उष्टासन जैसे कि नाम से ही विदित है, ऊंट का आसन, ऊंट का आकार, यानी कि ऊंट की तरीके से यह अपनी शरीर की गति को मोड़ करके और उसी की तरीके से यह रूप देने वाला आसन है। तो सबसे पहले हम उष्टासन करेंगे और किस प्रकार से करेंगे वह हम जान लेते हैं। उष्टासन करने का सबसे आसान सा तरीका यह है कि वज्रासन में बैठ जाएं, यानी कि हम किसी साफ सुथरी मैट पर या चटाई पर या चद्दर बिछा करके एक शांत वातावरण में बैठ जाएंगे। उत्कृष्ट उष्टासन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने आप में यह सर्वप्रथम और उत्तम माना गया है। यह उष्टासन बाजुओं को धड़ के साथ एक साथ घुटनों पर खड़े होने पर इतनी ऐसी क्रियाओं पर बताता है कि सारी शरीर की मांसपेशियों तक एक महत्वपूर्ण बल आता है। तो सबसे पहला जैसे बताया कि वज्रासन में बैठ जाएं, एक शांत चित्त वातावरण में अपने मन को, चित्त को एकाग्र करते हुए मुखमंडल पर एक प्यारी सी भीनी सी मुस्कान के साथ में आगे बढ़ते हैं। बाजुओं को धड़ के साथ रखकर घुटनों पर खड़े हो जाएं। लेकिन अगर यह मुश्किल लगे तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। अब पीछे की तरफ आपको झुक जाना है और दाएं हाथ से दाएं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ें। आपका धड़ पीछे की ओर मुड़ा होना चाहिए, आंखें आकाश की तरफ सीधी। उष्टासन की यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है, यदि आप कर ले जाएं तो बहुत ही आसान है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। जैसे रीढ़ की हड्डी अगर नहीं मुड़ रही है तो भी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उष्टासन कितनी बार करना चाहिए और सबसे पहले विधि। उष्टासन को करने के लिए कमर से पीछे की तरफ झुकना है और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करनी है। गर्दन को पीछे की तरफ ले और फिर उसमें खिंचाव महसूस करें। इस मुद्रा में रहकर 5 से 6 बार श्वास आपको लेना है और आराम से सीधे होकर के श्वास को छोड़ देना है। उष्टासन से कौन सा रोग दूर होता है, आइए हम आपको बताते हैं। उष्टासन करने से

जिन्होंने सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी में पस भर जाना, पानी भर जाना, घुटनों की दिक्कत या सारी परेशानी ठीक होती है। और उष्टासन करने से आपकी रुकी हुई लंबाई यानी कि हाइट भी बढ़ सकती है। थायराइड के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उष्टासन

एक दिन में 30 मिनट तक ही करना है, क्योंकि उष्ट्रासन अपने में एक महत्वपूर्ण आसन है लेकिन उतना ही कठिन भी है। तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में आप इसे थोड़ी ही देर करें। आइए अब हम आपको बताते हैं उष्ट्रासन की लाभ और उष्ट्रासन की सावधानियाँ। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि भारत ने प्राचीन काल से ही दुनिया को ज्ञान विज्ञान का तोहफा दिया है। योग भी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। भारत के योगियों में शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ बनाने के लिए अलग अलग आसनों की जानकारी हम आपको देते आते हैं। हजारों सालों से आसन, प्राणायाम, मुद्राएं हमें स्वास्थ्य का तोहफा देते आ रहे हैं। ऐसे वक्त में हम रोज पहले से कहीं ज्यादा तनाव जो झेलते थे वह अब हम कम कर रहे हैं योग के माध्यम से। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं योगासन में जो कि है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में शरीर ऊंट की आकृति का बन जाता है और यह आसन को अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहते हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में मुश्किल हालातों में भी आसानी से रह सकता है, अगर इस आसान तरीके से इस आसन को अभ्यास को नियमित तौर पर किया जाए तो यह शरीर से हर शारीरिक और मानसिक परेशानी को दूर कर सकता है। लेकिन उष्ट्रासन से पहले कुछ जरूरी महत्वपूर्ण सावधानियां हैं इस आसन को करने के लिए। उष्ट्रासन में रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। इस आसन का अभ्यास अन्य योगियों के अनुसार सुबह के वक्त किया जाता है। अगर किसी कारण से इस आसन का अभ्यास सुबह के वक्त न किया जा सके तो इसे शाम के वक्त भी किया जा सकता है। शाम को अभ्यास करने से ही यह समान लाभ देता है, लेकिन उष्ट्रासन का अभ्यास से पहले हमेशा शौच कर लेना चाहिए। खाली पेट इस आसन का अभ्यास करने पर सर्वप्रथम इसके नतीजे आपको मिलते हैं। अगर आप शाम को ये आसन करने जा रहे हैं तो भोजन कम से कम 6 घंटे पहले आपको कर लेना है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप उष्ट्रासन को करने के बाद में इसके फायदे। यह आसन पाचन सुधारने में मदद करता है, क्योंकि ये पेट के भीतर मौजूद सभी अंगों की हल्की सी मालिश करता है। उत्कृष्ट उष्ट्रासन के अभ्यास से सीने और पेट के निचले हिस्से से अतिरिक्त चर्बी भी कम होती है। ये कमर और कंधों को मजबूत करता है। ये कमर के निचले हिस्से में दर्द कम करने में मदद करता है। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। शरीर का पोस्चर सुधारने में भी आसन मदद करता है। अब हम जान लेते हैं यह आसन हमारे लिए क्या सावधानियां लेकर के आया है। सावधानियां तो हमने आपको बता ही दी और साथ ही साथ हमने इसका उपचार भी आपको बताया है। इसीलिए दोस्तों यह जो आसन है उष्ट्रासन उत्कृष्ट उष्ट्रासन क्यों बना यह मैंने आपको एक परिभाषित के रूप में किया। सभी लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि इस आसन को बहुत अच्छे से आपको करना है। कोई भी प्राणायाम कोई भी आसन यदि हम पूर्ण रूप से लगन से करें तो उसका समुचित रूप में हमें लाभ मिल सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हम अगर एक अच्छी नींद लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक लहर सी होती है अगले दिन अच्छा काम करने की। ठीक उसी तरीके से यदि हम योग अभ्यास से जुड़ेंगे तो हम स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और हम अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों को स्वस्थ रख पाने में कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे एक नए योग आसन के साथ, एक नए योग आसन के साथ जुड़े हुए नए शब्द के साथ। अभी हम सब मिलकर योग आसन तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करेंगे यानी कि ध्यान योग। सभी से एक बार फिर से करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं

समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एक नई सीरीज चल रही है जिसमें हर एक योग आसन के साथ में एक प्रमुख नाम को जोड़ा गया है जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा असर है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को हम अपने जीवन के साथ अगर जोड़ देते हैं तो उसके साथ में उसका महत्व भी अभिन्न रूप से हमारे साथ जुड़ जाता है। जैसा कि हम अपनी अगली श्रृंखला में चल रहे हैं, एक योग की श्रृंखला में चल रहे हैं जो कि है योगासन, जिसे बोट पोज भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ नौकासन के बारे में जानना ये आसान नहीं होगा, इसीलिए इस नौकासन को एक नाम दिया गया है जो कि है अलौकिक नौकासन। अलौकिक नौकासन इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये अपने आप में एक अलौकिक रूप से काम करता है। जो आसन हमें संपूर्ण रूप से हमारी पेट की मांसपेशियों के साथ में एक संतुलन बनाता है वो एक अलौकिक ही तो हुआ, जो हमारे पूरे शरीर को एक संतुलित आहार की तरीके से काम करता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि हमने पेट के अंदर वो खाना गया, लेकिन क्या आपको पता है कि खाना कहाँ से गुजरता हुआ कहाँ को गया है और उसके बाद में ये खाना कितनी देर में पचेगा और हर एक खाने की, हर एक कौर की क्या पोषक तत्व मिलेंगे या उनका महत्व क्या है। ठीक वैसे ही हम आसनों को तो कर जाते हैं लेकिन हर एक आसन के पोज की, हर एक आसन की, हर एक पॉइंट की अलग अलग महत्ता होती है, जैसे कि नौकासन। तो आइए अब हम जानते हैं नौकासन अपने आप में अलौकिक नौकासन क्यों है। योग एक असरदार आसन होता है ये सभी जानते हैं, जो हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और संतुलन बढ़ाता है। तो आइए इसे हम किस तरीके से करते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके फायदे। नौकासन करने से, अलौकिक नौकासन को करने से पेट की चर्बी घटाने और कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है। पाचन तंत्र को इस तरह सक्रिय करता है, जो बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं उन्हें एक अपने शरीर में आकार मिलता है और जो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं उन्हें अपनी चर्बी को घटा करके उन्हें एक संपूर्ण और सुदृढ़ आकार मिलता है। कमर और जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फोकस और बैलेंस बेहतर और मजबूत होता है। अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसको करने की विधि। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये वार्म अप 2 से 3 मिनट का मिनी डेली रूटीन होना चाहिए, यानी अगर हम इसे 10 मिनट का एक मिनी रूटीन के रूप में देख रहे हैं तो 2 से 3 मिनट पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप में क्या करना है, हल्की गर्दन को घुमाना है 30 सेकंड, दाएं से बाएं गर्दन को घुमाते हुए कंधे को रोल करते रहना है 30 सेकंड, बैठकर हल्का आगे पीछे घुमाना, यानी गर्दन को पहले आगे झुकाना फिर पीछे की ओर झुकाना, वो 1 मिनट। उसके बाद में अब नौकासन शुरुआती वजन के हिसाब से करना चाहिए। पहले 10 मिनट का एक डेली रूटीन बनाने में हमारे 2 मिनट वार्म अप में गए, अब 3 मिनट का हमें एक और वार्म अप करना है जो कि वजन के हिसाब से है। घुटने मोड़े रखें, हाथ सामने 15 सेकंड, 3 राउंड आपको पकड़ना है, यानी घुटनों को मोड़ करके हाथों को सामने करना है और हर राउंड के 20-20 और 30 सेकंड आराम से करते जाना है। उसके बाद में अब आपको नौकासन की स्थिति में आ जाना है। नौकासन की स्थिति को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम किसी शांत वातावरण के स्थान पर बैठ जाएं। जमीन पे बैठ रहे हैं तो इसका लाभ हमें दुगना मिलता है। योगा मैट या कोई भी चद्दर आप बिछा लें और उस पर आप पेट के बल सीधे लेट जाएं। याद रखें दोस्तों, पेट के बल नहीं, पीठ के बल। हाथों को भी समांतर रखें। श्वास को मध्यम गति से धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। दोनों पैर, दोनों हाथ, धड़ व सिर को एक साथ जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ध्यान रहे सिर और पैर लगभग एक ही ऊंचाई पर रहें। जितनी देर इस अवस्था में आप रह सकते हैं उतनी देर आप रुकें। अन्यथा धीरे धीरे पैरों को नीचे करें और हाथों को भी समानता स्थिति में लाते हुए अपने कंधों को जमीन पर रख दें। ये आसन पूर्ण नौकासन कहलाता है। यही क्रम अब आपको 2 से 6 बार की स्थिति में दोहराना है। ये द्वितीय प्रकार से भी आसन हो सकता है। ये आपका पहला क्रम था जो कि अलौकिक नौकासन। दूसरा इसका प्रकार है
जिसे आपको हाथों को लंबे रखना है और उंगलियों को आपस में मिलाकर सिर के पीछे वाले हिस्से पर लगभग 1 फीट की पैर और कंधे आपको उठाने हैं। इस प्रकार यह आसन अर्ध नौकासन कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अनाहत चक्र पर रहता है। श्वास क्रम, यदि कब्ज हो तो पहले श्वास लें और ऊपर उठते समय व अंतिम स्थिति में एवं वापस आते समय अर्ध कुंभक करें, इसके बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके जो उपचार हैं और लाभों को एक साथ एक ही तरह। इस आसन से पीठ बहुत ज्यादा मजबूत होती है, पेट की आंतों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, यह पेट की आंतों पर अच्छा प्रभाव डालता है। पैरों को बल मिलता है, बुढ़ापे में पैरों का कांपना बंद होता है। अपने स्थान से हटी हुई नाभि को भी ठीक करता है। कई बार आपने सुना होगा कि नाभि यानी हमारी नाप उखड़ गई है, तो इस आसन को अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो हमें यह दिक्कत नहीं होती है। इस आसन को नियमित करने से महिलाएं अपने स्त्री रोगों को भी लाभ तक पहुंचा सकती हैं और साथ ही साथ में हमें एक सुदृढ़ रूप और एक आकार भी मिल सकता है। अब आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ इसकी सावधानियाँ, क्योंकि कहते हैं ना, जब लाभ है तो उसकी सावधानियाँ भी होती हैं। कमर दर्द, हर्निया या गर्भावस्था में ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस योगासन को कर रहे हैं तो योग प्रशिक्षण की सलाह में ही करें। गर्दन या कंधों पर अधिक जोर न डालें। दर्द हो तो तुरंत इस आसन को करना छोड़ दें। तो ये था दोस्तों अलौकिक नौकासन, जो कि हम सभी ने मिलकर के किया। इसकी नियमित रूप से बताई गई सारी सावधानियाँ, उपचार और लाभों को हम यदि प्रतिदिन नियमित रूप से करेंगे तो हमें कई इसके लाभ मिलते रहेंगे। आइए हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए नाम, एक नए सीरीज के साथ। तब तक करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ध्यान पहले से खूब ज्यादा रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग के उन 5 नियमों के बारे में और उन नियमों को हम विस्तार से भी जानेंगे, ताकि हमें योग जब हम करते हैं तो योग से ही संबंधित ये 5 नियम भी हम साथ साथ समझते और करते चलें। अष्टांग योग के 8 अंगों का में दूसरा अंग नियम है, सबसे पहले इसमें शौच, संतोष, तप आदि जैसे 5 नियम होते हैं। ये नियम महत्वपूर्ण माने गए हैं। अष्टांग योग के नियम स्वयं शुद्धि के लिए होते हैं और जिसके लिए हमें ये दिन प्रतिदिन करना चाहिए, जो हमारी शारीरिक शुद्धि शुद्धि और मानसिक शुद्धि का भी साथ साथ में करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं अष्टांग योग के 5 नियम। उसमें सबसे पहला है शौच। यहाँ शौच का मतलब मन और शरीर की पवित्रता से होता है, यानी सिर्फ शरीर को साफ कर रखना ही शौच नहीं है, बल्कि मन से गलत भावना को भी हटाने का दूसरा नाम शौच ही है। अष्टांग योग के शौच के नियम में मन की अंतः शुद्धि, द्वेष आदि का त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने की प्रक्रिया होती है। इसीलिए शौच का मतलब यहाँ पे मन और शरीर की पवित्रता से है। दोस्तों, अष्टांग योग का दूसरा नियम है संतोष। इसे समझना मुश्किल नहीं, लेकिन निभाना जरूर मुश्किल है। कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसमें संतुष्टना, या जो कुछ परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रखना ही संतोष है, और यह अष्टांग योग का दूसरा नियम है। जान लेते हैं दोस्तों अष्टांग योग का तीसरा नियम, जो है तप। तप या तपस्या का अर्थ होता है मन और शरीर को अनुशासित रखना। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख जैसे द्वंद्वों को सरल करते हुए सहन करते हुए मन व शरीर की साधना भी तप है। चौथा नियम जान लेते हैं दोस्तों, जो है स्वाध्याय। स्वाध्याय में केवल वेद,
वेदांतों का ही ज्ञान अर्जित करना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को खुद के बारे में भी चिंतन करना जरूर, स्वयं का अध्ययन करना अवश्य चाहिए क्योंकि हम खुद में भी सुधार कर सकें। विचारों में शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग आदि का आदान प्रदान स्वाध्याय है। जान लेते हैं दोस्तों अष्टांग योग का पांचवा नियम यानी आखिरी नियम, ईश्वर प्रतिधान। पांचवा नियम जान लेते हैं, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था रखना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इस नियम का पालन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है मनुष्य का आंतरिक निर्माण, ताकि अपने आप को हम बेहतर तरीके से जान सकें। मन, वाणी और कर्म से ईश्वर की भक्ति के साथ उसके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन करने जैसे समस्त कर्म ही ईश्वर प्राणिधान है। दोस्तों, आज हमने अष्टांग योग के पांच नियमों के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना और हमें यह कराते हुए या हमें यह बताते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि जो ये पांच नियम हैं, ये प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज से कुछ परे नहीं है। यह भी हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि हमने बताया कि पहला नियम हमारा सोच है, तो सोच को जरूरी नहीं है कि हमारे नित्य प्रतिक्रिया में करने वाला सोच ही के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सोच का मतलब मन से गलत भावना को निकालना भी सोच है। संतोष यानी हमें जो भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, हमें उसमें संतोष ही करना है। तप यानी तपस्या का अर्थ है हमें अपने आप को अनुशासित रखते हुए हर परिस्थिति में तप के साथ में साधना करनी है। चौथा स्वाध्याय यानी हमें अपने किसी भी पुस्तक यानी वो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी अभ्यास हो, विद्याभ्यास, धर्मशास्त्र अध्ययन, सत्संग आदि का आदान प्रदान करना है। पांचवा नियम ईश्वर प्रणिधान। उसके लिए हमको केवल यह जानना है कि हम मनुष्य का आंतरिक निर्माण, अपने आप को बेहतर तरीके से जानना ही है। जब मनुष्य अपने आप को बेहतर तरीके से जान जाएगा, तो वह गलत कामों में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से यह जानकारी हो जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत। तो दोस्तों, आज योग की योग पाठशाला में अष्टांग योग के पांच नियमों को हमने बताया, और ये पांच नियम यदि हम अपनी दैनिक जीवन प्रतिक्रिया में करने लगेंगे और उसे हम अपनाने लगेंगे, तो हम अपने आप को काफी कुछ अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव को देखेंगे। आशा करती हूँ आज का भी आप योग पाठशाला में जो आज का सेक्शन है आपको बेहद अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से

那，有点重。

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

उठिए कि आसमान ने एक नया रंग ओढ़ा है, वक्त ने गुजरे कल का सारा बोझ पीछे छोड़ा है। ये जो सुबह की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है, ये कह रही है कि एक नई कहानी कहीं तो शुरू हो रही है। भूल जाइए कि कल क्या नहीं हो पाया, क्या छूट गया। देखिए आज फिर उम्मीदों का एक नया सूरज उगाया। ये दिन एक कोरा कागज़ है, इस पर अपनी मुस्कान लिखिए। मुश्किलें तो आती रहेंगी, आप अपनी उड़ान लिखिए, क्योंकि हर सुबह एक मौका है ख़ुद को फिर से पाने का, गमों को ढूंढने का नहीं खुशियां चुराने का। तो एक गहरी सांस लीजिए और कीजिए एक प्यारा सा आगाज़, क्योंकि आपका आज का दिन होने वाला है बेहद ख़ास। एंड इसी नोट के साथ गुड मॉर्निंग गोंडा, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 8:31 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपके साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉकी उन्नति, आपके अपने मॉर्निंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा को लेकर के। एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। तो भैया जिनकी सुबह हो गई है जरा वो हाजिरी लगा दें अपनी अपनी, और जिनकी सुबह नहीं हुई है वो क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे हैं? चलिए उठ जाइए, क्योंकि आपकी आज उन्नति मौजूद हैं और अब आपको उठाने ही आई हैं। आपके इस मॉर्निंग को बेहद स्पेशल बनाने आए हैं हम आपके साथ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। तो ज़रा उठिए, बाहें फैलाकर स्वागत कीजिए आज की मॉर्निंग का, एंड एक कप चाय की प्याली उठा करके पहुँच जाइए। फिलहाल इंजॉय करते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा, और आप इंजॉय कर रहे हैं लव यू जिंदगी। अब भैया जिंदगी आपसे लव यू टू कहे, उससे पहले कभी आप भी तो थोड़ी कोशिश कर ले जिंदगी को कहने की। कहते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

हाँ जी, तो भैया एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग के शो गुड मॉर्निंग गोटा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरशी उन्नति, और आते ही आज बहुत ही खूबसूरत पोइट्री से आपका हमने स्वागत कर लिया था। लेकिन क्योंकि हमारे बीच में अब भैया लिसनर जुड़ना शुरू हो चुके हैं और सबकी नींदें खुल रही हैं ना, क्योंकि मेरी खुल चुकी है तो आपकी क्यों ना खुले, और जब हम उठ चुके हैं तो आप क्यों ना उठे। तो आइए आज के दिन की बेहद खास शुरुआत करते हैं, बहुत प्यारी शुरुआत करते हैं, और आज का एक बेहद ही फ्रेश एंड मॉर्निंग वाला थॉट आपको शेयर करते हैं, जो कि कुछ उस तरह से है। जिंदगी हर सुबह हमें दो रास्ते देती है, पहला अपने सपनों को सोते रहिए, दूसरा उठिए और उन सपनों के पीछे दौड़ पड़िए। फैसला आपके हाथों पे है, क्योंकि हर सुबह एक नया मौका देती है। अब ये लाइन तो आप अपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जिंदगी आपको दो मौके दे रही है, पहला या तो सोते हुए जो सपने आप देख रहे हो उनको पूरा करने के लिए आप सोते ही रह जाओ, या जो आपने खुली आंखों से सपने देख रखे हैं उनको पूरा करने के लिए आप जग जाओ। और हमको लगता है कि दोनों सपनों में बहुत डिफरेंस है, जो कि होता भी है, बट सबसे बड़ी बात यह है बॉस कि कौन सा वाला सपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो नींद वाला? कभी कभार इरिटेशन हो जाती है उस वाले सपने के लिए भी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? अगर आपके आंखों को खोल कर देखने वाला सपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जनाब जरा उठिए, और क्योंकि हर सुबह आपको एक नया मौका देती है, एक नई आगाज देती है, तो इसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए, जो कि आप नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं मुझे अभी समझ में नहीं आया। आज तक हमेशा मैं सुनती आई हूं कि लोग कहा करते हैं जिंदगी एक दफा मिलती है उसे पूरी तरह से जियो, और मुझे लगता है जिंदगी हर सुबह मिलती है उसे हर नए अंदाज में जियो। कल जो हुआ है उसे पीछे छोड़ो, आज जो होने वाला है उसकी टेंशन छोड़ो, और उसमें लग जाओ जो आपको चाहिए, जो आपको करना है, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसको लेकर इतनी टेंशन काहे को, काहे सोचते रहते हैं कि अगर पढ़ लिए होते तो 10 नंबर ज़्यादा आ जाता, काहे सोचते रहते हैं यार एक मैसेज की ही तो बात थी, या फिर आज क्या होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। इन सारी टेंशन्स को हम उठते ही अपने सर पर हावी कर लेते हैं और सोचते रहते हैं कि भैया फ्यूचर की भी टेंशन है, पास तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये कैसे चल रही है ज़िंदगी है। तो इन सारे टेंशन्स को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि ज़िंदगी आपको हर सुबह एक नया मौका दे रही है, मौके से भी ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, ज़िंदगी हर सुबह आपको एक नई ज़िंदगी दे रही है। वो अलग बात है कि अब आपको थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। अभी तक जो आप सुनते आए थे कि ज़िंदगी तो एक बार मिलती है, उसको बदल कर अब आपको देखना है कि ज़िंदगी हर बार मिलती है, हर सुबह मिलती है, हर एक नए अंदाज में मिलती है, और अपने सपनों को पूरा करने का हर एक दिन आपको मिलता है। भले ही अभी तक आपने अपने सपनों के लिए कोई भी कदम ना बढ़ाया हो, आप बहुत पीछे रहे हो, या आपने अभी तक कुछ भी ना किया हो, हर एक नई सुबह आपको इस चीज़ का याद दिलाती है, हर एक नई सुबह आपको इस चीज़ को बताती है कि भैया आज कुछ नया कर सकते हो, आज उन सपनों को पूरा कर सकते हो जो शायद आपने नहीं किया। और कभी उम्र की गिनती को लेकर के सपनों को पीछे नहीं छोड़ना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपनी उम्र की वजह से, अपनी एज की वजह से सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, बट जिंदगी में आप उम्र की गिनती सिर्फ आप ही जानते हैं, ज़िंदगी नहीं जानती, आपके सपने नहीं जानते। तो भैया घर में बैठे बैठे क्यों बोर हो रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं, आज एक नई सुबह है, अपने सपनों की उड़ान लिखिए, अपने चेहरे पर मुस्कान लिखिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि आपके मॉर्निंग वाले शो में आशुनती आ गई है आपसे करने बहुत सारी बातें। तो यहाँ भी ज़रा हाजिरी लगाइए और बताइए कि भैया आज से आप अपनी लाइफ में फ्यूचर की टेंशन और पास्ट की ओवरथिंकिंग छोड़कर प्रेजेंट में थोड़ा सा ज़िंदगी जीने वाले हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आइए एंजॉय करते हैं वो गाना जो कि चाइना में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। इवन आज क्या, वो पहले भी ट्रेंडिंग था और हमारा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग आंखें खुली हो या हो बंद, एंजॉय करते रहिए। मतलब इस गाने के उस पार लेकर के कुछ ऐसी बातें जो आपके माइंड को कर देंगी वो यानी कि ब्लो, बिकॉज बहुत ही प्यारी एंड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस जानकारी मेरे पास मौजूद है आपको बताने के लिए। सुन रही है, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोडा, फिर तो राजीव रती।

अंजी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी ओसन दोस्त, आपकी अपनी आरजी नदी, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और आपने ट्यून कर रखा है 89.6 एफएम रेडियो ज्ञानसली, गोंडा का पहला एफएम, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। एंड ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि भैया उठ जाइए, अगर आप उठ चुके हैं तो आप बातें होंगी थोड़ी सी डिलीशियस, क्योंकि मॉर्निंग का पहला सेगमेंट, मॉर्निंग का पहला रो और खाने की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता।

अब जब खाने की बात हम करने जा ही रहे हैं तो सोच रहे हैं क्यों ना पहले आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपके घर में क्या चल रहा है, मतलब आपने सुबह सुबह नाश्ते में क्या बना लिया है। लेट्स सी आज किसके घर में पकौड़े छाने जा रहे हैं, किसके घर में तैयार हो चुका है पूरा नाश्ता और कौन है फिटनेस फ्रीक जो खा रहा है ओट्स और पास्ता। क्योंकि भैया फिटनेस वालों के साथ तो मेनली यही होता है, कुछ लोग जो अपने स्कूल में लेके जाएंगे आज पास्ता है, कुछ लेके जाएंगे मैगी और कुछ का बनेगा अपना ऑफकोर्स आलू का पराठा। एंड इन सारे डिशेस को देखने के लिए हम तैयार हैं बिकॉज आपकी बातें होंगी थोड़ी सी मॉर्निंग में डिलीशियस वाली, यानी कि थोड़ी सी यमी यमी वाली। और इसी यमी यमी चीजों के बीच में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो चीजें आप एंजॉय करते हैं आज के वक्त में वो चीजें बाय मिस्टेक बन गई थी, उनको बनाने का शौक किसी को था नहीं, आइडिया कहीं था नहीं, बट क्योंकि अब वो बन चुकी हैं और लोगों को पसंद आ गई हैं तो शेफ भाई साहब रुकेंगे थोड़ी, एक से बढ़कर एक शेफ आते हैं बनाते जाते हैं और पूरी दुनिया में चीजें पॉपुलर होती जाती हैं। तो वैसे कोई आपकी पॉपुलर डिश है जो आपको बेहद पसंद हो और कहीं और ना मिलती हो, सिर्फ आप ही के घर तक सीमित है? अगर है तो मुझे बताइएगा बिकॉज मुझे ट्राई करने में बहुत मजा आता है, और अगर ऐसा हो गया तो आप ही क्या पता पॉपुलर हो ही जाए। फिलहाल के लिए आइए बात करते हैं इतिहास के पन्नों से बनी हुई कुछ ऐसी गलतियां जो गलतियां ना हो करके आपके लिए एकदम डिलीशियस फूड आइटम बन चुके हैं जिन्हें आज के वक्त में आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर चाहे हो आपके आलू के चिप्स या हो आइसक्रीम का कोन, आपको भी नहीं आइडिया कि भैया आपने इसको कितना एंजॉय किया है और इसकी शुरुआत आफ्टर ऑल हुई तो हुई कहां से है। अब बात कर लेते हैं आलू के चिप्स की। कभी सोचा भी नहीं था किसी ने कि आलू का चिप्स नाम की कोई चीज आने वाली है। हम आपको बताते हैं 1853 की बात है जब शेफ जॉर्ज अपने गुस्से की वजह से आलू को इतना पतला काट देते हैं और उसको तल देते हैं कि वो तलने के बाद एकदम कुरकुरा हो जाता है। असल में बात यह है कि उनके रेस्टोरेंट में आया था एक ग्राहक जो बार बार शिकायत पे शिकायत दर्ज किए ही जा रहा था। कह रहा था आलू बहुत मोटे हैं, आलू के फ्राइज तुमने बनाए हैं लेकिन ये तो कच्चे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो पतले हैं, ये तो लंबे हैं, ये तो छोटे हैं। और इतनी तारीफ की जगह पर इतनी ज्यादा शिकायतें सुनने के बाद जो शेफ महाराज थे वो उसकी बात समझ ही नहीं पा रहे थे कि इन भाई साहब को चाहिए तो चाहिए क्या। बेचारा वो पीछे लगा हुआ था कि कैसे भी करके इसको पोटैटो फ्राइज हम खिलाकर भेजें, लेकिन वो तो बार बार प्लेट को वापस कर देते थे और शेफ को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। हर तरीका आजमाने के बाद जब शेफ महाराज का गुस्सा पहुंच गया था 104 डिग्री के ऊपर, तब उन्होंने आलू को पकड़ा और उसको इतने छोटे पीसेस में काट दिया, इतने पतले काट दिया कि एक आलू के उन्होंने कम से कम 20 से 25 टुकड़े कर डाले, और उसके बाद उन सबको उठाकर खोलते हुए तेल के अंदर डाल भी दिया। कुछ मिनट तक फ्राई करने के बाद जब उसको निकाल के पेश किया गया और उसके सामने रखा गया कि लो अब तो इसमें कमी निकाल के दिखाओ, ना मोटा ना पतला ना ये ना वो टेढ़ा सीधा पता क्या है तुम्हारे अंदर, तो उसने देखने के बाद कहा कि ओ माय गॉड दिस इज सो टेस्टी, दिस इज सो यमी। एंड शेफ ने उसकी तरफ थोड़ा जजमेंटल निगाहों से देखा, ये तुम्हें अच्छा लगा और जो मैं उतनी देर से बना रहा था वो तुमको अच्छा नहीं लगा, तुम थोड़े से वियर्ड हो। लेकिन इसी पोटैटो चिप्स को फिर उसने अपने दूसरे ग्राहकों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया कि लेट्स सी ये एक ही अजीब और गरीब इंसान मेरे पास आया था या दूसरे भी हो सकते हैं। और जैसे जैसे लोगों ने देखा कि हाँ पोटैटो फ्राइज की जगह पर पोटैटो चिप्स ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, देन इन्वेंशन हुआ था आपके आज के इन चिप्स का जिनको आप कहते हैं पोटैटो चिप्स। जी हाँ, जिनको आप एंजॉय करते हैं आज बहुत सारे ड्रिंक्स के साथ, इवन घर में भी बनाए जाते हैं। 5-10 किलो आलू लेकर के मम्मियाँ बैठ जाती हैं स्पेशली होली के टाइम पर, और चिप पे कटिंग पे कटिंग कटिंग पे कटिंग, उसको रंग बिरंगी कटिंग चल रही होती है वो जो आज भी बन रहे हैं। तो उसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब और गरीब लेकिन एक ग्राहक से हुई थी जिसके नखरे बहुत ज़्यादा थे। तो अगर आपके घर में भी कोई नखरे बहुत ज़्यादा करता है तो क्या पता आप भी कोई नई डिश तैयार कर ले जाए उसको खुश करने के लिए, हू नोस। इसी के अलावा बात कर लेते हैं अब आपके चॉकलेट चिप कुकी की। बच्चों की फेवरेट, मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट, मुझे सबको पता है भैया चॉकलेट चिप कुकी आई थिंक सबकी फेवरेट होती है। एंड उसके अंदर वो जो चॉकलेट होता है ना, वो डार्क चॉकलेट, वो ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐसे एक्सीडेंट से हुई है जो आपको भी नहीं पता होगा। बात कर लेते हैं कि उसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी। 1930 में शुरुआत हुई थी चॉकलेट चिप कुकी की, जब रूथ वैकफील्ड अपनी कुकीज़ में पिघली हुई चॉकलेट मिलाना चाहती थी लेकिन उन्होंने गलती से
छोटे छोटे टुकड़े मिला दिए। अब उनका एक्सपेरिमेंट था कि जब अवन के अंदर कोई चीज जाएगी, अब अवन गर्म होता है, चॉकलेट तो गर्मी से पिघल ही जाएगी ना, तो क्या फर्क पड़ता है मैंने मेल्ट चॉकलेट मिलाई है कि नहीं मिलाई है, ऊपर से टुकड़ा टुकड़ा डाल दूंगी तो भी तो मिल ही जाएगा ना लास्ट में। जैसे कि आम सोचते हैं कि भैया चाय पहले पी लो या समोसा पहले खा लो, दोनों पेट में जाके तो मिल ही जाना है, पानी ज्यादा पी लो या रोटी ज्यादा खा लो क्या फर्क पड़ता है, दही और चाय साथ साथ में नहीं लेना चाहिए, बट हम सोचते हैं दही और चाय साथ में लेंगे तो क्या होगा, पेट में दही तो बनेगा, मतलब हर चीज तो क्रेडिट हो जाती है। यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी सोचा था कि अवन में जाने के बाद हाई टेम्परेचर पे चॉकलेट पिघलेगी ही और पूरे बैटर में फैल जाएगी, इसीलिए उन्होंने पिघली हुई चॉकलेट की जगह पर ऊपर से कुछ टुकड़े डाल दिए थे चॉकलेट की और कुकीज को कर दिया था अंदर पैक। अब क्योंकि जब कुकीज बाहर निकले 30 मिनट बाद तो देखा कि चॉकलेट चिप में चॉकलेट कुकीज जो बना रही थी उसकी चॉकलेट तो फैली नहीं, लेकिन वो जगह जगह पर थोड़ा सा क्रिस्पी थोड़ा सा क्रंची हो चुका था और चॉकलेट वैसी की वैसी ही थी। बाइट करने पर समझ आया कि उड़ी बाबा ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया है, और इसी बात पर तैयार हुआ उनकी एक छोटी सी गलती से आज का पॉपुलर और हर एक ब्रांड का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कुकी चॉकलेट चिप कुकी, जो आप भी कहीं ना कहीं बनाना सीखते हैं ना, मैंने भी सीखा है, वो अलग बात है कि हम फेल हो जाते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, बट हार कभी नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं आपकी अपनी पसंदीदा आइसक्रीम कोन की। कभी देखा है आइसक्रीम से ज़्यादा आइसक्रीम का कोन लोगों को पसंद आता है, स्पेशली वो नीचे का पॉइंट, जी हाँ नीचे वाला जो होता है जिसमें छोटी सी चॉकलेट भरी होती है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। लेकिन इस चॉकलेट कोन की शुरुआत बड़े ही एक अनोखे अंदाज में हुई थी। शुरुआत हुई थी 1904 में जब सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर चल रहा था, और उस दौरान एक आइसक्रीम सेलर यानी कि आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा था। अब क्योंकि मेला चल रहा है तो बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और कप उसके पास लिमिटेड था। इसी दौरान उसका कप खत्म हो जाता है और ग्राहक सामने खड़े होकर आइसक्रीम मांग रहे थे। अब बच्चों को ग्राहकों को आइसक्रीम हाथ में तो नहीं दे सकते ना कि लो भैया हाथ करो प्रसाद लेते जाओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया प्रसाद ना देने के चक्कर में उसने बगल में खड़े वेफर वाले की तरफ देखा। वेफर वाले ने शायद असाइनमेंट समझ लिया था कि क्या हो रहा है, और उसने अपने ही उस वेफर को थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में टर्न कर दिया, मोड़ दिया और तैयार करके भेज दिया कि लो तुम इससे काम चला लो, तुम्हारे पास कप नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। जो इंसानियत के रूप में मदद की गई थी वही जाकर आइसक्रीम वाले की बल्ले बल्ले कर देती है, बिकॉज उसके बाद आइसक्रीम कोन लोगों को पसंद आने लग जाता है इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम कप्स। और यहां से शुरू होती है आपके अपने पसंदीदा उस क्रंची वेफर की जो आप हमेशा आइसक्रीम के नीचे लास्ट बाइट तक एंजॉय करने के लिए अपने भाइयों से भी लड़ जाते हैं, अपनी बहनों से भी लड़ जाते हैं, आखिरी बाइट तो नहीं देंगे चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस आखिरी बाइट के दीवाने आए देंगे इस दुनिया में हर दूसरा इंसान है, वो अलग बात है कि अब मैं आइसक्रीम नहीं खा सकती। इसी के साथ बात करते हैं अब आपके दही की। जी हाँ, कभी सोचा है दही का इन्वेंशन कैसे हुआ था, क्या सच में कोई दही बनाना चाहता था या नहीं बनाना चाहता था? चलिए अब आपको बता देते हैं कि दही वैसे तो बहुत पुराना है और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कभी भी गट हेल्थ के लिए हुई ही नहीं थी। पहले जब लोग जानवरों का दूध निकालते थे स्पेशली बकरियों का, तो उन्हें एक बर्तन में रख दिया जाता था जो दोपहर के भोजन को भोजन के साथ पैक करके लोगों के पास भेज दिया जाता था, और ये बहुत ही सुविधाजनक हुआ करता था। बट कुछ चरवाहे थे वो तब हैरान हो जाते हैं जब वो बर्तन खोलते हैं खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए स्पेशली, और देखते हैं कि दूध तो गाढ़ा हो चुका है, जम चुका है, और उसका टेस्ट लेने पर वो उन्हें खट्टा लगता है। अब क्योंकि बर्तन के अंदर कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया उन्हें मिल गए थे जिसको चखने के बाद उन्हें लगा कि उड़ी बाबा ये तो दूध से थोड़ा ज़्यादा टेस्टी है। अब डरते डरते एक्सपेरिमेंट हुआ कि क्या इसको खाया जाए कि ना खाया जाए। अब खाया गया और उसके बाद समझ में आया कि ये तो दूध से भी ज़्यादा लाजवाब है, डिलीशियस है, यम्मी है, और वहीं से शुरुआत हुई आपके दही की, जो शायद आपको नहीं पता था। पता था ना? हाँ जी, आपको पता है, आपको नहीं पता था कि आपका दही कहाँ से आया।
भैया ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे हिस्ट्री में जिनकी इन्वेंशन यूं ही हो गई है, गलती गलती में बहुत ज़बरदस्त तरीके के डिलीशियस खाने को बना दिया गया है जो शायद आपको पता भी नहीं चला, जिसमें आपके कॉर्नफ्लैक्स, आपके पनीर और नाचोस भी शामिल हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें 1894 में जॉन एंड विल ये दो ब्रदर्स थे जिन्होंने गेहूं की बोरी को बाहर रख दिया था जिसकी वजह से गेहूं सख्त हो गया था, और सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर मक्के के साथ किया और ये बना जा करके कॉर्नफ्लैक्स। एंड हम आपको बता दें भैया ये कॉर्नफ्लैक्स ही था जिसने कहा था कि ब्रेकफास्ट इस दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। फिलहाल ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के बाद कि आपके सुबह के नाश्ते की शुरुआत किस जनाब ने की थी और क्यों की थी। लेकिन उससे पहले सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग ओनर। और आपकी पसंदीदा चीज़ कौन सी है या आपके घर में अभी सुबह सुबह कौन सा नाश्ता बन गया है जरा यहाँ तो बताइए, यानी कि आपके अपने चैट बॉक्स में, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द नाश्ता इन योर गुड मॉर्निंग ओनर वाला चैट बॉक्स। फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

झलक दिखला जा एक बार, आजा आजा आजा। और ये गाना सुनने के बाद ना जो हाथ पैर मेरे चलना शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पैरों के अंदर सच में भूत आ गया है। और ये अफवाह भी थी ना कि इस गाने को सुनने के बाद भूत आ जाते हैं, फिलहाल आते नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि अगर आते होते तो अभी तक जितने भी लोग सुन रहे थे उन सबके अंदर मेरा वाला भूता होता। फिलहाल स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गुना में। आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी मॉर्निंग जॉकी मौजूद है आप सभी के साथ। और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली। अभी तक हम बातें कर रहे थे बहुत डिलीशियस, लेकिन अब बात करेंगे थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट।

अंजी, तो भैया एक बात जो आपके साथ हम शेयर करते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपने एक लाइन सुनी होगी कि ब्रेकफास्ट दुनिया का यानी कि दिन का सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पहली मील हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, पहली मील हमेशा अच्छी होनी चाहिए, पहली मील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये लाइन आप बचपन से सुनते आ रहे हो ना, क्योंकि मैं सुनती आ रही हूँ। हर दूसरा इंसान मुझे आकर यही बताता है कि ओ तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तुमने अपनी पहली मील नहीं ली, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बट आपको पता है एक वक्त था जब ब्रेकफास्ट नाम की चीज़ हुआ भी नहीं करती थी। उस वक्त लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे और उसके पीछे भी उनकी बहुत लॉजिकल वजह थी, क्योंकि उस टाइम इतना अनाज नहीं हुआ करता था, इतना खाना नहीं हुआ करता था, इसलिए लोग मेनली सिर्फ एक वक्त का खाना खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंसानों ने खाना उगाना शुरू किया, अनाज उगाना शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो चुका था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि प्राचीन यूनानी लोग सुबह सुबह नाश्ते के, जिसको आज हम नाश्ता बोलते हैं, उसमें था कि भैया सुबह सुबह वो शराब में डुबोकर भिगोकर रोटी खाया करते थे, उसके बाद लगातार दोपहर में खाना खाते थे, देन रात में फिर खाना खाते थे, और ऐसे करते करते ये खाना हो गया तीन बार, यानी कि सुबह उठकर खाना, फिर दोपहर में खाना, फिर रात को खाना। अदरवाइज पहले लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खा कर कहते थे टाटा बाय बाय और हम जा रहे हैं, बट अब धीरे धीरे क्योंकि साल बदल रहा था, लोग बदल रहे थे, लोगों के रंग बदल रहे थे, कपड़े आ रहे थे और चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलाव की ओर थी, उसी दौरान ये चीज़ किसी ने बताई कि भैया तीन वक्त खाना खाना चाहिए। और धीरे धीरे ये प्रथा आज इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोगों को लगता है कि सुबह दोपहर शाम अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। इसके अलावा सुबह दोपहर शाम का एक तो बिग मील होता है, फिर आता है कि सुबह आपने नाश्ता किया है, फिर 11 बजे आप कुछ और खा रहे हैं, फिर 1:30 बजे आप कुछ और खा रहे हैं, फिर 3 बजे आपका स्नैक टाइम हो रहा है, फिर शाम में आपका ब्रंच टाइम हो रहा है, आप कुछ और खा रहे हैं, आपको स्नैकिंग करनी है, मंचिंग करनी है, देन नाइट में आप फिर से खा रहे हैं, उसके बाद आप डिजर्ट खा रहे हैं। तो जो चीज़ हमने एक बार खाई थी वो आज कितनी सीढ़ियों में बढ़ चुकी है। अब इसी दौरान इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक जनाब और सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, ये शराब में डुबोकर रोटी नहीं चलेगी बाबू, तुमको कुछ अच्छा खाना ही पड़ेगा। और उन्होंने उस दौरान बता दिया लोगों को कि नाश्ता तो दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सांस लेना भूल सकते हैं लेकिन नाश्ता करना मत भूलिएगा। और उसी दौरान उन्होंने एक नई चीज़ का इन्वेंशन किया था, नाम था कॉर्नफ्लेक्स, और ये नाम आया था हमारे भैया केलॉग की तरफ से। जी हाँ, वही केलॉग जिसको आज आप खाया करते हैं, उन्हीं से इंस्पायर्ड है। 19वीं सदी के अंत में डॉक्टर जॉन हार्वे केलॉग और उनके साथ विल कीथ केलॉग दोनों ने मिलकर मरीजों के लिए स्पेशली एक ऐसे खाने की इन्वेंशन की जो मसालेदार ना हो, जिसमें शराब ना हो, जिसमें तेल ना हो। ऐसा खाना वो ढूंढ रहे थे और उन्हें मिला मक्का, मक्के से उन्होंने बनाया कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स जिसको आज आप एंजॉय करते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस उसको माना जाता है। जब इंडिया में ये नया नया आया था तो ये खिचड़ी बन जाता था, धीरे धीरे इंडिया के हिसाब से इसको बदला गया, लेकिन ये बना था मरीजों के लिए, क्योंकि अस्पताल में जो मरीज़ भर्ती हुआ करते थे उन्हें मसालेदार खाना देने से उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती थी। उस वक्त इन लोगों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना मरीज़ों के लिए कुछ अलग किया जाए। उसी दौरान इन्वेंट किया गया था केलॉग्स, और वहीं से एक चीज़ निकल कर आई कि भैया नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कर रहे थे अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पर। अब जब लोगों को ये यकीन होगा कि सुबह का नाश्ता इम्पॉर्टेंट है और सुबह के नाश्ते में हम तेल मिर्च मसाला नहीं खाते हैं, तभी तो सामान बिकेगा ना, सामान ऐसे थोड़ी बिकता है। इसके लिए प्रमोशन लगेगा, मार्केटिंग लगेगी, लोगों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ खानी है, और ये बात सच भी हुई। धीरे धीरे डॉक्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि सुबह की पहली मील बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करते हैं मतलब आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आया कि सुबह के नाश्ते में आप चाय पानी नहीं ले सकते, आपको कुछ हेल्दी ही लेना पड़ेगा। हेल्दी में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस फिर धीरे धीरे आकर अब खुल चुके हैं। तो जिस चीज़ की शुरुआत थोड़ी अलग होती है उसे हम जा करके एक प्रथा, एक रिचुअल बना दिया करते हैं। इसीलिए आज जो आप देखते हो उसका इतिहास कुछ सालों पहले या कुछ वक्त पहले शुरू होता है, वो अलग बात है कि इतिहास हम तक आते आते अपना हर एक रूप बदल लेता है। जो चीज़ कभी शुरू होती है किसी और के लिए वो हमारे लिए एक प्रथा बन जाती है, एक ऐसा रिचुअल जिसको हम अगर अनफॉलो कर देंगे तो लगता है कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है।
बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आज भी हम अंधविश्वास में ले जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे का फैक्ट जो था वो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो भैया ये तो थी आपकी नाश्ते की बात, अब हो चुका है खाना पीना सबका डन। आई होप आपने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, अगर कर लिया है तो चैट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप बारी है आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ चलने की इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, आपके मैसेजेस आपके पैगाम को लेने की। तो सुनते रहिए मेरे साथ, बने रहिए आपके अपने गुड मॉर्निंग ओला रेडियो 89.6 FM पर। खाने पीने की बात हो ही चुकी है तो चलिए कुछ खाकर आते हैं, अगर खाकर नहीं आते हैं तो पानी पीकर आते हैं, बिकॉज पानी के साथ कोई समझौता नहीं मेरे बाबू। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि वक्त है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, आपके मैसेजेस को पढ़ने का, तो आइए चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आपके मॉर्निंग के शो गुड मॉर्निंग होने को विद राज रति 89.6 एफएम रेडियो ज्ञानस्थली पर। तो आज के शो में जो सबसे पहले मैसेज आया है मेरे आने से भी पहले, वो था भैया महेंद्र जी का, लिखा है शुभ प्रभात राधे राधे, आदरणीय आचरणी मैम जी और ज्ञानस्थली गोंडा रेडियो से जुड़े सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। नमस्ते, शुभ प्रभात आपको, कैसे हैं आप। साथ ही लिखा है कि सुबह की मधुर धुनों के साथ आपकी सुरीली आवाज जब कानों तक पहुंचती है तो दिन की शुरुआत खुशनुमा हो जाती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आज का दिन सभी श्रोता के जीवन में खुशियां, शांति और पॉजिटिविटी यानी कि पॉजिटिविटी लाए। जी हाँ, फिलहाल बहुत ही प्यारा लिखा है, राधे राधे लिखा है। थैंक यू सो मच आपने लिसनर्स की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपके विशेस के लिए। एंड आई होप आपकी लाइफ में भी पीस, लव एंड पॉजिटिविटी बनी रहे। इसके बाद मैं आप ही का मैसेज है कि दो कप चाय एक केतली भेजकर आपने कहा है लो रति मैम चाय पी लो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारा इतना ख्याल है, देखकर आंखों में आंसू आ गए और हमारे बगल का पांडे तालाब थोड़ा और भी ज्यादा भर गया। इसके बाद लिखे हैं सविता दुबे जी कि रेडियो आवाज नहीं आ रही, भैया हमारे यहाँ से तो रेडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है, प्लीज आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। साथ ही लिखा है सुप्रभात सभी को, सुप्रभात आपको भी। एंड इसके बाद दादा यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखा है राधे राधे राधे राधे, आपको कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग गोंडा में रोशनी रावल जी हमारे साथ जुड़ी है, उन्नाव से लिख रही है गुड मॉर्निंग मैम जी कैसी है आप, मैं ठीक हूँ आप बताइए आप कैसी है, गुड मॉर्निंग टू यू। गीता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी है, गुड मॉर्निंग डियर राज मैम, गुड मॉर्निंग टू यू कैसी हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड इसके बाद गीता जी के बहुत सारे डिस्को डांस वाले इमोजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लगातार आप ही के फिर लगातार इमोजीज हैं। इसके बाद है महेंद्र जी का गाना कि भैया आप तो ये वाला गाना नहीं, चाइना वाली लड़की का गाना अच्छा लगता है जो वो गाती है, क्या आपको याद हो गया वो गाने में क्या गाती है, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस गाने को याद करने की, हम भूल जाते हैं बीच बीच में, हम हालांकि बॉलीवुड वाला भी भूल जाते हैं। सविता जी लिख रही हैं कि मैं घर का काम कर रही हूँ और फिर आती हूँ चैट रूम में, बिल्कुल आप अपने घर के आराम से काम को करते रहिए, सुनते रहिए और चैट रूम में बीच बीच में कहीं दर्शन दे जाइएगा। इसके बाद आपके लगातार मैसेजेस, नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। छुपा कर भी नहीं छुपती ये मोहब्बत हमसे, तुम्हारा जिक्र आते ही चेहरा खिल जरूर जाता है। ओ माय गुडनेस, बहुत ही प्यारा लिखा, लेकिन लिखा किसके लिए है। इसके बाद लिखा है गुड मॉर्निंग आरती उन्नति मैम, नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू टू, गुड मॉर्निंग। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं सनी पांडे जी, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग उन्नति मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखा है वेरी गुड मॉर्निंग उन्नति मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसी हैं आप, और जिस तरह से आप मुस्कुराती हंसती आई हैं, आई होप आज का दिन आप यूं ही खिलखिलाती रहेंगी। लगातार आपके बहुत सारे इमोजीज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और लिखा है ये सब आपके लिए, ओ माय गॉड, मुझे आज तक रियल में तो फूल नहीं मिले, लेकिन चैट बॉक्स में मेरे लिसनर्स ने मुझे बुक्के बहुत दिए हैं और ये सारे समेट समेट के मैं अपने पास भी रख लेती हूँ, थैंक यू सो मच। एंड लिखा है आज इतनी प्यारी आवाज़ और इतनी प्यारी महक आ रही है, लगता है आज नदी मैम के घर की तरफ की खिड़की खुल रही है। ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत लिख लेते हैं। वैसे लिख कहाँ से लेते हैं, इतना आप लोग आइडिया लाते कहाँ से, आप मुझसे सवाल करते हैं कि मैम इतना सब कुछ आपके दिमाग में कहाँ से आता है, सेम क्वेश्चन मेरा भी है, आपके पास इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आता है। और ये लाइन लिखी थी हमारे नागेश्वर धाकर जी ने। एंड इसके बाद लिखा है मतलब चॉकलेट भी गलती से बना था जिसे आज भी हम खाते जा रहे हैं गलती से, और मम्मी कहती है ज़्यादा गलतियाँ मत करो नहीं तो दांत सड़ जाएंगे, कहती है ना, मेरी मम्मी तो बहुत कहा करती थी। इसके बाद लिखा है मुझे लगता है आइसक्रीम भी गलती से बना होगा, रात में दूध फ्रीजर में रख गया होगा। अब भैया आइसक्रीम का तो पता नहीं, लेकिन आइसक्रीम कौन का हमने आपको ज़रूर से बता दिया, जिस दिन मुझे आइसक्रीम का पता चलता है आपको बताऊँगी ज़रूर नागेश्वर धाकर जी। एंड सविता जी लिख रही हैं मैम खाने पीने वाली बातें मत करिए, राहुल सर ने बोला है सादा सादा खाना खाने के लिए तेल नमक मसाला बिल्कुल बंद हो गया है। ओ माय गॉड, तो मतलब मुझे खाने की बातें नहीं करनी है, और इस तरह की बातें सुनकर भूख और तेजी से लगती है।
आई गॉट यू। इसके बाद रोशनी रावत जी है और लिखा है प्रसाद हाथ में ही ले लेती हूँ मैं। भैया प्रसाद आप हाथ में ले सकती हैं लेकिन आइसक्रीम थोड़ी ले सकती हैं, है कि नहीं। इसके बाद है शर्मा जी मेरे साथ जुड़ी है फ्रॉम लखनऊ, लिख रही है गुड मॉर्निंग मैम जी। गुड मॉर्निंग टू यू, शर्माते हुए आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। इसके बाद आप ही के मैसेजेस हैं और उन्नति मैम पेट भर गया? जी हाँ मेरा पेट तो भर गया है बट पता नहीं चल रहा है भरा कि नहीं भरा। इसके बाद लिखा है मुझे नाश्ता मिल गया है, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मुझे नहीं मिला है इस बात का भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके बहुत सारे मैसेजेस लगातार आप ही की चैट हैं। एंड हमारे महेंद्र जी ने बोला है कि उन्नति मैम जी अब मेरी तरफ से भी एक आविष्कार की कहानी सुन लीजिए, सुनाइए। पॉपकॉर्न का आविष्कार किसी ने बैठकर प्लान बनाकर नहीं किया था, बल्कि जब मक्के के दाने गर्मी के संपर्क में आए तो फूट फूट कर फूल गए। जिसने पहली बार ऐसा देखा होगा उसने ज़रूर सोचा होगा मक्का तो फूट गया लेकिन खाने में मज़ेदार लग रहा है, और यहीं से शुरू हो गया पॉपकॉर्न का सफ़र। वैसे अनजाने में ही सही लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही है, मक्के के दानों को जब आग के पास गर्मी मिली थी तभी वो ऐसे पॉपकॉर्न शेप में आए थे। एंड ओके सभी को मुंह खोलना है मना, ये बात वहीं लिखी है नाजिया जी ने हमारे दलेर जी से इंस्पायर्ड होकर। एंड साथ ही लिखा है क्योंकि मुझे अकेले नाश्ता खाना है। तो भैया ऐसा क्या बन गया है आपके नाश्ते में जो आप किसी को देना पसंद नहीं कर रही हैं और उतनी देर से सिर्फ मेरे चैट बॉक्स में आकर एक बार नाश्ता मिल जाए कर रही है। मुझे जानना है भैया ऐसा कौन सा नाश्ता बन चुका है आपके पास जो आप शेयर नहीं करना चाहती हैं। नागेश्वर जी कह रहे हैं मुझे ये बताओ कि आदि मानव ने खाना पकाना कैसे सीखा, अच्छा भला कच्चा चबा जाते थे, ये गैस की झंझट नहीं रहती थी और नहीं लाइन लगानी पड़ती थी। हाँ जी वैसे बात तो सही है लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, जैसे कि किसने कहा था कि पढ़ाई करो, किसने कहा था कि बिजली बनाकर खुद ही बिजली का बिल जमा करो, किसने कहा था कि पानी भी जो नेचर से आ रहा है उसका भी तुमको बिल भरना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा पानी गायब हो जाएगा। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, किस लिए हो रहा है। इरफान शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपका स्वागत करती है। साथ ही आपने लिखा है अच्छा इंसान बनने के लिए बड़े काम नहीं बस छोटी छोटी बातों में इंसानियत निभानी चाहिए क्योंकि अच्छा दिल ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होता है। बहुत सटीक बात कही है आपने। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद लगातार मैसेजेस, उसके बाद है महेंद्र जी का मैसेज। उन्नति मैम जी अब एक आविष्कार हमारी तरफ से भी सुन लीजिए, ये भैया आपका दूसरा आविष्कार है और ये है गानों का। जब इंसान ने अपने मन की बात सिर्फ बोलने के बजाय सुर और ताल में कहना शुरू किया होगा वहीं से गानों की शुरुआत हो गई, फिर किसी ने उसमें ताल मिला दी, किसी ने धुन जोड़ दी, किसी ने कहा भाई इसमें शब्द भी डाल देते हैं, बस फिर क्या था, गीत संगीत का ऐसा सिलसिला चला कि आज हम रेडियो पर बैठकर गीत सुन रहे हैं। मैम जी आज थोड़ा ज्ञान हमारी तरफ से भी स्वीकार कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, और आपके इस ज्ञान के भंडार को हमने स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के भंडार में ऐड कर लिया है। इसी के बाद ओके आपके ही मैसेजेस हैं, लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में नमस्ते का इंतज़ार है, और उसको करेक्ट करते हुए लिखा है नाश्ते का इंतज़ार है। भाई आज तो पूछना पड़ेगा नाज़िया अंसारी जी के घर पर जाकर के कि ऐसा नाश्ता बन क्या रहा है, ये सुबह 8:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ नाश्ता ही चबोले जा रही हैं। मैं बस कुछ ही देर में आपके घर पहुँच रही हूँ नाश्ता देखने के लिए। दादा यादव जी लिख रहे हैं लखनऊ जाते हुए आपको सुन रहे हैं। ओके आपकी यात्रा मंगलमय हो और सुरक्षित हो, हम यही उम्मीद करेंगे। एंड इसके बाद लिखा है ये सब बातें आपकी छत्र छाया में रहते रहते सीख गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया नागेश्वर धाकर जी। फिलहाल लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, और इस ब्रेक में जाने से पहले आज हम आपको बता दें कि भैया आपके अक्की का यानी कि अक्षय कुमार का जन्म वाला दिन है, तो आइए उन्हीं के अंदाज में इंजॉय करते हैं उन्हीं की फिल्म का एक सॉन्ग स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के आपके अपने इंस्पायरिंग सेगमेंट को जो कि शुरू होता है 10 बजे से, जिसमें होती हैं कहानियां आप ही के आसपास के कुछ बेहतरीन लोगों की। तो बने रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग ओडा विद राजनीति 89.6 FM रेडियो ज्ञान स्लीपर।

0: This is something special.
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशुनति, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ख्याना स्थली आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और घड़ी में वक्त है 10 बज चुके हैं, यानी कि आपके इंस्पायरिंग सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर बातें होती हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग किया है, अपनी परिस्थितियों से निकलकर लोगों की सोच को पीछे छोड़ते हुए कुछ ऐसा करने की हिम्मत रखी है, कुछ ऐसा कर दिखाने का जुनून रखा है जो आज उन्हें मेरे इस इंस्पायरिंग सेगमेंट में जोड़ती है। ये कोई सुपरस्टार्स नहीं है, ये कोई सुपर हीरोज नहीं है, ये कोई बिलियनियर्स या मिलियनियर्स नहीं है, ये वो आम इंसान है जो हमारे बीच रहते हैं, जो अक्सर हमारे पास से गुजर जाते हैं, बट क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस स्ट्रगल से झेलते हैं, किस लिए आते हैं, इसीलिए हम उन्हें कभी समझ नहीं पाते। यूं तो आप सभी अपनी अपनी ज़िंदगी के बहुत ही कमाल के सुपर हीरोज़ हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा, बट वही बात है ना, एक आम इंसान की ज़िंदगी और उसका फ़लसफ़ा लिखने का वक्त किसी के पास नहीं है। और जो लोग अपनी फ़लसफ़ा नहीं बता पाते, अपनी ज़िंदगी की कामयाबी पन्नों पे नहीं लिख पाते, उनकी कामयाबी लेकर आती है आपकी प्रियाश्रुति गुड मॉर्निंग गोंडा के वेंसडे सेगमेंट में। तो आज की कहानी तो स्टार्ट होती है, यूँ तो आपको भी पता होगा दोस्तों, जब कोई किसी के पास कामयाबी आती है तो सबसे पहले वो अपना देश छोड़ता है, शहर छोड़ता है, पुराना लिबास छोड़ता है। बट यहाँ एक ऐसे इंसान का जिक्र है जिसने ताज होटल में बेस्ट शेफ अवार्ड जीतने के बाद भी स्विट्जरलैंड की नौकरी छोड़ दी। कौन है वो, आइए बताते हैं।

हाँ जी, तो भैया ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने एक ऐसा दृश्य देखा कि जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक ऐसा शेफ जिसको ताज होटल के अंदर बेस्ट शेफ का अवार्ड दिया गया और उनको बाहर से यानी कि स्विट्जरलैंड से शेफ की जॉब ऑफर की गई। एक बहुत ही बड़े होटल के अंदर उन्हें बुलाया गया और वो शायद जाने वाले भी थे, बट एक रोज जब वो गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बेसहारा रोड पर बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा भूखा है, इतना ज़्यादा भूखा है कि पास में पड़ी गंदगी, पास में पड़ा कचरा खा रहा है। एंड इसको देखते ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। हम आपको बता दें कि वो बूढ़ा आदमी अपने भूख से इतना ज़्यादा बेहाल था कि वो अपनी ही गंदगी खा रहा था, इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान, और ये नज़ारा उनकी आंखों से फिर उतरा ही नहीं। जो इंसान अगली फ्लाइट पकड़कर स्विट्ज़रलैंड की तरफ उड़ने वाला था, जो अपनी उड़ान भरने वाला था और जो अपनी उड़ान भर भी चुका था, उसने स्विट्ज़रलैंड की नौकरी तुरंत की तुरंत छोड़ दी। उसका मानना था कि स्विट्ज़रलैंड में जाकर क्या करेंगे, अपने लिए कमा कर क्या करेंगे, कभी इनके लिए भी कमाना चाहिए। और यही सोच कर, यही सोच लेकर वो अपने देश, अपने शहर वापस आ जाते हैं। 2002 से उन्होंने शुरुआत की थी लोगों के लिए खाना बनाने की। हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने हाथों से वो हजारों लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं आज भी, और उन्हीं सब लोगों के पास जाकर जो बेघर हैं, जो बेसहारा हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो सबके सब उनको खाना खिलाते हैं, सबको खाना लेकर जाते हैं। कुछ लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, कुछ को खाना देकर आते हैं, और सिर्फ खाना नहीं देते, वो उनकी देखभाल भी करते हैं, उनको नहलाना, उनको नए कपड़े दिलाना, उनकी शेविंग करना, उनके बालों को काटना, ये सारी चीज़ें वो खुद से करते हैं। उन्होंने किसी और से मदद भी नहीं मांगी, वो आज भी लोगों की मदद करते आ रहे हैं। इवन कुछ लोग जो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, जो बेघर हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, वो उनके परिवार वालों को ढूंढ कर उनसे मिलाने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। ये इंसान जो भूखे लोगों को खाना खिला रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक नया सहारा, एक नई उम्मीद, एक नया घर बन के सामने आ रहा है, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए परिवार है, और जिनके पास परिवार खो चुका है उनके परिवार को ढूंढने वाला शख्स, जो स्विट्जरलैंड जाने वाला था, जिसने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ दी, वो इंसान आज उन्हें लोग जानते हैं। 2010 में उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया था जब वो टॉप लिस्ट में आए थे CNN के। नाम जी हाँ, चलिए नाम बता देते हैं। इनका नाम है नारायण कृष्णन, एक ऐसा नाम जो आपको भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो मैं हर सेगमेंट में आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाती हूँ जो अपनी ज़िंदगी में इतना बखूबी, इतना खूबसूरत काम करते हैं, जिनका नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए, फिर चाहे वो आपके पास आसपास रहने वाला कोई आम इंसान दिखने वाला ही क्यों ना हो, कोई आम सी शक्ल जो आपके आसपास घूम रही है, उसके इरादे, उसका जुनून और उसके अंदर बसी मोहब्बत उसे बहुत अलग बनाती है। ऐसे में ही नारायण कृष्णन भी सामने आए। वो लोग जिनको देखकर हर कोई इग्नोर कर दिया करता था, जो सोचते थे कि यार इनका तो रोज़ का काम है, ये तो सड़क पर यूं ही बैठते हैं, यूं ही परेशान रहते हैं, और बस इनके पास तो कोई काम है नहीं, ये खाना मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, ये उन लोगों के लिए काम करते हैं। जी हाँ, वो बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, उन्हें खाना देते हैं। तो ये तो थे नारायण कृष्णन, जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई, बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं और आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी के मदद करने के काबिल हैं तो मुझे लगता है उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, एक बार ज़रूर मदद करनी चाहिए। भाई कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ जाती है, तो कोशिश करते हैं इस बार हम भी किसी की मदद करके देखते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, जिनकी कर सकते हैं उनकी करके देखते हैं। फिलहाल सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गुड अपनी आशावादी के साथ, एंजॉय कीजिए छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

आपके मॉर्निंग वाले शो में इंस्पायरिंग सेगमेंट के अंदर हमने ऐसे बहुत सारी कहानियां कवर की हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को कवर किया है जिनकी कहानियां आपको इंस्पायर्ड करती हैं, और दो से तीन हमने ऐसी भी कहानियां कवर की हैं जहां पर इंसानों ने इंसानियत का वो रूप दिखाया जो शायद आपने कहीं ना देखा हो। कुछ लोगों ने बच्चों को अडॉप्ट किया, कुछ ने पढ़ाया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी दुनिया में। इनकी कहानियां कवर करने के लिए बहुत वक्त लगता है। हम आपको बता दें कि पिछली बार हमने जिस महिला की कहानी कवर की थी उसने 1400 बच्चों को अपने घर में पढ़ा दिया था। जी हाँ, उन्हें खुद तो घर नहीं मिला लेकिन उन्होंने उन बच्चों को घर में पढ़ा दिया, उन्हें घर दिया, उन्हें सहारा दिया। और आज ऐसे ही एक और शख्स है हमारे पास, एक और हस्ती है हमारे पास जिन्होंने अपने अनाथालय में सरकार से लड़ाई लड़ ली सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बच्चों को छोड़ना नहीं था। जब सरकार आधार कार्ड बनवा रही थी तो नाम पूछा गया पिता का, तो पिता के नाम पर उन्होंने सब जगह अपना नाम लिखवा दिया। लोगों ने सवाल भी किए और लोगों ने दान देने की कोशिश भी की कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो क्यों ना हम आपकी मदद करें, हम आपको दान दें। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके दान की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें पालना पोसना पढ़ाना लिखाना इनके लिए खाने का इंतज़ाम करना ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अकेले ही कर लूँगा। सरकार ने जब कहा कि 18 साल के हो जाने के बाद कोई भी बच्चा अनाथालय में नहीं रुकेगा तो उनसे भी लड़ गए, ये कह करके कि अगर मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। जो बच्चे अच्छे हैं, जिनके पास सब कुछ ठीक है, जो नॉर्मल है, वो बाहर जाकर कमा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट जो दिव्यांग है, जो आंखों से देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो क्या करेंगे? उन्हें आप भीख मांगने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ सकते। वो बच्चियाँ जो ठीक नहीं हैं, जिनको पहले भी मैं बचा कर लेकर आया हूँ उन गलत धंधों से जहाँ उन्हें भेजा जा रहा था, आप उन्हें फिर से वहीं भेजने की कोशिश में लगे हैं। और ये लड़ाई उनकी सरकार से सालों तक चलती रही। कहीं जाकर उन्हें जब सरकार ने उनके सामने घुटने टेके तब उनका अनाथालय वापस से शुरू हुआ। और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी शुरुआत हुई थी रेलवे स्टेशन के आसपास पड़े बच्चों से। जी हाँ, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को जब रेलवे स्टेशन के आसपास छोड़ जाते थे, रेलवे पटरियों के आसपास छोड़ जाते थे, तब ये जनाब जाया करते थे रेलवे स्टेशन घूमने। इन्हें एक बच्चा दिखता, ये उठा लाते, और धीरे धीरे एक जंगल के अंदर इन्होंने शुरू किया था अपना अनाथालय। वो जगह जहाँ अभी तक सुनसान था, जहाँ कोई नहीं था, जो बंजर पड़ी ज़मीन थी, वहाँ पर एक अनाथालय खुला। अनाथालय में पहला बच्चा आया, धीरे धीरे दूसरा, तीसरा, और बाद में नोटिस किया गया कि यहाँ तो वो लड़कियाँ जो दिव्यांग हैं, जो देख नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, या जिनके पास ऐसी कोई कमी है जो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है, जो नॉर्मल भीड़ में नहीं आ रही हैं, उनको इनके साथ गलत किया जाता है, इन्हें गलत धंधों में डाल दिया जाता है, लोग इन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा। अब क्योंकि इन बच्चियों को बचाना इन्होंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी है, तो ये उनसे भी लड़ गए जो इनके साथ गलत कर रहे थे, जो बच्चियों को पैसे के लिए बेच दे रहे थे, जो गलत धंधों में डाल रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें कुछ तो कमी है। वो देख नहीं सकती, इसका फ़ायदा उठाया जा रहा था, वो सुन नहीं सकती, इसका फ़ायदा उठाया जा रहा था, और ये बात उनसे देखी ना गई। एक एक करके उन्होंने बहुत सारे बच्चों को अपने उस अनाथालय में जगा दी। आधार कार्ड बनने का टाइम आया, आधार कार्ड में एक ही सवाल कि पिता कौन है, पिता की जगह पर किसका नाम लिखा जाएगा, और किसी के पास पिता का नाम नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि उनके पिता कौन है। तब ये जनाब वापस से सामने आते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं और इनके आधार कार्ड पे नाम भी मेरा ही होगा, पिता की जगह पर आप मेरा नाम लिखिए, किसी और के नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक एक करके इन्होंने 123 बच्चों को अपने उस अनाथालय में जगह दी। एक ज़मीन जो बंजर पड़ी थी उसी अनाथालय के आसपास उस ज़मीन को इन 123 बच्चों और इस 84 उम्र के एक जनाब ने, एक इंसान ने मिलकर, एक शख्स ने मिलकर 15,000 पौधों से भर दिया। इतने पौधे लगाए, 15,000, मामूली बात है, हमें एक पौधा लगाने पे भी 1,000 बार सोचना पड़ता है। कोई एनवायरमेंट डे बनाता है, यानी कि पर्यावरण दिवस मनाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा दिन मनाते हैं, तो भैया एक पेड़ को पकड़कर 15 लोग खड़े हो जाते हैं, और वहाँ सिर्फ 123 लोगों ने मिलकर 15,000 पेड़ लगा दिए। और सिर्फ लगाए नहीं, उनका देखभाल भी किया, तो जो ज़मीन बंजर थी वो ज़मीन भी हरियाली से भर गई।
धीरे धीरे इन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लिखाना शुरू किया। सरकार ने कहा कि नहीं, 18 साल के हो चुके हैं, इनको निकालना पड़ेगा। इन्होंने कहा नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए सड़क के किनारे पर नहीं छोड़ सकता, मैं अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए कहीं भी नहीं छोड़ सकता। सरकार से भी लड़ाई लड़ ली और सरकार भी इनके इस जुनून के सामने, इनकी जिद के सामने घुटने पर आ चुकी थी और उन्होंने भी कहा कि नहीं, जाने दो, अगर आप इन बच्चों को रखना चाहते हो तो रखो। और इसी बात पर तब इन्हें जीत मिलती है और बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। वो बच्चे जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिनके हाथ पैर सीधे नहीं हैं, जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन सबको एक ट्रीटमेंट मिला। उनकी दवाई का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, उनके पीने का, कपड़े पहनने का, उनकी हर एक चीज़ का खर्चा ये अपने कंधों पर उठाते हैं। ये किसी से मदद नहीं लेते, ये किसी से दान नहीं मांगते, ये किसी के सामने अपनी झोली नहीं फैलाते ये कह करके कि मेरे पास 123 बच्चे हैं और उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कभी किसी से एक पैसे तक नहीं लेते। बस इनका एक ही जुनून है कि इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना है। और ऐसा इन्होंने किया भी। न जाने कितने बच्चों को इन्होंने अपने अनाथालय से सरकारी नौकरी तक पहुंचा दिया। वो बच्चे जो रेलवे स्टेशन के कॉर्नर पर पड़े थे, जो किसी कूड़ेदान में पड़े थे, उनको उठा करके पढ़ा कर उन्हें सरकारी कुर्सियों तक पहुँचा दिया। और उनके बहुत सारे बच्चे आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसी के अलावा एक ऐसी भी लड़की है जो देख नहीं सकती, जो बोल भी नहीं सकती ठीक से, वो भी आज एक सरकारी अफसर है, वो भी सरकारी नौकरी कर रही है। इसी के साथ उन्होंने अपनी बहुत सारी बेटियों की शादी भी खुद के दम पर की है, खुद के पैसों से की है। और इसी के अलावा बेटियों के साथ साथ उन्होंने अपने 3 लड़कों की शादी भी की है। अब आप सोचिए, एक अकेला शख्स जिसकी उम्र हो चुकी है 84 साल, वो 123 बच्चों का भरण पोषण कर रहा है, उन्हें पाल रहा है, उनको पालने के लिए सबसे लड़ने को तैयार है, सबसे भिड़ जाने को तैयार है, सरकार के सामने भी सरकार की आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए तैयार है। और ये वो शख्स हैं जो सच में हमारे समाज को इनकी ज़रूरत होती है। ये हमसे दूर रहते हैं, कहीं अलग रहते हैं, और इनका नाम है शंकर बाबा। लोग प्यार से इन्हें कहते हैं पिता शंकर बाबा पालकर। महाराष्ट्र के छोटे से जंगल में रहते हैं ये, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपना अनाथालय बना रखा है। 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन इनकी कहानी अभी तक कई लोगों के पास नहीं पहुँची है। ये वो कहानियाँ हैं जो आपको इंस्पायर्ड करती हैं, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आपके आसपास हो क्या रहा है। क्या इंसानों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सस्ती है कि उनका जन्म लेते ही हम उन्हें कहीं भी फेंक के चले जाते हैं? एक जानवर की ज़िंदगी भी सस्ती हो जाती है। हम जानवरों को तो मारते ही मारते हैं, उन बेघर बच्चों को भी बाहर छोड़ देते हैं, उनके खुद के माँ बाप उन्हें ऐसे झाड़ियों में छोड़कर चले आते हैं। आए दिन हमें ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पर बच्चे झाड़ियों में हैं, उनके ऊपर चींटियाँ हैं, उनके ऊपर कीड़े हैं, और न जाने कितने ही परेशान हैं, लोग बचाने की कोशिश में लगे हैं। और इनमें से ये कुछ लोग सामने निकल कर आते हैं, जो एक दो नहीं, न जाने कितने ही बच्चों का भरण पोषण करते हैं अपने बल पर, अपने खुद के हिम्मत पर, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेकर के। तो इनकी कहानी आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, और इसीलिए मैं लेकर आती हूं आपको सुनाने के लिए ये इंस्पायरिंग सेगमेंट, जिसमें ऐसे लोगों की कहानियां होती हैं जिनकी कहानी आपको न्यूज़पेपर में अक्सर देखने को नहीं मिलती। फिलहाल आपको कैसी लगी शंकर बाबा की कहानी, चैट बॉक्स में बताइएगा। एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग होंडा रेडियो 89.6 FM पर। स्टे ट्यून्ड।

हां जी भैया, तो आप एंजॉय कर रहे हैं अरिजीत सिंह और श्रेया की आवाज में चाहूं मैं या ना। एंड वक्त हो चला है अब आपके चैट बॉक्स के मैसेजेस को देखने का। आई होप आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, तो अपना फीडबैक जरूर से दीजिए आपके अपने चैट बॉक्स में जो आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन आपको मिलती है प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, रेडियो 89.6 FM के नाम से रेड एंड ब्लैक आइकन पर, जिसको इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आपके चैट बॉक्स पे। भैया नाजिया जी लिख रही हैं, कैसा लगा मेरा मजाक, हमको बहुत मजा आई, लेकिन अभी हम आपके घर आई उसके बाद बताइए आपका मजाक हमको कैसा लगा। एंड सविता जी ने हमें भेजे हैं बहुत सारे इमोजीज, बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी की तरफ से, अगेन बहुत सारे इमोजीज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नागेश्वर जी ने लिखा थैंक यू, बाय द वे किस लिए थैंक यू था ये। एंड नागेश्वर जी ने लिखा है हैप्पी बर्थडे अक्षय भाई, या अक्षय भैया के पास तक हम ये पहुँचा कर आते। वैसे अक्षय भाई हमारे पास एक चैट बॉक्स में भी है, उनका भी स्वागत कर लेते हैं, फिलहाल वो आज हैं तो नहीं। एंड इसके साथ ही लिखा है रोशनी रावत जी ने यानी कि इमोजीज भेजी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद नागेश्वर जी ने लिखा है एक बात समझ नहीं आती कि गोरे गोरे मुखड़े पर काला चश्मा अच्छा लगता है। जी हाँ, तो इसमें समझने वाली कौन सी बात है, तो ओके उसके बाद का जो सवाल है कि भैया बाकी काले काले चेहरे पर भी गोरा गोरा चश्मा अच्छा लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा, ऑफकोर्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, आप लगा कर देखिए, गोरे गोरे चेहरे पर काला काला चश्मा, काले काले चेहरे पर गोरा गोरा चश्मा। और हम हमेशा से गाते थे कि गोरे गोरे चश्मों पर काला काला चेहरा, खैर हम तो उल्टा ही गाते थे। इसके बाद आप ही के लगातार मैसेज है, नमक निमक हो रहा है यहाँ पर, और लगातार मुझे लग रहा है कि आज चैट बॉक्स में नमक की बारिश हो रही है। बारिश होती रहती है, कभी फूलों की, कभी किसी और की, कभी किसी और चीज़ की, और आज नमक की, क्या बात है। एंड हमारे साथ जुड़े हैं पप्पू जी, आपका स्वागत करते हैं, गुड मॉर्निंग लिखा है आपने, गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। एंड आज थोड़ा गेम शुरू किया जाए तो अच्छा रहेगा भैया, हम आपके साथ अक्सर गेम खेला करते हैं, वो अलग बात है कि हमने कल भी अनएक्सपेक्टेड गेम खेला था, पटकर आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे, और अगेन किसी दिन फिर से हम गेम लेकर आएंगे, लेकिन अगर आपको गेम खेलना है तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मुझे भी नहीं पता कब कौन सा गेम कहाँ से मैं उठा कर आपके लिए ले आऊँ। एंड इसके बाद आप ही के बहुत सारे चैट्स हैं, नाजिया अंसारी जी लिख रही हैं मैम आज फिर से प्लीज़, अच्छा जी देखा जाएगा, फिलहाल के लिए अभी तो सोचना पड़ेगा क्योंकि कल आप लोगों का सदमा ख़त्म नहीं हुआ था चाबी ताले का, आज अगर फिर से चाबी ताला करा दूंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो कभी सोचा नहीं वो अचानक से हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कल के कॉलेजियन गुंडा प्रोग्राम में हुआ था, ये लिखा है हमारे महेंद्र जी ने, और ये बात सच है, सरप्राइजेस हमेशा खूबसूरत लगते हैं। एंड इसके बाद लिखा है बहुत खूब नारायण कृष्ण, आप जैसे नेक और दयावान इंसान बहुत कम मिलते हैं, भूखों को भोजन कराना बहुत ही पुण्य का काम है, आप एक ऐसा कार्य आपके ऐसे कार्य से लोग हमेशा आपको दुआ देंगे, ईश्वर आपको सदा खुश रखे। ये लाइन है हमारी नागेश्वर धाकर जी की। एंड धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं उसे जी ओम श्री गणेशाय नमो नमः, आपको भी गुड मॉर्निंग गोंडा में आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग टू यू, और आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आशुति जी, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। महेंद्र जी ने लिखा है सल्यूट है ऐसे लोगों को जो इंसानियत निभाते हैं, एंड इनसे इंस्पायर होकर आप भी थोड़ी सी इंसानियत करना सीख लीजिए, और अगर आप करते हैं तो आपको भी सल्यूट है मेरी तरफ से। वहाँ उन्नति जी आपकी स्टोरी लाजवाब रहती है, आपको इसके लिए सल्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया, ये लाइन लिखी थी हमारे सुजीत जी ने। एंड धर्मेंद्र जी ने लिखा है उन्नति जी ये संगीत बहुत प्यारा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद महेंद्र जी का मैसेज है उन्नति मैम जी शंकर बाबा पापलकर की कहानी सुनकर सच में मन भर आया, अपने बच्चों को पालना तो हर कोई करता है लेकिन जिनका कोई नहीं उनको अपना मानकर पिता बन जाना ही असली इंसानियत है, ऐसे लोगों की कहानी सिर्फ हमें सुननी नहीं उनसे कुछ सीखनी भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कहानी सुनकर मन में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो रोशनी जी आप प्रश्न कर सकती हैं। सुशील जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखा है शुभ प्रभात टू यू। एंड इसके बाद भैया कहाँ गए सब लोग सो चुके थे क्योंकि सब नाश्ता करने आपके घर आ रहे थे। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिश्रा ऑप्टिकल लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। नासिर जी लिखा है बहुत नीक लगा प्रोग्राम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र जी ने लिखा है मैम जी आज का शो
लगा आज का शो कैसा लगा ये पूछकर आपने तो श्रोता को ही होमवर्क दे दिया, लेकिन सच कहूँ तो आज का शो बहुत बढ़िया लगा। आपके अंदाज में जानकारी भी मिली, मज़ेदार बातें भी सुनने को मिली, और सबसे अच्छी बात ऐसा लगा जैसे रेडियो पर कोई अपना ही बैठकर बातें कर रहा हो। आज का शो पूरा पूरे नंबरों का हकदार है, बस एक शिकायत है समय इतनी जल्दी कैसे निकल जाता है, ये तो समय से पूछना पड़ेगा। समय कहाँ है आप, क्यों निकल जाते हैं जल्दी, पूछ कर आती हूँ मैं, कल तक बता ही दूंगी। एंड अरविंद जी लिख रहे हैं, हेलो आशीर्वती मैम कैसे हैं, सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। मैम प्लीज़ आज फिर से भैया गेम को लेकर हमारे लिसनर्स को लग गया है चस्का, और अब इंतज़ार करेंगे गेम का। आप बिल्कुल करते रहिए इंतज़ार, हो सकता है मैं ले भी आऊँ। एंड मैं बोल ले गया था, जी हाँ अंबर जी ने कल बिल्कुल सही बोला था, और आप ही विनर थे हमारे गेम के भी। एंड इसके बाद आप लोगों के लगातार मैसेजेस हैं, अरविंद जी के मैसेज हैं, और आप लोगों की लगातार चैट्स आ रही है। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मुलाकात करते हैं आपसे हम 3 बजे यानी कि कॉल ट्यून गोंडा में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे गुड मॉर्निंग गोंडा। अभी तक आपके साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशीर्वादी, लेकिन अगला कार्यक्रम आपके गांव का गुण सुनना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्द, स्टे ट्यून्ड।

बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है आज मेरे पास, लेकिन वो स्टोरी क्या है और उसका मॉरल क्या निकलता है ये आप सुनिए, सोचिए और समझिए। तो आज हमारा हेल्थ वाला डे यानी कि वेनसडे हेल्थ वाला डे है और उसी को लेकर के कुछ हमारी हेल्थ से रिलेटेड आज ये स्टोरी भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब हमें सीधे समझाई जाती है तो वो समझ में नहीं आती, पर स्टोरी के और थ्रू पोएम के थ्रू या ऐसे समझाई जाए तो तुरंत हमारी समझ में आ जाती है। तो आज ये स्टोरी भी कुछ ऐसी है जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी और कोशिश है कि आप सभी को इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, कोई अच्छा सा मोटिवेटिंग वाला मैसेज ज़रूर मिले। एक समय की बात है, एक बहुत ही मेहनती मूर्तिकार था। वो दिन रात पत्थर तराश कर खूबसूरत मूर्तियां बनाता था, लेकिन इस चक्कर में वो अपने खाने पीने और आराम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगा और उसके हाथों में दर्द रहने लगा। एक दिन जब वो राजा के राज्य में गया और वहाँ उसे बहुत बड़ी मूर्ति बनाने का काम मिला, जिसके लिए उसे भारी इनाम भी मिलने वाला था, मूर्तिकार बहुत खुश था, काम में जुट गया। लेकिन कमज़ोरी की वजह से उसके हाथ कांपने लगे और उसके हाथ कांपने लगे। हथौड़ी की गलत चोट की वजह से वो कीमती पत्थर जो था, जो कि मूर्ति बनाने के लिए उसे दिया गया था, वो बीच से टूट गया और उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। वो निराश होकर बैठ गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए। तब उसका एक दोस्त उसके पास आया और उसने कहा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैंने इतनी मेहनत की, दिनों रात बिना खाए बिना पिए बिना आराम किए मेहनत की, फिर भी मुझे मेरी मेहनत का फल देखो बिल्कुल नहीं मिला, और अब ये पत्थर ख़राब हो गया, अब मैं मूर्ति कैसे बनाऊँगा, और अगर मूर्ति नहीं बनाऊँगा तो राजा जो है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब उसके दोस्त ने उससे कहा कि अच्छा ये बताओ, तुमने आराम नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, कहीं ना कहीं इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो कला है, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने क्यों मेरी कला ने मेरा साथ नहीं दिया। तब जा करके उसे ये समझ में आया, उसके दोस्त ने उसे समझाया कि देखो तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, तुम अपना अच्छा काम अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने मेन जो काम किया वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं था इसलिए तुम ये काम नहीं कर पाए, और ये जो कीमती पत्थर था वो तुमसे टूट गया और तुम्हारा काम भी नहीं हो पाया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। तब जाकर के मूर्तिकार को समझ में आया कि उसे अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा जो शरीर है वो हमारी बॉडी है वो पूरी तरीके से फिट होगी, हम फिट होंगे, तभी हम कोई भी काम कर सकते हैं। उसने अपनी सेहत पे पूरा ध्यान दिया, अच्छा खाया, अच्छा आराम किया और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने पहले की से भी अच्छी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और राजा को भी उसका काम बहुत पसंद आया। तो कहीं ना कहीं यही होता है लिसनर्स कि आपने अभी सुना ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी जो हेल्थ होती है वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमें हमारा काम बेस्ट करना है, अच्छी तरह करना है, उसके लिए हम अपने काम को पूरा का पूरा टाइम देंगे, ना खाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखेंगे, वो फिट ही नहीं होगा, तो क्या आप अपना काम 100% देके कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना आपका काम ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छे से आराम करें, और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो उसमें भी पूरा रेस्ट करें। ये नहीं कि हमें फीवर है लेकिन फिर भी हमें जाना है, काम करना है, ऐसा नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको आराम की नीड है तो आराम करें और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि आज की ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमारी सेहत ही कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ है वही बुनियाद होती है हमारी सक्सेस की, हमारी खुशियों की, हमारे सपने जो होते हैं उसी पर टिके होते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तभी मन में नए नए और पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, और इससे आप अपने काम को और बेहतरी से कर पाते हैं, और हाँ 100% नहीं 200% दे पाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपने आप को फिट रखना है। तो आई होप कि आप सभी ने समझा कि आपको अपने आप को फिट रखना है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, और बस यू गए यू आए आप।

बता देंगे। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी सॉन्ग के साथ लिसनर्स आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए। और हाँ, जाते जाते इतना ही कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय, अब मिलती हूँ आपसे आपके अपने बहुत ही प्यारे वाले शो में जिसका कि नाम है सुन सहेली। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
3: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और वो है किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। जी हाँ, दरअसल 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती है, और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। और इन सभी मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेहतिया भैया।
5: नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद आरजे अदनान। जैसे किसी बगीचा में सही समय पर यानी पानी और खाद न मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे किशोरावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं?
5: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाती है। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा, अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है।
4: भैया, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
5: देखो भाई, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की

0: समझे, जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबसे अहम बात इसी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार
1: किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
0: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेना चाहिए।
1: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं, जैसे लड़कियों पर इसका बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
0: बिल्कुल आरजे अदनान, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई हो तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे खुलकर बात करेगी, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
1: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा तो क्या ये खतरनाक हो सकता है?
0: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का भी खतरा हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक सिमट जाती है।
1: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छिपे गर्भपात करा लेती है, ये कितना खतरनाक है भैया?
0: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती है तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
1: ठीक कहा भैया। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा आखिर क्यों बढ़ रहा है?
0: किशोरावस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वो बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वो कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
1: भैया, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें आखिर इतने क्यों बढ़ रही है?
0: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है, रो नहीं सकता या तू लड़की है, समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता है, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बात मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो स्कूलों में काउंसलर हो या घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
1: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो अपने फैसले समझदारी से ले सके?
0: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेनी चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
1: बिल्कुल भैया, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या गर्भ से बचने के उपाय यानी कि गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
0: बिल्कुल दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
1: लेकिन भैया, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया गया, बताया गया, तो कहीं वो गलत रास्ते पे ना चल पड़े।
0: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनना है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
1: सेहतिया भैया, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई पहल हुई है?
0: बिल्कुल भैया, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKS के, इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
1: आखिर इस योजना में सुविधा क्या क्या मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं?
0: RKS के बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला, किशोर या अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहाँ किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अन्नपूर्ण कार्यक्रम, इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना, इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बात कर सकें।
1: अच्छा भैया, ऐसा क्या है?
0: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKS के से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है। जानकारी देती है कि सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझक के सीमा से साझा करती हैं।

0: इसके जैसे प्रोग्राम हर गांव हर स्कूल तक पहुंचा दिए जाएं तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भी भर जाएंगे, क्या कहते हैं?
1: देखिए भैया, ए RSH इसका मतलब है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना है, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: ये तो बहुत बढ़िया है भैया।
1: हाँ, अब सरता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थीं, शर्मा जाती थीं। फिर एक दिन गांव में RKS के योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन एनम दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
0: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो और खास तौर पर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है।
1: सरता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आते रहते। फिर वह आंगनबाड़ी केंद्र गई तो वहाँ मौजूद एनम रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: मतलब ये योजनाएं सच में जमीन पर असर कर रही हैं।
1: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनबाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने माता पिता को समझाया, 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग भी देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया और गांव और आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों को मदद करते।
0: वाह भैया, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने हौसले खुद लेने लगते हैं।
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते हैं और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वो बीच का सफर तय कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना जरूरी
0: है। हम अपने किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब सही जानकारी होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभकारी के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि
3: हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि
2: हम अपने और अपने परिवार की

0: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
0: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे
1: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे
0: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी

0: इसके लिए प्रेरित करेंगे
1: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9268 9976 9216 9819716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: तो भाई अंशिका आ गई है, क्योंकि कल अंशिका को बता दूं, अंशिका मैंने शो में नहीं लिया होगा नाम, तो कम से कम 7 से 8 बार आपका नाम मेरे मुंह में आया, बार बार आ रहा था, संध्या बैठी थी। लेकिन अब क्योंकि आदत है ना कि मेरे साथ है अंशिका, तो इस वाली आदत को हम जब नहीं होते हैं या एक दूसरे में, जब मैं नहीं होती हूँ तो तुम भी बोलती हो,
7: हाँ।
6: तो ये बार बार नाम हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि उसकी हम लोगों को जैसे कहते हैं ना आदत सी हो गई है, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग एक साथ दोनों लोग आ गए हैं आपके पसंदीदा शो, जिसका नाम है
5: सुन सहेली,
6: और मैं हूँ आपकी आरजे संता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: तो आइए इस प्यारे से मौसम में, यानी कि दोपहर है, तो भाई सुबह इतनी ज्यादा वाली धूप थी, लेकिन अभी फिर से मौसम ने ले ली है करवट बदल ली, क्योंकि फिर से मौसम जो है वो मानसून आ गया, यानी कि बारिश आ गई। तो लेकिन हम विश करेंगे एक साथ एक ही फ्रेम में, शुभ दोपहरिया।
7: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और कैसे हैं आप सब, फटाफट से बताएं हाल चाल, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि ये जो बहुत अच्छा बारिश वाला मौसम है ना, इसने मौसम तो अच्छा कर दिया है पर कुछ खराब भी कर दिया है, और वो है लोगों की हेल्थ। और उसकी छोटी सी झलक शायद आपको मेरी आवाज से समझ में भी आ रही होगी कि थोड़ी थोड़ी मुझे भी पड़ गई है। क्या कहते हैं ना कि मौसम की मार जो है वो धीरे धीरे सभी को लगती है,
6: सभी को पड़ती है। और इस समय मौसम ऐसा है ना कि सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, जैसे लगता है उठो तो पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, क्योंकि हम रात में फैन भी अब ठंडा सा लगने लगा है, लेकिन किसी समय इतनी गर्मी लग रही है कि एसी भी ऑन करनी पड़ रही है, कूलर भी ऑन करना पड़ रहा है, तो जिसके कारण से यही सबसे बड़ा कारण है बीमारी का। कभी जैसे वायरल फैल रहा है, जुकाम हो रहा है, तो ये सारी चीजों से बचने के लिए आप लोगों को मैं आज थोड़े से प्रिकॉशंस भी दूंगी, यानी कि आज हमारा वेडनेसडे सेक्शन, यानी कि पूर्ण से पूर्ण समर्पित आज के दिन विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम महिला को।
7: बिल्कुल, और उनकी हेल्थ पे बात करेंगे, उनकी इश्यूज पे बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कही जाती है मैम, जो होता है स्ट्रेस।
6: हाँ।
7: और सबसे ज्यादा ये नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम,
6: है सबको
7: बट कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि कहते हैं ना कि दो धारी तलवार, ठीक उसी तरह उनको दो धारी कहीं ना कहीं काम भी करना पड़ता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे भी जा रहे हैं और आप अपने घर भी आ रहे हैं
6: जी।
7: तो दोनों में इसमें हेल्थ इश्यूज भी होते हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी होता है। तो सब पे बात करेंगे, बताएंगे। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, क्या कहते हैं कि अभी तो सिर्फ आगाज किया है, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है क्योंकि अभी तो वक्त ही वक्त है, टाइम ही टाइम है। लेकिन फिलहाल जो टाइम है वो टाइम है हमारी पोयम का।
6: हाँ जी, तो रास्ता दे दे
7: जी। तो वही पोयम की आ गई है बारी, पोयम की आ गई है बारी और हो रही है हमें बहुत ही बेकरारी। पोयम की आ गई है बारी, हो रही है हमें और आपको बेकरारी, क्योंकि क्योंकि सुनना है हमें प्यारी सी कविता उन्हीं की जुबानी जो करती है हर रोज इसकी शुरुआत। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारी सी कविता आपकी अपने आरजे समता के साथ।
6: जी हाँ, थैंक यू सो मच अंशिका, और इसी कल शुरुआत को मिस किया मैंने और बहुत मिस किया, तो चलिए फटाफट शुरू करें
7: जी।
6: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस जग का तुम ही हो आधार, कभी ममता की बहती नदियाँ कभी शक्ति का अवतार हो, सहनशीलता की मूरत बनकर हर आंसू चुपचाप पीती हो, अपनों की खुशियों की खातिर तुम हर पल हंसकर जीती हो, सृष्टि का तुम श्रृंगार बनी आंगन की पावन तुलसी हो, त्याग और समर्पण की तुम हर युग की में सुंदर छवि सी हो, लोरी की मीठी तानों में तुम ही हो संस्कार बोती, विपदाओं से लड़ने वाली तुम धीरज की ढाल होती हो, आज पुरानी बेड़ियों को तोड़ तुम नभ छूने को बढ़ी हो, ज्ञान कला और विज्ञान में तुम सबसे आगे खड़ी हो, अबला नहीं तुम सबला हो, अबला नहीं तुम सबला हो, अपनी किस्मत खुद लिखती हो, हर बाधा को पार कर तुम स्वाभिमान से दिखती हो, तुम में ही घर में रौनक है, तुमसे ही घर का सृजन है, तुम्हारी पावन गरिमा को इस पूरे जग का शत शत नमन है, तुम पीढ़ियों का निर्माण करो, तुम ही नवयुग की धारा हो, इस धारा की सच्ची शक्ति तुम सबसे सुंदर तारा हो।
7: वाह, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लगी मैम, बहुत ही प्यारी कविता थी, थैंक यू सो मच।
6: वाह,
7: बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लगी मैम, बहुत ही प्यारी कविता थी, थैंक यू सो मच।
6: हाँ जी, तो आइए बढ़ते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड उसके बाद लेंगे आपको एक ब्रेक की ओर लेके चलेंगे और प्यारा सा गाना जरूर सुनाएंगे।
7: आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये है कि जब आसमान में चांद होता है तो उसके साथ साथ छोटे छोटे तारे भी होते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान जाता है वो सिर्फ चांद की तरफ जाता है।
6: हाँ।
7: कि चांद की चांदनी है, पर तारों की तरफ शायद आपका ध्यान नहीं जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे चींटी आती है या छोटी छोटी जो भी चीजें होती है, हम उन पर बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली अपने रिश्तों में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का मतलब होता है, जैसे जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी चीज किसी को दें, आपका कोई सॉरी, कोई थैंक यू, या सिर्फ शायद कॉल करके इतना ही पूछ लेना अगर आपका कोई अपना बेहद बीमार है कि अरे क्या हुआ, आप ठीक हैं, आपको कल तो आप ज्यादा तबीयत खराब थी, अब ठीक है, उतना बहुत होता है
6: जी।
7: लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और बड़ी बड़ी चीजों की तरफ जाते हैं। अगर किसी को गिफ्ट भी देना होता है मैम, तो हम हमेशा आजकल एक ये ट्रेंड बन गया है या क्या है कि हम टैग देखकर गिफ्ट देते हैं,
6: टैग देख के
7: कि ये अरे नहीं यार ये मत दो, ये देखो ना ये कम है, भले ही वो उसे पसंद आ जाए लेकिन हम वो नहीं देंगे, नहीं इसका प्राइस कम, वो देखो वो महंगा है ये देते। तो सबसे पहली बात तो गिफ्ट देते वक्त आप दिमाग में ये रखने की बजाय ये रखें कि सामने वाले को पसंद क्या आएगा,
6: पसंद क्या है?
7: हो सकता है कि आपने कोई कम रेट की चीज ली हो लेकिन वो उसको पसंद आ जाए, आपने कोई बहुत महंगी चीज ली हो शायद वो उसके इंटरेस्ट की ना हो, उसे ना अच्छी लगे।
6: बिल्कुल
7: ठीक इसी तरह रिश्तों में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, पर हाँ कहीं ना कहीं

0: रिश्तों में कई बार छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका उल्टा इफेक्ट ना हो। उल्टे इफेक्ट का मतलब होता है कि कई बार आप तो किसी को केयर दिखा रहे होते हो, आप उसकी केयर कर रहे होते हो, लेकिन सामने वाला आपकी केयर को किस तरह ले रहा है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोच समझ कर रिश्तों में बेबी स्टेप्स के साथ आगे बढ़ें ताकि आपका रिश्ता बेहतर हो।
1: बिल्कुल, और इतने प्यारे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बाद में अब हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसमें जाएंगे गाने की ओर, क्योंकि स्टार्टिंग से कोई गाना नहीं सुना है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को और आते हैं आज के विमन सेंटर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारे से बेहतरीन से टॉपिक को लेकर के। तो बस हम यूं गए यूं आए, स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के टॉपिक को।
8: तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लिसनर्स, की डबल रोल। कहीं ना कहीं मैम घर की महिलाओं को,
3: मूवी का डबल रोल तो नहीं,
8: मूवी का भी हो सकता है,
3: मूवी का भी डबल रोल हो सकता है।
8: और वो ऐसे हो सकता है कि मतलब एक जैसे दिखाते हैं ना कई मूवीज में कि एक मतलब जब इंटरवल से पहले की जो मूवी होती है उसमें वो अच्छी और सुशील मतलब घर में काम करने वाली हाउसवाइफ होती है, और फिर जब वो चेंज होता है, मूवी आगे बढ़ती है तो वो काम करती है, मतलब वर्किंग हो जाती है। तो उसी तरह डबल रोल, सीता और गीता वाला ये भी हो सकता है। तो आज कुछ ऐसे ही डबल रोल पर बातें करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिर इस डबल रोल को कहते क्या है। तो आपने ये तो सुना होगा कि जब हमें दोहरा काम करना पड़ता है तो हम थक जाते हैं। दोहरा काम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक दिन आपको घर में खाना भी बनाना पड़े, प्लस कोई गेस्ट आ रहे हो उन्हें भी हैंडल करना पड़े, और साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं या
3: ऑफिस वर्कर हैं तो आपको वो भी संभालना पड़े।
8: तो ये हो गया एक साथ काफी सारा काम, और इसे कहते हैं रोल ओवरलोड। रोल ओवरलोड का मतलब होता है कि एक ही इंसान में कई सारी चीजें होती हैं और उसे उन्हें पूरा भी करना पड़ता है। महिलाओं में ये तब ज्यादा बढ़ जाता है जब उन्हें ऑफिस और घर दोनों देखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल ये जो एक टैग दिया जाता है, मतलब अगर मैं पर्सनल ओपिनियन रखूं तो मुझे ये टैग उतना नहीं पसंद आता है कि महिलाओं को हमेशा कहा जाता है ना मैम तुम तो सुपर वूमन हो, सब कर सकती हो। लेकिन ये सुपर वुमेन कह के कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम भी डाल दिया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और सुपर वुमेन है, अच्छी बात है, सब कुछ कर सकते हैं। ये
3: मुझे लगता है कि उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम और काम कर सकती हो और मोटिवेट किया जाता है। बट कभी कभी मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो एक औरत होती है वो भी आखिर एक इंसान होती है, एक मशीन नहीं होती है जिसको हमने रोबोट समझ के ऑन कर दिया और वो पूरे घर में बस घूमती रहे।
8: बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, और इसलिए कहीं ना कहीं वो भी थकती है। आज इसी पे बात करते हैं कि स्ट्रेस जो होता है, हमेशा कहा जाता है कि अरे जैसे घर के जो जेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कहते हैं मैं बाहर जाता हूँ काम करता हूँ बहुत थक जाता हूँ, तुम्हें क्या पता मुझे कितना स्ट्रेस है, तुम्हें तो दिन भर घर में ही रहना होता है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और हाउसवाइफ दोनों हैं तो क्या सुनना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अरे तुम्हारे ऑफिस में कितना काम होता है, तुम लोग कितना काम करते हो हमसे पूछो, यहाँ दिन भर काम करते कहो और ऊपर से घर पे आओ घर पे भी काम करो, पता है मैं कितना थक जाता हूँ, मुझे डबल काम करना पड़ता है। लेकिन ये भी तो सोचिए कि घर में जो आपकी मम्मी हैं या फिर जो भी है घर में आपकी अपनी वाइफ भी हो सकती हैं, उन्हें भी तो डबल काम करना पड़ता है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती है कि मुझे बहुत काम होता है, मैं थक जाती हूँ, मुझे घर भी देखना पड़ता है, मुझे ऑफिस भी देखना पड़ता है। लेकिन हमें समझना चाहिए। तो आज बताते हैं कि ये स्ट्रेस जो होता है वर्क प्लेस का वो क्यों होता है, मतलब काम और घर दोनों का ही। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हमें गिल्ट हो जाता है, तब हमारा स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली मेंटली। अब गिल्ट कैसे होता है, अगर जैसे हम ऑफिस का काम करते हैं तो कई बार हमें गिल्ट हो जाता है कि अरे मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत ही, देखो मुझे उसे वहाँ ले जाना था लेकिन मुझे ऑफिस आना पड़ा इसलिए मैं उसे वहाँ नहीं ले जा पाई, या मुझे घर का काम करना था, मम्मी की दवा लानी थी और देखो हम नहीं ला पाए, क्यों? क्योंकि हमको ऑफिस आना था। ये सेम घर पे होता है। मान लीजिए कोई गेस्ट आने वाले हैं, आपको डिनर बनाना था, ऑफिस का कोई काम पड़ गया तो आपकी मम्मी आता है, अरे देखो मुझे उनके लिए डिनर बनाना था लेकिन मेरा ऑफिस का काम आ गया इसलिए मैं डिनर नहीं बना पाई। ये इसका अपोजिट भी हो सकता है, हो सकता है कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस का काम हो और घर पे कोई काम आ गया हो और उस वजह से आप उस टाइम वो काम नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमें गिल्ट हो जाता है। ये गिल्ट सबसे बड़ा कारण होता है आपकी स्ट्रेस का।
3: बिल्कुल। और साथ ही साथ में मुझे लगता है अंशिका कि जब एक घर का पुरुष होकर के, मतलब जो एक जिम्मेदार पुरुष होकर के, और अगर महिला को ऐसे कंपैरिजन वाइज में कहे कि तुम घर पे क्या ही करती हो और देखो हमारी ऑफिस में, तो मतलब अपने वर्क प्लेस को कंपैरिजन करना कि मेरे काम में तो देखो ये है, तुम्हारे काम में ये है, तो वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और कहीं ना कहीं फिर वो यही बातें एक महिला के दिल को ठेस पहुँचाती है।
8: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसे कहते हैं ना कि कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ। हो सकता है कि काम ज्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं और कहीं कहीं तो इतना ओवरलोड होता है कि काम लोग कर ही नहीं पाते, उन्हें घर लेकर आना पड़ता है।
3: बिल्कुल।
8: तो इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और ये तो कतई नहीं कहें कि आप घर में करते क्या। इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो एक बार मेरे घर पे हुआ था।
3: बताओ।
8: हुआ ये मैम कि मम्मी जब रोज खाना बनाती थी तो पापा रोज, आज नमक कम है, कैसे मिर्ची डालती हो, तुम लोग को तो कोई वही नहीं है, अंदाज ही नहीं है कितना डालना चाहिए, और मतलब हमें देखो शॉप भी जाना रहता है, काम भी करना रहता है, और तुम लोग खाना एक घर में रह के बनाना होता है वो भी नहीं कर पाते,
3: एक खाना ही वाला। हाँ। काम होता है वो भी तुम लोग नहीं कर पाते,
8: ऐसे मम्मी को उन्होंने
3: सुनने को मिलता है, हम लोग को भी मिलता है।
8: तो दो तीन दिन ऐसे उन्होंने मम्मी को रेगुलर बोला, तो फिर मम्मी ने कहा, एक दिन सुबह जब उठे तो मम्मी ने कहा ऐसा कीजिए कि आज जो है वो शॉप एक दिन नहीं जानी होती थी वीक में।
3: हाँ।
8: तो वो उस दिन शॉप नहीं जाना था, तो
3: और उस दिन आपको खाना बनाना।
8: हाँ। तो मम्मी ने बोला अब आज ऐसे ही कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो पापा ने बोला क्या हो गया, तो उन्होंने कहा फीवर हो गया है, और उनको फीवर नहीं था
3: खाने ऐसे, मतलब हाँ। उनको सबक सिखाने
8: उन्होंने कहा मुझे फीवर हो गया, बदन में बहुत दर्द है और आज नहीं मुझसे उठा जा रहा है, और मैं भी घर पे नहीं थी, मुझे कहीं काम से जाना था तो मैं अलग चली गई थी, तब मेरी स्कूलिंग थी, मैं पढ़ती थी, तो शायद उस दिन मेरा यूनिट टेस्ट था, तो मैं सुबह जल्दी चली गई। तो पापा ने बोला ठीक है क्या करना है, खाना ही तो बनाना है, मतलब सुबह सुबह क्या बनाओगे, ठीक है खाना बनाना है हम बना देते हैं। तो वो उठे, उन्होंने मतलब काफी अच्छे से किया, लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ सुबह रोटी और सब्जी बनानी थी।
3: हाँ।
8: और उसमें 3 घंटे भी लगे और वो रोटी सब्जी कैसी बनी, अब मतलब
3: वो तो आप जान ही सकते हैं,
8: वो आप जान सकते हैं। तो इसी से होता है कि कभी भी किसी के भी काम को ये नहीं कहना चाहिए अरे मेरे लिए तो चुटकियों का खेल है, क्योंकि वो नहीं होता है, जब खुद पे बात आती है तब पता
3: मालूम चलता है कि कितना जरूरी होता है हर किसी का सहयोग और हर किसी को उस काम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना।
8: बिल्कुल। और उसके दिन के बाद पापा ने फिर कभी नहीं कहा कि मिर्ची ज्यादा है, नमक ज्यादा है, नमक हल्का है, वो कभी नहीं कहते हैं, मतलब जो भी दे दिया जाता है वो चुपचाप खा लेते हैं। और जब कभी हम लोग पूछते हैं मैम जैसे कि और पापा नमक ठीक है, मिर्ची ठीक है, तो उधर से जवाब आता है जो बनाए बेटा वो सब ठीक है, बहुत अच्छा बना है,
3: बहुत
8: अच्छा बना है, वेरी गुड। उस दिन से उन्होंने फिर कभी नहीं कहा। तो यही होता है कि जब हमारे ऊपर कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर पड़ जाती है तब समझ में आता है कि काम एक्चुअली होता क्या है। वैसे
3: exactly,
8: ये तो मस्ती थी।
3: वैसे मुझे लग रहा है कि सारे जेंट्स को ना ये वीकली एक बार ये टेस्ट ओवर देना चाहिए, मतलब ना ये करना चाहिए कि पता चले कि आप घर में बोल रह करके कहते हैं ना कि आप लोग को घर करते क्या होगा,
8: तो वो बस
3: चाहे वो एक लोग हो, चाहे वो दो लोग हो, चाहे फैमिली हो, यार खाना बनाने के लिए तो गैस जलाना ही पड़ेगा, और गैस के बाद में ऊपर से आपको कढ़ाई कुकर सब रखना ही पड़ेगा, चाहे दो लोगों का खाना ही क्यों ना हो, है ना। तो टाइम उतना ही लगता है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में फर्क हो जाता है, बट टाइम उतना ही लगता है।
8: बिल्कुल मैम। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी कंपैरिजन नहीं करें, किसी के काम को कम नहीं समझें, क्योंकि जिस दिन आपको वो करना पड़ेगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कारण की, तो एक मैंने आपको बताया कि गिल्ट होता है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि हम पता नहीं क्यों ये सोचकर चलते हैं मैम कि जो काम करेंगे वो 100% परफेक्ट करेंगे और उसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आप ये सोचेंगे तो आपका काम कभी अच्छा नहीं होगा।
3: Exactly.
8: और अगर गलती नहीं होनी होगी तो भी हो जाएगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये कि जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, मतलब आई थिंक 14-15 की थी मैं, तो एक दिन मम्मी ने ऐसे, मम्मी को कहीं जाना था तो उन्होंने कहा कि आज तुम रोटी बना लो।
3: अच्छा,
8: तो हमने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे तब तक थोड़ा बहुत आ गया था।
3: और उस एज में ना जैसे अभी मेरे घर पे जिया है तो वो भी 9+ की है, तो उसको पता है जैसे उस समय ना एज में ना थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी भी होती है किचन में काम करना। हाँ। और रोटियां पकाना, लेकिन तुम्हारी उम्र तो काम करने की इतनी अच्छी
8: था,
3: 15-16 मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि यंग एज हो गई,
8: यंग एज हो गई थी। हाँ। लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा मुझे मतलब हाँ नॉलेज थी, पर वो कहते हैं ना परफेक्शन वाली, मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं थी। तो मम्मी ने कहा तुम बना लो, तो हमने कहा ठीक है हम बना लेंगे, और मैं गई अच्छे से मूड से बनाने के लिए। लेकिन उधर से दीदी आई और उन्होंने मुझसे बस इतना ही कहा कि अच्छे से बनाना, देखो तुम पहली बार बना रही हो, कहीं ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए।
3: हाँ।
8: और एकदम अच्छी बननी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने जो कह दिया कि जलनी नहीं चाहिए, तो वो उसी का असर था कि मेरी 2-3 रोटियां तो जली
3: ही। स्ट्रेस करना,
8: क्योंकि हमें परफेक्शन था कि मुझे परफेक्ट बनाना है।
3: बिल्कुल,
8: अगर हो सकता है मुझे कोई ना टोकता कि तुम ऐसे बनाओ,
3: तुम फ्रीली, हाँ, हाँ। फ्रीली में तुम अपना काम करो, तो ये तो होता है अच्छी। ये तो मैंने शायद लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि अगर प्रेशर दिमाग में रहे किसी का भी, जैसे सास है, नंद है घर में, और भी जब क्या कहते हैं देवरानी जेठानी है बड़ी, तो एक प्रेशर हो जाता है ना कि हाँ मुझे काम करना है, तो वो प्रेशर में भी चीजें खराब होने लगती है।
8: बिल्कुल, इसलिए प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, और स्पेशली महिलाओं में, खासकर हमारी महिलाएं, वैसे तो मैम घर को लेके, फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन एक चीज को लेकर बिल्कुल प्रोटेक्टिव नहीं होती
3: जी,
8: और वो होती है उनकी अपनी हेल्थ, उनकी अपनी डाइट, जिसकी कोई चिंता नहीं होती। हम एक पराठा भी खा लेंगे बना के, लेकिन घर से अगर बच्चे जा रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, तो फुल मिलना चाहिए।
3: हाँ।
8: मतलब उनको पराठा भी होना चाहिए, उसमें घी भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, सलाद भी होना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर धीरे धीरे हो जाता है कमजोर, और फिर आप कोई काम नहीं कर पाते।
3: Exactly.
8: इसलिए अपना पूरा ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप दोनों काम कर सके, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का।
3: हाँ जी, और अब बारी आती है इसके निवारण की। आई थिंक अंशिका बोले इससे अच्छा है कि मैं बोलूं, तो वो अभी ब्रेक के बाद बताएंगे।
8: हाँ।
3: कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिसके कारण से आप इन सारी चीजों से निजात पा सकते हैं, और एक हेल्पफुल एक हैंड्स आपको हो जाएं, ताकि ये सारी चीजें ना हो, तो बताऊंगी मैं आपको, लेकिन उसके लिए लेंगे एक ब्रेक।
8: तो आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
4: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
3: तो चलिए फटाफट, जैसे कहते हैं ना कि निवारण है मेरे हाथ में, जो कि मैं बताऊंगी आपको, ठीक है अंशिका?
4: जी मैम।
3: तो क्या कुछ बोलना है?
4: तो बोलना ये है कि भाई निवारण जो है और जो ठीक करने का काम है वो आप भी सोचते होंगे कि क्या है, अंशिका जी हमेशा जो है वो हमारी प्यारी जो है समता जी के ऊपर ही डाल देती हैं, तो कुछ कारण तो होगा तभी डाल देती हैं। तो
3: कारण, कोई कारण होगा,
4: कारण है और वो कारण ये है कि मैम ठीक बहुत अच्छे से करती है।
3: नहीं नहीं, वो तो कारण है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट इन सारी प्रॉब्लम्स को भी मैं ठीक कर लेती हूँ, ऐसा कुछ है हुनर हमारे में। तो शुरू
4: मैम समझाती है, अच्छा है ना, इसलिए सामने वाले समझ जाते हैं।
3: हाँ
4: जी मैम,
3: शुरू करें
4: जी।
3: तो भाई पहला, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो भी लेडीज हैं, जो कि आपके घर के जेंट्स हैं, और आपका काम यानी काम लाइफ और बैलेंस, यानी इन तीनों का जो मिश्रण होता है कि अपने वर्क स्टाइल में, अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। वो कैसे बनाना है आइए बताते हैं, और कुछ ऐसे परफेक्ट आपको मतलब पॉइंट बताऊंगी ना कि जिससे आपको अपने काम करने के तरीके से लेकर के अपनी लाइफ को भी सेटल्ड करने का बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप अपनी बाउंड्रीज तय करें, यानी कि आपका हैंडसेट होना चाहिए बाउंड्रीज का, कि अगर आपने अपनी कुछ सीमाएं बना ली हैं किसी काम को करने की, जो एक बाउंड्रीज बना ली है, लाइक ऑफिस का जो टाइम है वो खत्म होने के बाद में आपको लैपटॉप नहीं खोलना है, लैपटॉप बंद करके रखना है, घर पर ऑफिस के ईमेल्स का जवाब कम कर देना है, कम देना है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो जब ऐसा होता है कि हमारे बॉस क्या कहते हैं कि भैया तुम घर में जा रही हो, क्या करना है, घर पे ही बैठ कर के ये वाला काम कर लेना, इसी का जवाब दे देना, ईमेल्स का जवाब दे देना, लैपटॉप खोल करके हमारे कुछ ऐसे क्या कहते हैं क्लाइंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, बस तुम्हें खाली ऐसे रफली देख लेना है। ये मुझे इतना डीपली इसलिए पता है अंशिका क्योंकि मेरी एक रिलेटिव है,
4: जी मैम,
3: वो भी ऑफलाइन काम करती है, मतलब अगर घर पे आ जाती है तो भी वो ऑफलाइन अपना काम करती रहती है, यानी वर्क फ्रॉम होम उनका रहता है मंडे टू फ्राइडे, लेकिन सैटरडे संडे उसको मिलता है, बट वो सिर्फ कहने वाला होता है कि सैटरडे संडे उसको मिल रहा है, बट इतने सारे ईमेल्स, प्रोजेक्ट्स, फाइल्स, वो सब उसको सीन करनी होती है, और वो बताती है कि केवल सीन करने में मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सैटरडे संडे हमारा वीक ऑफ तो है, बट हम उसमें भी बैठ करके काम कर रहे हैं, तो ये जो हो जाता है तो इसका असर हमारी फैमिली पे पड़ता है, हमारे घर के कामों पे पड़ता है, और स्ट्रेस यानी हमारे खुद पर पड़ता है।
4: बिल्कुल मैम।
3: तो आप अपनी एक बाउंड्रीज बनाएं कि ऑफिस का काम खत्म होने के बाद में लैपटॉप घर पे नहीं ओपन करना है, जब तक आपकी खुद की मर्जी ना हो, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, एंड ऑफिस के ईमेल्स का जवाब आप घर में देना बंद कर दें।
4: ऑफिस का काम ऑफिस में और घर का काम घर।
3: हाँ जी। और एक बहुत ही अच्छा सा मेन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि है काम को बांटें। काम को घर में अगर आप हैं तो आप अपने काम को उसको आप हर एक सदस्य में बांट सकते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, राजी खुशी में आप काम भी कर पाएंगे और आपके घर की फैमिलीज भी बहुत अच्छी होगी। घर के कामों की जिम्मेदारी जो होती है वो परिवार के सभी मेंबर्स को, लाइक पति, बच्चों के साथ उसको, उसकी और अपनी मेड, स्पेशली

0: लर्न टू से नो, आपको नो कहना सीखना है। हर काम के लिए यस के लिए राजी नहीं रहना है, ऑफिस में हो या फिर आप अपने घर में या फिर किसी सोशल में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करें, एंड आप जब काम नहीं लेना चाह रहे तो आप उसको नो करना सीखिए।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है मैम, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें एक जैसे दो या एक पॉइंट्स पे काम करना है, बट आप जो कह रहा है आप सारे काम करने लग रहे हो तो एक्स्ट्रा वर्क का भी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। फिर लगता है कि अरे इतना काम है, अभी तो इतना बचा हुआ है, हमने इतना किया फिर भी इतना अभी पेंडिंग ही है।
0: लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट है जो कि हम सभी के अंदर होता है, खास करके महिलाओं को होता है, कि ड्रॉप के कहते हैं कि ड्रॉप परफॉर्मेंस, जो जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट करना, तो उसको आपको छोड़ना चाहिए। मतलब इस पॉइंट को कि हर एक काम को जब आप परफेक्ट बनाएंगे तो उसको आप छोड़ें, क्योंकि कई बार होता है कि हम घर की महिलाएं जो होती है ना, उसको क्या होता है कि हमारा हर काम परफेक्ट हो। बिल्कुल इस लैंग्वेज को छोड़ना है कि हमारा हर काम परफेक्ट जाएगा, जैसे कि घर का हर कोना हमेशा चमकता रहे, ऑफिस का हर प्रोजेक्ट सिर्फ आप ही संभाले, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि घर का हर कोना बहुत साफ सुथरा रहे, किचन हमारा अच्छा रहे, ऐसा ये परफेक्शन रोजमर्रा की जिंदगी में आपको थकावट और स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं दे सकता है।
1: तो
0: ये सारी आदतों को आप सुधारें, क्योंकि अगर हम हमेशा से हमारे अंदर ये रहेगा कि हम ही परफेक्ट रहें, हमारे काम परफेक्ट रहें, हम हर काम को परफेक्टली करते रहें, तो ये थोड़े समय के लिए तो ठीक होता है, बट आगे के लिए ये जो होता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
1: बिल्कुल, और इसी प्रॉब्लम को आपको दूर करना है, यानी कि अपने स्ट्रेस को आपको जो है उसका ख्याल रखना है कि वो बढ़े ना। कई बार क्या होता है ना मैम कि हम सोचते हैं मुझे काम का स्ट्रेस है, फिर हम सोचते हैं हमें घर का स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस मेनली होता कहाँ है? स्ट्रेस मेनली होता है आपका खुद ही जेनरेट किया हुआ, जिस पॉइंट पर आप नहीं सोचते हैं कि इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम खुद उस स्ट्रेस को जनरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
0: Exactly. कहीं ना कहीं हमारे ही हार्मोन सुने और इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रेस को। और मैं बता दूं कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो सबसे ज्यादा असर हमारी पाचन शक्ति पे पड़ता है, यानी हमारी पेट पे पड़ता है और हमारी स्किन पे पड़ता है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि अगर आप स्ट्रेस ले भी रही हैं तो ऐसे लें जैसे कि बिल्कुल छू वाला ले लें, मतलब अभी एक क्षण में ले लिया एंड सेकंड पल हमारा स्ट्रेस खत्म, तो ऐसा वाला लें और खुश रहें, खुशहाल रहें अपनी जिंदगी में। आइए बढ़ते हैं एक गाने की ओर, फिर आएंगे एक प्यारे से नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: डिलिशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहाँ आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी RJ समता, यानी मैं हूँ आपकी RJ समता
9: और मैं हूँ RJ अंशिका।
8: चलिए तो आज हम बात करेंगे महिलाओं में कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि होती है वो BP, यानी ब्लड प्रेशर।
9: वैसे तो ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ भी जाता है, हम कहते हैं ना तुमने मेरा ब्लड प्रेशर आज बढ़ा दिया है, तो सबसे पहले कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का होता है वो ये होता है, जैसे जहाँ तक कहा जाता है ना कि खराब खान पान, लेकिन खराब खान पान से ज्यादा बड़ा कारण होता है आपका ज्यादा गुस्सा करना,
8: सोचना, स्ट्रेस भी हो सकता है,
9: और ज्यादा गुस्सा करना। कहते हैं ना जो ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, यानी कि ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनका BP ज्यादा बढ़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका BP नॉर्मल रहे, तो उसका सबसे पहला कारण ये है कि थोड़ा शांत रहने,
8: थोड़ा गुस्सा कम, थोड़ा शांत रहे,
9: ताकि आपका BP ना बढ़े,
8: नॉर्मल रहे।
9: अब आते हैं कि एक होता है कि किसी किसी को BP बढ़ने की बहुत प्रॉब्लम होती है और किसी किसी को लो BP की प्रॉब्लम होती है। अब आप सोचेंगे लो BP है तो क्या करें, तो आज चलिए पहले यही बताते हैं कि लो BP है तो क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे चैट बॉक्स में हमारी सखी, हमारी सखियां आ गई हैं, तो पहले उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो प्रीति शुक्ला जी आ गई है मैम, जो कि हमें बहराइच से सुनती है। प्रीति जी
8: हेलो, शुभ दोपहरिया, और काफी दिनों के बाद आज आपका नाम पढ़ रहे हैं। कल भी जब अंशिका नहीं आई थी तो मैंने आपके नाम को मेंशन किया था, मतलब बोला था कि हमारी प्रीति जी, आशु जी, नव्या जी एंड एक और आती थी अनुष्का जी और सविता जी, ये सारे नाम जो हैं ये हमारे पिछले 3 साल से हम लोगों के जहन में रट से गए हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि आप लोग गायब हो जाते हैं मॉर्निंग शो के बाद में, उसके बाद सीधे एंट्री करती हैं आप लोग 3 बजे। तो क्या 3 बजे तक आप लोग सोते हैं, मतलब आराम करते हैं खाना वाना खा करके, कि क्या होता है? प्लीज हम लोग को जरूर इसकी जानकारी दीजिए चैट बॉक्स में आकर।
9: और इसी के साथ मैम अमित सिंह जी भी आ गए हैं, जो कि हमें मुंबई से सुनते हैं, लिख रहे हैं हेलो गुड आफ्टरनून। और इसी के साथ नागेश्वर जी भी आ गए हैं।
8: नागेश्वर जी कल कहाँ थे, आप नहीं आए थे, और आप भी ऐसे ही हो गए, का चांद, मतलब कभी आते हैं और कभी नहीं आते।
9: धर्मेंद्र मोहन जी भी आ गए हैं जो कि हमें आवाज विकास से सुन रहे हैं, लिखते हैं समता जी शुभ गुड आफ्टरनून, अंशिका जी नमस्ते, यू वेलकम। हेलो, कैसे हैं धर्मेंद्र
8: जी? धर्मेंद्र जी कैसे हैं? एंड मानवेंद्र जी भी आ गए हैं,
9: महेंद्र जी आ गए जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं नमस्कार आप दोनों आरजेस को, अंशिका मैम जी और समता मैम जी
8: नमस्कार।
9: नमस्कार आपको भी। तो आइए अब बढ़ते हैं बीपी की तरफ। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे लो बीपी वालों के लिए। तो जिन्हें भी लो बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है वो इसलिए होती है, जैसे हम कहते हैं ना टेंशन लेते हैं तो बीपी हाई हो जाता है जब आप ज्यादा सोचते हैं। ठीक इसी का उल्टा कर दीजिए,
8: नहीं लेते हैं तो
9: टेंशन नहीं लेते नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं एक हम वर्ड यूज करते हैं बहुत लापरवाह हो, यानी कि हर
8: खाने पीने में
9: खाने पीने में भी लापरवाह और हर चीज को लो में लेना कि कोई काम ठीक हो रहा है, अगर ठीक नहीं भी हो रहा है तो कहते हैं अरे चलो चलो ठीक है ना, जैसे भी हो रहा है ठीक है। तो ये वाला एक एटीट्यूड होता है, इसकी वजह से भी आपका बीपी लो होता है। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर है वो मैनेजमेंट है, उसको सब कुछ चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस भी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल किसी काम का स्ट्रेस नहीं हो, कि कोई काम अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, खराब हो रहा है तो भी ठीक है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस भी लेना चाहिए जिससे कि आपका
8: हल्का
9: फुल्का बैलेंस्ड रहे। और दूसरा ये होता है कि अगर किसी को लो बीपी हो रही है तो आपको उसको मीठा नहीं देना चाहिए।
8: लो में मीठा देना चाहिए
9: नहीं मैम, हाई बीपी में देते हैं चीनी ताकि वो लो हो जाए
8: ना। लो में कहते हैं कि मीठा खाना चाहिए। ओके अच्छा लिसनर्स बताएं,
9: लिसनर्स बताएं कि लो में खाना चाहिए या हाई में खाना चाहिए, आप बताइए कि लो बीपी होती है तब मीठा खाते हैं या हाई बीपी होती है तब मीठा खाते हैं। अब हम आ जाते हैं कि कारण क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज होती है तो हम यही पूछते हैं ना कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण होता है आपकी डाइट में नमक बहुत ज्यादा खाना। जिन्हें भी रेगुलर बीपी पेशेंट है, रेगुलर बीपी पेशेंट का मतलब होता है कि आप रेगुलर में नमक खा, जैसे बीपी आपको है ही, आप डेली उसकी अगर मेडिसिन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको नमक नहीं खाना चाहिए। कौन सा नमक नहीं खाना चाहिए? हमें सफेद नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा तेज होता है और उससे बीपी बढ़ जाती है। ओके, नागेश्वर जी लिख रहे हैं सॉरी मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है, कल पूरे दिन हॉस्पिटल में था मैं, पिछले 4 दिन से लगातार आ रहा था लेकिन ओके कोई बात नहीं नागेश्वर जी, आप ठीक हो जाएं, ऐसी विषम करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि नमक डाइट में कम लेना चाहिए, सेंधा नमक लेना चाहिए अगर आपको बीपी है तो। दूसरी चीज आती है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण वेट भी होता है। जिनका वेट ज्यादा होता है कई बार उन्हें बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, इसलिए वेट भी मैनेज करना चाहिए आपको। दूसरी चीज है कि कभी भी अपने खाने के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, मतलब भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर हम भूखे रहते हैं
8: काफी टाइम तक, अगर हम लोगों को मतलब डाइट नहीं लेते हैं ना तो बीपी लो हो जाता है
9: बिल्कुल। और दूसरा होता है और सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं होता है जो होता है आपकी नींद का पूरा ना प्रॉपर आराम न करना। क्योंकि बीपी पेशेंट को हमेशा यही कहा जाता है कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है या आप बीपी पेशेंट हैं तो आप प्रॉपर आराम जरूर करें, इससे आपका बीपी सही रहता है। और आती है एक कारण होता है जो कि होता है बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना करना। अगर हम बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो इससे हमारा बीपी बहुत बढ़ता है, इसलिए बीपी पेशेंट को कहा जाता है कि सुबह आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, अगर मॉर्निंग वॉक इनकेस नहीं कर सकते तो हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करिए ताकि कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो।
8: बिल्कुल,
9: अगर बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो इससे आपका बीपी बढ़ जाता है और कई बार और भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम बीपी की वजह से हो सकती है। इसलिए हल्के फुल्के वॉक और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, घर में ही चाहे आप बाहर में जाए लेकिन थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें। दूसरा आता है कि अब हम देखते हैं कि अभी तक तो हमने ये आपको बताया कि कारण क्या क्या हो सकते हैं,
8: निवारण
9: बताते हैं। जो कि निवारण हमारे पास अभी फिलहाल में ये है कि कहीं ना कहीं कई सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हो सकता है निवारण।
8: ब्लड प्रेशर को ठीक करने को निवारण में मैं बताऊंगी आपको कि आपको मानसिक तनाव बिल्कुल कम लेना है एंड खराब नींद और बीमारी, अगर आपको कोई पहले से कोई स्ट्रेस है या फिर कोई बीमारी है तो भी बीपी लो हो सकता है एंड या पहले से डायबिटीज या फिर थायराइड जैसी अगर बीमारी है तो भी बीपी लो की समस्या ज्यादा रहती है। और उसके बाद में मतलब मैं ये बता दूं आपको कि अगर प्राइमरी कंडीशन में अगर बीपी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, आई मीन कि जैसे अगर आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, लाइफस्टाइल बिगड़ने का साफ और सीधा कारण ये होता है कि हमारा खराब पोषण, हमारा खराब जैसे हम लोग जैसे खाते हैं ना खाना, तो उसमें गैप कर देना।
9: जी मैम, खराब पोषण जैसे मैम ने भी बताया कि खाने में गैप कर देने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप सुबह 9 बजे खाते हैं, आपकी सुबह की नाश्ते की जो टाइमिंग है वो 9 बजे है, तो फिर हम नॉर्मली 12 नहीं लेकिन 1-1.5 बजे तक तो मुझे लगता है नॉर्मल सभी घरों में मतलब खाना हो जाता है,
8: 1 से 1.5 के बीच में तो बन जाता
9: है। हाँ, बन ही जाता है,
8: खा भी मतलब लगता भी है कि हाँ हम लोग को ले लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बट सुबह का नाश्ता मैं आपको पूरा रूटीन बताती हूँ। अगर आप मान लीजिए आपको ऑफिस 8 बजे निकलना है, तो आप 7:30 तक पूरा रेडी होकर के, जिन लोगों ने चाय के साथ में, बहुत सारे लोग मैंने घरों में देखा है कि बिस्किट ले लेते हैं, टोस्ट ले लेते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसे ब्रेड को सेक करके या फिर मलाई बंद आता है, मतलब कुछ भी ऐसा मतलब खाना मतलब चाय के साथ कॉफ़ी के साथ ले लेना चाहिए। उसके बाद आपने 10 बजे ब्रेकफास्ट करना ही करना है, ताकि 2-2 घंटे में आपके पेट में कुछ ना कुछ जाता रहे। फिर आपने 12 बजे अगर आपने कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिया तो बेटर एंड बेटर है, एंड फिर आपने 2 बजे खाना ले लिया तो फिर ये बीपी की प्रॉब्लम आपकी कभी नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है।
9: बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना है और अपना ख्याल भी रखना है। तो आइए लिसनर्स इसी प्यारे से टिप्स के साथ चलते हैं, बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और बस यू गए यू आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद प्यारा वाला शो बहुत ही प्यारा वाला शो
8: सुन सहेली,
9: सुन सहेली
8: लाइव नहीं, सुन सहेली समय आप सुन सहेली में है।
9: जी मैम
8: जी, तो चलिए ब्रेक लेते हैं और छोटा सा सॉन्ग।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता, यानी मैं हूँ आपकी RJ समता
6: और मैं हूँ RJ अंशिका।
5: तो लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेक्शन पे आ गए हैं, यानी आज की पोयम जो कि होती है हमारी मोटिवेशन, यानी कि कुछ मॉरल थीम पर। तो आइए सुनते हैं आज की पोयम में आज की
6: स्टोरी। हो जाता है मैम, कभी कभी ना,
5: सिर्फ कभी कभी होना ही चाहिए,
6: सिर्फ कभी कभी। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है सुधा की। और ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ
5: जी।
6: ये स्टोरी शुरू होती है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उससे उसके कई सारे सपने जुड़े हुए होते हैं।
5: ओके,
6: तो सुधा के साथ भी कहते हैं उनकी लाइफ का एक नया फेज तब शुरू हुआ जब उनकी शादी हुई।
5: हाँ।
6: लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति की मौत हो गई।
5: अच्छा।
6: दो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से पूरी ससुराल की जो जिम्मेदारी थी वो उन पे आ गई, क्योंकि उनके जो पति थे वो अकेले उनके घर में एक थे जो कि कमाने वाले थे
5: जी।
6: बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी सपोर्ट के वो बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि कहते हैं ना कि उनकी जो शिक्षा थी वो हो तो पाई थी लेकिन कुछ कारणों से बीच में ही रुक गई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए, घर के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही था
5: जी।
6: तो उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक घर से दो घर से तीन घर करते हुए अपने आस पास अपने मोहल्ले में ही शुरू किया। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे क्योंकि लोगों को उनका काम पसंद आने लगा। धीरे धीरे चीजें और ज्यादा बढ़ती चली गई, मतलब लोगों में उनकी जो काम की, एक कहते हैं ना कि जब आप काम दिल से करते हो, लगन से करते हो, तो वो कहीं ना कहीं लोगों में फैलने लगती है,
5: दिखती है, दिखती है कि कितनी आप कितने शिद्दत से काम कर रहे हैं और कितनी मेहनत से कर रहे हैं और कितना ब्यूटीफुली आप सब तक पहुंचा रहे हैं वो चीज।
6: वो बताती है कि उन्होंने 16-16 घंटे कड़ी मेहनत करके और ज्यादा काम किया और धीरे धीरे अपना खुद का एक सिलाई सेंटर भी खोल लिया, जिसमें उन्होंने सरकारी मदद भी ली। सरकार ने भी उन्हें पूरी मदद की
5: जी।
6: और धीरे धीरे उन्होंने सिलाई सेंटर खोला और आज कई ये एक उनकी कंडीशन है कि वो अपने यहाँ और 10 महिलाओं के साथ काम करती
5: तो हैं। कहते हैं ना कि हम चले थे अकेले और पीछे देखा तो पूरा कारवा बनता गया।
6: यस मैम, वही है कि आज वो 10 महिलाओं के साथ काम करती हैं जो उन्हीं की सहेलियां हैं और उन्हीं के आसपास के मोहल्ले में जो रहती हैं। वो उन्हें रोजगार देती हैं, उनके साथ काम करती हैं और अपने सिलाई सेंटर से प्रोडक्ट्स को बनाकर उसे ऑनलाइन सेल भी करती हैं।
5: ओके।
6: और लोग उसे खरीदते भी हैं क्योंकि उनके हाथ से किया हुआ काम आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है।
5: तो क्या ये जिस लेडी के लिए अभी बताया अंशिका, तो क्या ये सच में किसी सिटी में रहती है आज भी?
6: यस मैम, मैं आपको बता दूं कि झांसी सिटी में वो आज भी रहती हैं और उनका वही सर्विस सेंटर है। हाँ, वो बड़ा हो गया है बट वो ये मानती हैं कि उन्होंने जहाँ से शुरुआत की थी वही में है, इसलिए आज भी वही है उनका सर्विस सेंटर जहाँ उन्होंने शुरुआत की।
5: तो भाई इसीलिए कहते हैं ना कि जब अगर एक महिला ठान ले कि हाँ हमें ये काम करना है तो उनके इस जज्बे को कोई भी हिला नहीं सकता है, बस वो अगर अपने पे आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि महिला अपने आप में एक सशक्त है और अपने आप में हर रूप में पाई जाती है। तो आइए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
6: दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 3:03 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आर्ष्युन्नति, और चल रहा है प्रोग्राम आपकी फरमाइशों का सिलसिला, यानी कि फरमाइशों का कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा, आपके कॉलिंग वाला प्रोग्राम जिसमें आप करते हैं कॉल और अपनी भेजते हैं फरमाइशें। कॉलिंग नंबर है 6393316429। आई रिपीट, 6393316429। तो भैया इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि वक्त तो होता है बहुत कम, फरमाइशें होती हैं बहुत सारी। मुझे है आपकी फरमाइशों का इंतज़ार, आपके डिमांडेड गानों का इंतज़ार, तो लगातार भेजते रहिए। और आइए ट्यून करते हैं हमारी पहली फरमाइश, जो कि हमारे अब्दुल मुजीम जी की आई है, एंड वो सुनना चाहते हैं, जब दिल हो परेशान तो सजदा क्या करें। क्या बात है, आइए आज तो बहुत सूफियत के साथ, यानी कि बहुत ही सूथिंग और इबादत के साथ शुरू होने वाली है हमारी फरमाइश।

बहुत ही खूबसूरत इबादत के साथ आज शुरू हुआ है हमारा कॉल ट्यून गोंडा। तो उम्मीद है मुझे कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अब्दुल मुजीम जी की फरमाइश को आप इंजॉय कर रहे थे एंड आइए चलते हैं आपके चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को देखने के लिए। इसके बाद हम ट्यून करेंगे आपकी अगली फरमाइश। लेकिन भैया जिन्होंने अभी तक अपनी फरमाइश नहीं भेजी है वो उठाएं अपना फ़ोन और डायल करें 6393316429, भेज दें अपनी फरमाइशें फटाक से हमारे पास यानी कि आपके अपने रेडियो ज्ञान असली पर। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं, हेलो नती मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ बिंदास हूँ, बस थोड़ा सा जुकाम हो गया है। एंड इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में। और इसके बाद मैम प्लीज प्ले माय सॉन्ग। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर आपका कॉल आया होगा तो बिल्कुल करेंगे। अब्दुल मजीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाजिया अंसारी जी खिलखिलाती हुई आ चुकी हैं, लिख रही हैं वेरी गुड आफ्टरनून नती मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू यू एंड नमस्कार, आपका भी वेलकम करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में। एंड आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास आई है सुनील कुशवाहा जी की। और भैया मुझे लगता है ना सुनील कुशवाहा जी को चांदनी फिल्म से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, या तो भैया वो हमेशा करते रहते हैं लगी आज सावन की फिर वो झड़ी थी, या आज उन्होंने फरमाइश कर दी है तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊँ अपनी अपनी प्रेम कहानी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए चांदनी फिल्म से। स्टे ट्यून्ड।

और इस गाने के बोल लिखे थे भाई हमारे आनंद बख्शी साहब ने। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि गाना इतना खूबसूरत क्यों है। आवाज है सुरेश वाडकर और नितिन मुकेश की, एंड ऑफ कोर्स शिव हरी साहब ने दिए हैं इसको संगीत। चांदनी फिल्म से आप एंजॉय कर रहे हैं। विनोद खन्ना और ऋषि कपूर पर फिल्माया गया गाना तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। एंड महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून उन्नति मैम जी। गुड आफ्टरनून टू यू। कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून कोना में। सोचा था उन्नति मैम से बात होगी।

थोड़े से नेटवर्क इशू के लिए आपसे माफी चाहेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा और आइए एंजॉय करते हैं हमारी गुलफ्शा जी की फरमाइश को, ये दोस्ती तेरे दम से है।

गुलफशा सिद्दीकी जी की फरमाइश थी ये दोस्ती तेरे दम से है, और चैटबॉक्स में इस गाने को लेकर बहुत सारा तारीफें आ चुकी हैं। विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं, हेलो बरेली वाली आरजे मैम, हेलो कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं। हमारी उन्नति मैम कहाँ गायब हो गई, दिखाई नहीं दे रही। भैया दिखाई दे गए ना आपको, हम वो अलग बात है कि हम आपको दिख नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम आपको ज़रूर देख रहे हैं। गाना बहुत अच्छा है, कसम से लिखा है हमारे विकास जी ने, क्रेडिट गोज टू हमारी गुलफशा जी, बहुत ही प्यारा गाने की फरमाइश की थी उन्होंने ऑफकोर्स। एंड आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये गाना फिल्माया गया था अक्षय कुमार और बॉबी देओल पर, नदीम

0: बन का संगीत उदित नारायण सोनू निगम की आवाज और समीर साहब के बोल। अगला गाना हमारे पास आया है अमित जी का, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है। तो भैया आइए एंजॉय करते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज में। हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, अगली फरमाइश को लेकर के। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।
1: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट, पर लड़की किसी में नहीं मिलती। हाँ, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी? ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

और ऑफ एयर जाते ही भैया हमको पता चला जो कि हम हवा में उड़ने लग गए। फिलहाल बताएंगे नहीं आपको, हमको क्या पता चल गया है। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारे पास आया है वो आया है देवी प्रसाद जी का, जा बेवफा जा तुझे प्यार नहीं करते। ओ माय गॉड, आज तो भाई सीधे धमकी वाली बातें हो गई हैं कि जाओ नहीं करते मोहब्बत। अल्ताफ रजा की आवाज़ में एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के। एंड लगातार आपके मैसेजेस जुड़े हुए हैं, लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हंसते खिलखिलाते गुनगुनाते आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में।

आप एंजॉय कर रहे थे देवी प्रसाद जी की फरमाइश और अब बारी है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ रुख करने का। और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश आई है, मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती किसी सागर में भी ना होगा। लता जी की आवाज़ है, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। श्यामा लाल के लिखे हुए बोल हैं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग। और ऑफकोर्स कल्याण जी ने दिया है, आनंद जी ने दिया है इसका संगीत। कल्याण जी एंड आनंद जी दोनों ही हैं, सो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुनते रहे कॉल ऑफ ड्यूटी अपनी आरजीओटी के साथ 89.6 FM पर।

आप इंजॉय कर रहे थे लता जी की आवाज में धर्मेंद्र रोहन जी की फरमाइश, मुझे ऐसा मिला मोदी, एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं वंश यादव। आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोना में। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए सबिया जी की फरमाइश हमारे पास आई है, एंड एज यूजुअल राहत फतेह अली खान की आवाज में उन्होंने फरमाइश की है बहुत ही खूबसूरत गाने इश्क जान की। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली गोना का अपना FM विद राजीव नती।

के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। लेकिन वंश जी, मैं आपका गाना जरूर प्ले कर दूंगी, लेकिन शर्त ये है भैया कि आपको करना पड़ेगा कॉल, क्योंकि यह है कॉलर ट्यून गुंडा। यहाँ फरमाइशें होती हैं आपके कॉल से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो कि मेरे राहुल पांडे जी की है, गंगा राम की। ओके, तो गाने का नाम है गंगा राम के समझ में ना आए। एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गुंडा। मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, और आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए। आपकी अगली फरमाइश जो अक्की आई है महाराष्ट्र से रमेश जी की, भोली भाली लड़की खोल दे दिल की खिड़की। तो भैया खिड़की तो नहीं खोलेंगे क्योंकि खिड़की मैं घर की ही खोल के नहीं आती हूँ, बंद कर देते हैं बारिश की वजह से। फिलहाल इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, जो कि हमारी अरविंद मौर्य जी की है, एहसान जी की है, शिव मोहन तिवारी रई साहब, राजू टेलर, अनु पांडे, अविनाश जी, देवी प्रसाद जी का हो चुका है, एंड महेंद्र जी, और उसके बाद है हमारे कमल नयन जी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

भैया इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, वक्त को मद्देनजर रखते हुए हमारा अगला गाना आपके लिए पेश करते हैं जो कि हमारे अरविंद जी का है। अरविंद मौर्य जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं मेरा गाना कहाँ है, मेरा गाना कहाँ है। फिलहाल ट्रैफिक से निकलकर हमने आपके गाने को सही मंजिल पहुंचा दिया है, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेश त्रिपाठी जी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। एंड जी हाँ, टेक्निकल इशू कुछ वजह से हो रहा है जिसके लिए आपसे माफी चाहते हैं।

फरमाइश थी हमारे अरविंद जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। एहसान जी की फरमाइश को पूरा करते हुए, वो जब याद आए तो बहुत याद आए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और शायद हमारे एहसान जी को आज कोई बहुत ज्यादा ही याद आ रहा है। चलिए उनकी याद में शामिल होते हैं और एंजॉय करते हैं। आपका अपना कॉलर जीन कुंडा।

एंड ये फरमाइश थी हमारे एहसान जी की। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारे शिव मोहन तिवारी जी की आई है। मेरे दिल से दिल लगी ना करना, और एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि माई रईस साहब राजू टेलर जी की और अनु पांडे जी की है। और अनु पांडे जी ने रोशनी जी को इसीलिए उठाया क्योंकि आपके लिए डेडिकेटेड सॉन्ग है उनके पास।

इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। ट्यून करने के लिए हमारे रईस साहब की फरमाइश इंतजार कर रही है, पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अरे मोरी मैया, भैया हम आपके गाने पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ही लेट कॉल कर रहे हैं तो इसमें बताइए हमारी का गलती है। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं अगले गाने को, क्योंकि हमारा अगला सॉन्ग इंतजार कर रहा है विनोद राठौड़ की आवाज में। वन ऑफ माय फेवरेट गाना आप एंजॉय करने जा रहे हैं, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। स्टे ट्यून्ड।

भाई इस बेहतरीन अपने पसंदीदा गाने को बीच में रोकने के लिए बहुत माफी चाहेंगे। राजू टेलर की फरमाइश थी और वक्त है अगले गाने को ट्यून करने का, जो कि हमारे अनु पांडे जी का है। दोस्ती दोस्ताना फिल्म से, सलामत रहे दोस्ताना हमारा टाइटल ट्रैक उन्होंने फरमाइश की है एंड इस गाने को डेडिकेट किया है। दिलों को थाम के बैठिएगा क्योंकि एक दो लोग नहीं है, पूरी लाइन है मेरे पास। और रिंकी, पिंकी, राहुल जी, गुलफशा, रोशनी दीदी, बबिता और ऑफकोर्स मैं भी शामिल हूँ इसमें। थैंक यू सो मच, एंजॉय करते रहिए। आप सभी के लिए अनु पांडे जी की तरफ से ये बेहतरीन सा नगमा।

और भाई ये थी फरमाइश हमारे अनुपानी जी की, दोस्ताना फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे, आप सभी को डेडिकेटेड, और जिनको डेडिकेट नहीं किया गया उनको हम कर दे रहे बिकॉज आप हमारे दोस्त हैं। एंड थैंक यू सो मच अनुपानी जी। फिलहाल आइए चलते हैं अगली गाने को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग अविनाश जी का है, एंड अविनाश जी सुनना चाह रहे हैं आकाश के हो ऐसा होता मोहरा फिल्म से। ये गाना भी डेडिकेटेड है कुछ लोगों को, और नाम है राकेश जी, तनुश्री, अनु पांडे, आप सबको डेडिकेटेड अविनाश जी की तरफ से ये नगमा।

भाई इन नगमों को बीच में रोकने के लिए पाप आप तो लगेगा ही मुझे, लेकिन माफी चाहेंगे, अविनाश जी की फरमाइश थी। एंड हमारी गुलफशा जी ने दिया है आपको धन्यवाद, अनु पांडे जी अगर आप मुझे सुन रही हो तो उनका मैसेज हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास है महेंद्र जी की, क्योंकि आज है हमारे अपने अक्की यानी कि खिलाड़ी का बर्थडे, तो उन्होंने फरमाइश की है हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, हालांकि हमें अच्छे अच्छे सुनते रहिए।

और ये गाना था हमारे महेंद्र जी की फरमाइश का। आइए चलते हैं, ट्यून कर लेते हैं धर्मेश त्रिपाठी जी की फरमाइश, झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास अभी दो फरमाइशें और हैं, लेट्स सी पूरी हो पाती है कि नहीं।

कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सुनना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या करें, वक्त ने कर दिया इशारा। ये बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना हमारे पास इम्तियाज जी का है, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, जो कि हमारे सुरेश जी और कमल नयन जी का। लेट्स सी हम कमल नयन जी तक पहुंच पाते हैं आज, या ये इम्पॉसिबल डिस्पॉसिबल हो जाएगा।

है कमल नयन, जिसे हम चाहेंगे माफी क्योंकि भैया आज उनको गाना प्ले नहीं कर पाए हैं। आप सुरेश जी के गाने के साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाजत, वक्त है मेरा आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी। एंड लिखा गया है कि उन्नति मैम आज थोड़ा शांत शांत सी थी, आप भी। जी हाँ, कभी कभी हो जाते हैं हम भी कभी कभी शांत, फिलहाल ऐसी कोई बात थी नहीं। आपके साथ बहुत मजा आया, हमने अपने लिसनर्स के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया, आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं अभी भी, एंड आप सभी के ओके बेस्ट प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, इतना मज़ा आया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, और जाते जाते कोशिश करते हैं कि क्या हम अपने कमल नयन जी की फरमाइश को प्ले कर सकते हैं, अगर हाँ तो इन्जॉय करते रहिए। आज का शो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोड़ा शहर की धड़कन, आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके शाम के स्पेशल शो गोधूली में। आपको पता है कि जब भी हम गोधूली में आते हैं, गोंडा की एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को साथ में लेकर के आते हैं। आज जो पर्सनालिटी मौजूद है, दरअसल उनका नाम आपने कई बार सुना होगा और शायद कभी कभी तो देखा भी होगा, लेकिन आज हम उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं, यानी काफी बातचीत हमारी होने वाली है उनके रिगार्डिंग और उनके काम के रिगार्डिंग। दरअसल आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, वो समाज के चौथे स्तंभ से आते हैं, यानी उसकी एक ईंट का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आज मौजूद हैं मिस्टर दिवाकर प्रताप सिंह, रिपोर्टर एट दैनिक भास्कर। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं हमारे इस स्पेशल शो में।
2: थैंक यू बॉस,
1: थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमारे श्रोताओं को हमने बोल दिया है कि भाई आज हमारे बीच दैनिक भास्कर के रिपोर्टर दिवाकर प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी को अंदाजा इस बात का है कि रिपोर्टर्स जो होते हैं वो सवाल करते हैं। आज एक ऐसी सीट पे हमने बैठाया जहां पे आज मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा आपके ही बारे में, चूंकि हमारे श्रोतागण आपके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जान जाए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और परिवार के बारे में आप बताएं।
2: जी, मेरा नाम दिवाकर प्रताप सिंह है। बेसिकली मुझे लोग जानते हैं पूरे जिले में, तो पत्रकारिता बूते ही जानते हैं
1: जी।
2: तो पहचान जो मिली यहीं से मिली, इसलिए पत्रकारिता को मैं बहुत बहुत दिल से दुआएं देता हूं, बहुत ऊपर रखता हूं, और उसकी समझ ले पूजा मैं करता हूं, करना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा यहां से करीब 28 किलोमीटर दूर उमरी बेगमगंज गांव है
1: जी,
2: वहीं मेरी पैदाइश है। और घर में हमारे हमारे पिताजी, माताजी, हमारी पत्नी और दो बच्चे, इतने लोग हैं। मम्मी हमारी स्वास्थ्य विभाग में जॉब करती थी, बीते 2021 में रिटायर हुई हैं। पापा भी स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़े हुए थे, तो पूरा घर का जो एटमॉस्फेयर है वो स्वास्थ्य विभाग मेडिकल से ही जुड़ा रहा है। हम भी वहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब किस्मत कर करके कहां कहां से यहां ले आई।
1: Exactly. तो स्वास्थ्य विभाग में मम्मी और पापा है, कहीं सुबह आपको गुनगुना पानी पीने के लिए मजबूर तो नहीं होना पड़ता है?
2: नहीं, लेकिन सेहत को लेकर काफी वो
1: हिदायतें दी जाती
2: exactly.
1: तो मुझे पहले ही लग गया था कि भाई मम्मी और पापा एक तो वैसे ही हिदायतें देते हैं, और स्पेशली जब स्वास्थ्य विभाग से हो तो हाथ साफ करते रहना है, टाइम से पूरी नींद लेना है, और खाने में क्या खाना है, स्पेशली ये चीजें बहुत होती हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्ट आने वाला आपसे बातचीत करने में, चूंकि आप खुद एक रिपोर्टर हैं और आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिपोर्टिंग पे लगाया है। लेकिन उससे पहले, चूंकि हम आते हैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, फिर आपकी हायर एजुकेशन की तरफ हम जानना चाहेंगे।
2: जी, प्रारंभिक शिक्षा हमारी हुई थी तुलसीपुर से, जो कि अब बलरामपुर जिले में है। पहले गोंडा में ही हुआ करता था, गोंडा बहुत बड़ा जिला था
1: जी।
2: तो हमारी माता जी की पहली पोस्टिंग वहीं पे हुई थी, स्वास्थ्य विभाग में ही, तुलसीपुर में। तो मैं क्लास फर्स्ट से लेके हाई स्कूल तक वहीं से पढ़ा हुआ। वहां के बाद मम्मी ट्रांसफर होके गोंडा आ गई। तो पहले गोंडा, अब ये समझ लीजिए गोंडा का नाम कैसा था, कि पापा हमारे राजी नहीं थे कि मैं गोंडा रुकूं। हाई स्कूल मैं वहां से निकला पास आउट करके, वो भी उस टाइम की बात है, उस दौर में जब नकल अध्यादेश हुआ करता था, 98 की बात है।
1: ओके,
2: तो 98 में 28% रिजल्ट था पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश का।
1: माय गॉड।
2: और हमारे यहाँ हमारे बैच में 232 लड़के थे, उसमें से शायद 34 या 36, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन 40 के अंदर ही थे, इतने पास हुए थे, बाकी सब फेल
1: हो गए थे। ओके,
2: उसमें से 5 लड़के फर्स्ट क्लास थे, जिसमें एक नाम हमारा भी था। और अच्छा लगता है अब सोच के कि पहले और अब में बहुत फर्क। तो वहां से फिर पिताजी ने कहा इनको गोंडा नहीं रुकना है, तो इंटरमीडिएट में दाखिला उन्होंने कराया हमारा फैजाबाद ननिहाल में।
1: ओके,
2: तो ननिहाल में ही मौसी जी का जो गार्जियनशिप थी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, अब मैं तो सोचता हूँ कि होनी भी चाहिए कभी कभी। तो वहाँ से इंटरमीडिएट किया हमने, फिर वहाँ इंटरमीडिएट करके फिर उन्होंने फैजाबाद नहीं रोका पापा ने, क्योंकि फैजाबाद में एक ही डिग्री कॉलेज हुआ करता था उस टाइम पे, काम साकेत,
1: साकेत राइट,
2: जो बदनाम हुआ करता था पॉलिटिक्स के लिए। तो वहां से उठाटा के उन्होंने कहा कि ये पढ़ेंगे सुल्तानपुर के एनआई में, जहाँ का वो उसमें मशहूर था अपनी अनुशासनशीलता के लिए, डिसिप्लिन वहाँ का बहुत अच्छा था।
1: ओके,
2: वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती थी। तो वहाँ पे दाखिला मिला, एंट्रेंस दिया हमने, बीएससी में दाखिला मिला। तो जेडबीसी मेरा ग्रुप था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, लास्ट ईयर बॉटनी केमिस्ट्री से हमने फाइनल किया, बीएससी पास आउट किया। उसके बाद एक साल का थोड़ा टीएसडी था मेरे साथ, फिर आगे किस्मत चली, पीजी हमने बनारस से किया एमएससी में, वो एनवायरमेंटल साइंस से था।
1: ओके, तो चूंकि हम आपसे इसी बात के दौरान एक बात और जहन में आ रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसा होता है जो खुद ही चूज कर लेते हैं कि उनको करना क्या है, और ज्यादातर ऐसा भी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स गाइड करते हैं उस अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई अपना एम्बिशन था और पिताजी का उसमें लेकर के उनका क्या मानना था।
2: ये बहुत अच्छी चीज आपने कही कि जैसे आप, हमने आपको बताया कि घर का पूरा माहौल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था।
1: Exactly.
2: तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपने आप में हो ही जाता है
1: जी।
2: खुद भी आप देखते होंगे। तो मेरा भी मन था कि जैसे सब लोग अगर मेडिकल फील्ड में हैं तो हम भी उसी में जाएं, डॉक्टर बनने का मन था। तो इंटरमीडिएट के बाद माम ने पापा से कहा कि हमको एक साल दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हम तैयारी करेंगे। पापा भी वहाँ थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं पहला बच्चा था, आप ये सबसे बड़ी चीज है, मैं अपने घर में पहला बच्चा था जो ग्रेजुएशन कर रहा था।
1: ओके,
2: ये सन 2000 की बात है। मैं अपने घर में पहला बच्चा था, जबकि हमारे घर में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन सब इंटरमीडिएट के बाद छोड़ देते थे।
1: इवन
2: पापा हमारे भी, वो भी इंटरमीडिएट तक ही पढ़े थे। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी
1: जी,
2: और बीएससी करना है। तो खैर साइंटिस्ट वो साइंस से ग्रुप से थे, तो बीएससी में हमारा खुद का इंटरेस्ट था, तो उसके चलते मैं बीएससी में चला गया। लेकिन हमारा मन था कि हम पहले मेडिकल की तैयारी करें, एक साल हम दें, मौका दें, तैयारी करें, उसके बाद फिर पढ़ते हुए फिर कंपटीशन में बैठेंगे। लेकिन मौका चूक गया, थोड़ी सी वो टीस अभी है।
1: वो टीस आज भी बाकी है थोड़ा सा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपने बताया, चूंकि हम भी मानते हैं जिस तरह के एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं वैसे ही आप बनने की सोचते हैं, घर में स्वास्थ्य विभाग में मम्मी पापा दोनों लोग, तो कहीं ना कहीं माहौल होता है। और मेरे ख्याल से उस वक्त सीपीएमटी हुआ करता रहा
2: जी, बिल्कुल सीपीएमटी होता था, एएफएमसी होता था और आपका पीएमटी होता था
1: जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने बताया कि उसके बाद आपने ग्रेजुएशन अपना मुकम्मल किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या इरादा था, क्योंकि आपको आना तो था मेडिकल सेक्टर में बट मौका नहीं मिल पाया, देन फिर आपके जहन में क्या आया कि आपको क्या करना चाहिए।
2: ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि हमारा ग्रुप था जो फाइनल हमने किया था बीएससी, तो बॉटनी केमिस्ट्री से
1: जी,
2: तो फिर कहा कि अब हमने सोचा कि अब थोड़ी सी इससे ही इसी में आगे बढ़ते हैं, तो मेडिकल में नहीं जा पाए तो रिसर्च में चलते हैं।
1: क्या बात है, मिलती जुलती फील्ड।
2: तो फिर बायोकेमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने एंट्रेंस डाला, 26 सीटें थी
1: जी
2: उस टाइम पे, 21वीं रैंक हमारी थी एंट्रेंस में, 7 या 8 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था उसके, और साथ में ही हमने कहा क्योंकि हाँ ये मैं भी इस पे बाद में आऊंगा कि एक ऑप्शन हमने लेके चला था बाद में कि अगर नहीं यहाँ होता है एमएससी में तो हमने यूपीएम कैट, उस समय होता था यूपीएम कैट से एमबीए होता था।
1: ओके,
2: कि अगर यहाँ नहीं सिलेक्शन होता है तो एमबीए करेंगे,
1: बैकअप प्लान।
2: उस समय एमबीए का बहुत ज्यादा क्रेज, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से अब या क्या कहें, किस्मत को नहीं मंजूर था। तो एमएससी में भी एंट्रेंस में आ गया हमारा, क्लियरेंस आ गई, यूपीएम कैट में भी आ गया।
1: क्या बात है,
2: काउंसलिंग लेटर दोनों आ गया। उसी दौरान हमारे यहाँ, मतलब हमारे एक दोस्त थे, उनके भाई की शादी थी
1: जी,
2: तो वहाँ हम लोग गए थे, काफी एंजॉय किया। तो दोस्तों की शादी में नाचना गाना होता है।
1: Exactly.
2: तो नाचते गाते तो वहाँ से आए तब तक ठीक थे, लेटे रूम पे वहीं सुल्तानपुर में, शाम को उठे तो कमरे में बहुत ज्यादा दर्द था, पेन किलर लिया, फिर वो सुबह फिर दर्द फिर लिया, करते करते ये 2-3 दिन गुजर गए। तो पापा घर पे फोन करके पापा को बताया, तो वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर वो डायग्नोस नहीं कर पाए। तो फैजाबाद फिर नजदीक था, फैजाबाद भी दिखाया, यहाँ अपने यहाँ 2-3 डॉक्टर अच्छे थे लेकिन डायग्नोसिस सही नहीं हो पाई।
1: ओके,
2: तो ठीक उसी टाइम पे उसी साल एक डॉक्टर यहाँ, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा जिंदगी भर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपने रिटायर हुए थे शायद उस साल या उसके एक साल पहले, डॉक्टर सी एम आर सिंह चौधरी।
1: ओके,
2: ऑर्थोपेडिक्स थे, वो लखनऊ से मंगलवार और शुक्रवार आते थे। तो ऐसे ही एक ने बताया, मेडिकल स्टोर वाले ने, जहाँ से दवा मिल रहा था। तो मैं दर्द से इतनी तकलीफ में करा रहा था कि मैं परेशान था, यहाँ तक कि कभी ख्याल था कि मेरा होगा क्या। तो उसने बताया, तो हम लोग, पापा को पता चला तो पापा ने बताया हम क्या एक बार उनको भी दिखा लेते हैं। तो उन्होंने हमको देखा, पूरा 10 से 15 मिनट पूछताछ की, तो उनके दिमाग में कुछ आया, तो उन्होंने खाली एक एक्सरे कराया, एक ब्लड टेस्ट कराया। 2 घंटे के बाद पूरी डायग्नोसिस उनकी आ गई। तो उन्होंने कहा पापा से कि ऐसा है कि बेटे को थोड़ा सा अब आपको रेस्ट कराना पड़ेगा। पूछे क्यों? क्योंकि बेटे की लंबर रीजन में, बैक में, इसको टीबी जनरेट हो गई, ट्यूबरक्लोसिस। L4 L5। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या, ये कल आप शुक्रवार को, अगले मंगलवार को दिखाया, शुक्रवार को आइए, हम इनको प्लास्टर बांधेंगे। तो शुक्रवार को नहा के गए। मतलब इवन आप ये समझ लीजिए, रिक्शे पे अगर मैं बैठता था, रिक्शा अगर कहीं छोटे से गड्ढे से भी गुजरता था तो वो दर्द सहा नहीं जाता। तो वहां फिर उन्होंने प्लास्टर किया 4 महीने में, 2 बार, एक बार चढ़ाया 2 महीने के लिए, फिर 2 महीने के लिए, 4 महीने प्लास्टर रहा। लेकिन उन्हीं की उस डायग्नोसिस, उस ट्रीटमेंट से 4 महीने बाद प्लास्टर खुला तो मैं बिल्कुल फिट था।
1: क्या बात है।
2: उस टाइम पे जब मैं बीमार था, मेरा वजन 54 हुआ करता था इसी हाइट पे, और जब प्लास्टर खुला तब 76 था। हाई प्रोटीन डाइट होती थी, क्योंकि उन दवाओं को हजम करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट ना खाओ तो दवाएं बहुत रिएक्शन करती थी।
1: एग्जैक्टली।
2: तो फिर जब इन्फेक्शन खत्म हो रहा था तो शरीर में भी, बॉडी में भी लग रहा था, तो फिर फिट हो गए धीरे धीरे। लेकिन फिर वो उस दौरान, उस इलाज के दौरान जो खोया हमने, वो शायद जिंदगी फिर दोबारा नहीं दे सकते, क्योंकि वो 2 अपॉर्चुनिटी में से कोई एक भी अगर मुझे मिल जाती तो शायद मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठा होता। फिर उस दौरान डिप्रेशन में भी रहा मैं, किसी को बोल नहीं पाता था क्योंकि पापा से डरता था, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो थोड़ी बहुत अगर बात हो पाती थी ज्यादा तो मम्मी से हो पाती थी, पापा से खुल के बोल नहीं पाते थे। हाँ, ये थोड़ी तकलीफ है कि अगर उस टाइम पे थोड़ा सा सपोर्ट मिला होता तो और अच्छा होता।
1: मतलब ये कहीं ना कहीं लगा कि शायद कुछ गैप भी रहा है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो बहुत कुछ बेहतर तो था हमारी जनरेशन में, लेकिन एक जो गैप होता था वो डर शायद थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था,
2: ज्यादा हुआ
1: और अपनी बातों को कह नहीं पाते। एग्जैक्टली। और आज वो चीज हमें अच्छी लगती है कि जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत फ्रेंडली हो गए।
2: हाँ।
1: इवन आप खुद अपने बच्चों के लिए हो गए।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: बेशक। तो ये कहीं ना कहीं आपने जिस तरह बताया कि एकदम पीक टाइम पे आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट होना, वो 4 महीने का लॉस, वो सिर्फ 4 महीने का लॉस नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा लॉस
2: था
1: रहा आपके साथ में। लेकिन उसके बावजूद आपने जो अपॉर्चुनिटी मिस की उससे अलग फिर अलग काम किया। तो मैं अगर आपकी लाइफ को देखूं तो काफी राइट एंड लेफ्ट करके चल रही है अभी तक की जो जर्नी की बात हुई है, और मुझे ऐसा लगता है एक रियल लाइफ शायद ऐसी होती है, क्योंकि हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल होती है लाइफ, और वो चीज आपकी कहीं ना कहीं बातचीत में नजर आ रहा है। क्योंकि अब छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल एड ब्रेक का वक्त हो गया है, आने के बाद हम आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, पत्रकारिता के बारे में, कि सब कुछ करने के बाद एट द एंड आप एक पत्रकार कैसे बने, कहां से सफर शुरू किया, सबसे पहले कौन सा काम किया पत्रकारिता में, और पत्रकारिता को ही क्यों चुना, ये सारी बातें करेंगे ब्रेक के उस पार। तो अपने लिसनर से कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मिस्टर दिवाकर प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। एक बार वापस से हम आपका वेलकम करते हैं।
2: थैंक यू।
1: और चूंकि हम जर्नी की बात आपकी कर रहे थे, और जैसा कि अभी तक आपने बताया, मैं बहुत सारी चीजें अभी शायद बोल पा रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ से रिलेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कोई पार्ट में मैं अपने आप को ही देख रहा था आपकी लाइफ में भी। और ये बहुत सच्ची बात होती है कि जब कोई अपनी लाइफ के बारे में बताया और आप खुद को वहाँ विजुलाइज करें, ये बहुत रियल होता है, बहुत जेन्युइन होता है। थैंक यू सो मच टू यू। तो अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ये सारी पढ़ाई हो गई, अपॉर्चुनिटी आपकी आई, आप क्रैप नहीं कर पाए, कुछ आपके साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, लेकिन एट द एंड आपने कहीं ना कहीं तो शुरुआत की होगी, जॉब की होगी। तो पहली शुरुआत आपकी जॉब करने की, अर्निंग करने की, कौन सी थी, कहां से थी?
2: पहली शुरुआत मेरी जॉब की हुई थी बनारस से, जिसमें मैं एक फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ था। अब इसको लक कहें या कुछ और, पहली बार इंटरव्यू मैंने फेस किया जिंदगी में। और कंपनी का सेल्स मैनेजर बैठा हुआ था, मेरे साथ कम से कम 20 लड़के थे, मैं पांचवें छठे नंबर पे गया था। उसके बाद उसने इंटरव्यू रोक दिया।
1: ओके।
2: कहा कि मुझे और लड़कों को देखना ही नहीं है। तो इलाहाबाद और बनारस का हेडक्वार्टर खाली था। बेटा कहाँ जाओगे? तो बनारस तो इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैंने इलाहाबाद का नाम बहुत सुना था, तमन्ना भी थी इलाहाबाद में रह के पढ़ने की, लेकिन वो शायद इसमें तो नहीं लिखी थी। सर इलाहाबाद कर दीजिए। कहे नहीं नहीं मैं तुमको बनारस भेजूंगा। मैं कहियो ये क्यों सर? कहे नहीं वो अच्छी जगह है, तुम्हारी जो एनर्जी है उसके लिए वो अच्छी जगह है। क्या ठीक है, कोई काम करना ही है।
1: Exactly.
2: 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनारस पहुंचे, काम किया। वो उस कंपनी का बहुत डल हेडक्वार्टर हुआ करता था, उसको 2 महीने के अंदर हमने निकाल के यूपी में टॉप पे लाया था।
1: ओके।
2: और एक क्वार्टर बीता तो उसके बाद पूरे यूपी में सेल्स में टॉप था मैं।
1: वाओ, क्या बात है।
2: हमारे साथ एक लड़का और था, तो सबकी सेल्स काउंटर टॉप पे हमारी सेल्स थी। तो मजा आया वहां से, काम करने का मजा तो आया, लेकिन वही पीछे की एक टीस बनी रही। वो चिंता नहीं छोड़ती थी। उसी के चलते फिर हमने एक साल बाद फिर एमएससी ज्वाइन किया।
1: ओके।
2: पीजी कंप्लीट किया, लेकिन फिर वो एक बार जब कमाना शुरू कर देता है आदमी, जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, आगे सपने देखना शुरू कर देता है, तो पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: एग्जैक्टली।
2: और मुड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुड़ोगे तो आपको केवल रिग्रेट फीलिंग होगी, रिग्रेट की फीलिंग आएगी, को आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा।
1: एग्जैक्टली।
2: और आदमी को खुद मोटिवेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कहीं रील देख के, किसी का वो स्टेज शो देख के, इससे आप मोटिवेट नहीं होगे। आप जब तक जिंदगी में खुद मोटिवेट नहीं होगे, खुद के अंदर जज्बा नहीं रखोगे, तब तक नहीं होगे। खुद कभी नहीं हारना चाहिए। आदमी उसी दिन हारता है जब खुद शीशे के सामने खुद से हार जाता है।
1: एग्जैक्टली। और इसीलिए शायद कहते हैं भी हैं कि खुद को जीत लिया तो सबसे बड़ी बात।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: खुद से हार गए तो फिर कोई जीत मायने नहीं रखती है। ये बिल्कुल सच बात है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि आपने उसके बाद जो है वो एमआरशिप के लिए अप्लाई किया, आपने उसमें परफॉर्मेंस भी दी, अच्छा किया। क्योंकि किसी भी काम में टॉप को ले जाना आसान नहीं होता, लोग बहुत बहुत साल लगा देते हैं, नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि आपने कुछ स्पेसिफिक कोई चीज फॉलो की थी, या बचपन से आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है कि आप चीजों को जिसको भी करते हैं उस पे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, है क्या? एक्चुअल में मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे की वजह क्या है।
2: होता क्या है कि जैसे हमारे अंदर उस काम को करने के लिए एक्साइटमेंट कितना है,
1: एग्जैक्टली
2: exactly. वो ज्यादा इम्पैक्ट देता है। तो जब मैं गया तो सबसे बड़ा अंदर से एक वो फीलिंग आ रही थी, नहीं यार मैं तो नौकरी करने लगा।
1: है।

0: कि नौकरी करने लगा। वो अंदर की फीलिंग जो आई पहली बार कि नौकरी करने लगा, पहली सैलरी जब आई हमारे अकाउंट में तो उसकी फीलिंग अलग थी। और उस बार जब पहली सैलरी मेरी आई थी, मैंने पहला काम यही किया था, एक साड़ी मम्मी के लिए मैंने खरीदी थी बनारस से, वो मम्मी आज भी रखी हुई है।
1: पहली सैलरी की साड़ी, क्या बात है।
0: और उसके वही कहना कि आपको आप खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे अजनबी शहर था, अजनबी लोग थे, कोई समझने वाला था नहीं। आपको खुद सब कुछ करना है, आपको कैसे सुबह तैयार होना है, शाम को कैसे जाना है, कैसे आना है, सब कुछ मैनेज करना है खुद, और खुद को अपने लिए तैयार रखना है।
1: क्योंकि मुझे भी ये अंदाजा इस बात का है कि जब आप अजनबी शहर जाते हैं और वहाँ अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इट मींस कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, आप बहुत कंसंट्रेटेड हैं, आप उस काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, तभी वो पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आप अपने शहर में तो आराम से, क्योंकि आपके इतने वैसे ही कॉन्टेक्ट होते हैं, आप लगा लेते हैं, बट अगर अनजान शहर में कर रहे हैं तो रियली अप्रिशिएबल है। बहुत सही बात है। अब चूंकि इसके बाद हम आते हैं कि भाई एक जहन में क्वेश्चन आया कि कहां आप हेल्थ सेक्टर में, कहां पत्रकारिता, मतलब बहुत दूर दूर है। हालांकि दोनों ही समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक को कहते हैं कि भाई ये भगवान का रूप है, डॉक्टर्स होते हैं, जीवन की रक्षा करते हैं। दूसरे को कहते हैं कि समाज में जो फैली बुराइयां हैं उसको दूर करने का काम, निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में बोलने का काम। तो वहां से यहाँ का सफर, मतलब ये क्या जहन में आया, किसी चीज ने आपको इंस्पायर किया, किसी ने आपको कहा कि आप पत्रकारिता में आइए, या कोई ऐसी घटना जिसके बाद आप इस डायरेक्शन में आ गए?
0: वहाँ बनारस में ही जब मैं जॉब किया करता था उसी दौरान हमारे एक मित्र थे, तो वहाँ से एक सांध दैनिक मतलब इवनिंग न्यूज़पेपर निकलता है काशीवार्ता
1: जी,
0: तो उसमें वो थे, तो वहाँ एक उसमें लेख रहता है मेडिकल्स, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपको जानकारी काफी है तो क्या आप लिखना पसंद करेंगे? ने क्या, तो उन्होंने कहा कि चिकित्सीय कॉलम आता है, तो हमने देखा तो इंटरेस्ट आया मुझको, तो लिखने लगा। तो हर हफ्ते में एक दिन एक डॉक्टर से बातचीत करके, सारे डॉक्टर में कांटेक्ट के थे, बैठ जाता था उनसे, ये नहीं बताता कि ये मैं आपको लिखूंगा, आप पढ़ेंगे, छपेगा, कुछ नहीं। मैं केवल उनसे बातचीत करता था आधा घंटे बैठ के, और उसी पे अपनी पूरी इंटरव्यू उनकी लिख के दे देता था, छपता था, तो काफी अच्छा लगता था। तो वहां से धीरे धीरे लिखने का जो जिज्ञासा थी वो जगी, और उसको मजा आया फिर करने में। और घर वहां से लौटने का भी, मम्मी की तबीयत अचानक फिर खराब रहने लगी, बिगड़ने लगी, उनकी चिंता उनको ज्यादा बढ़ाने लगी, अकेला बच्चा था घर का। तो लास्टली 2008 में मैं वहां से घर आ गया। तो घर आ गया तो अब बीच में हमने 2006 में एक कंपनी में भरी मीटिंग में कुछ सेल्स डाउन हुई थी, कुछ 1.5 साल के अंदर मैंने प्रमोशन भी ले लिया था, ये सबसे बड़ी बात थी।
1: ओके
0: 2004 में ज्वाइन किया, 2005 के जुलाई के आसपास मैंने प्रमोशन भी ले लिया था। तो वहाँ पे एक बच्चे को, एक जो हमारा MR था उसके चलते सेल्स डाउन हुई थी, तो आगरा में मीटिंग थी, मैंने थोड़ी सी कड़वी जबान बोल दी, तो वहीं टेबल पे मैंने इस्तीफा फेंक दिया, चला आया था।
1: ओके
0: फिर वहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया मेडिकल में।
1: क्या बात है।
0: फार्मा कंपनी स्टेबल की रजिस्ट्रेशन कराया, फार्मा कंपनी का 2 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कराए, और 2 हेडक्वार्टर भी शुरू किए आजमगढ़ और बनारस, लड़के भी अपॉइंट किए। फिर धीरे धीरे करते 2 साल और बीते, कमाई भी ठीक ही ठाक हो रही थी उस दौरान भी। अपनी एक गाड़ी, एक डेवो CLO आती थी पहले, वो खरीद ली थी, सेकंड हैंड थी लेकिन अपनी थी। एक जमीन भी खरीद ली थी, लेकिन फिर वाइंड अप किया तो इधर उधर करते करते वहां उसको हटा दिया। और जब वाइंड अप करते हैं आप, कभी भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है या कोई आप सेटअप वाइंड अप करते हैं तो आपका नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि लोगों को पता चल जाता है ये बंद कर रहे हैं तो
1: गर्ज है आपकी,
0: वो पैसा दबा देंगे आप। तो नुकसान हुआ, लेकिन अब मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता थी तो आ गए। अब यहाँ आए तो दिमाग में कीड़ा मेडिकल का ही था, तो यहाँ आए फिर हमने कहा कि अब इसको पूरा कैसे किया जाए, जो अंदर की खुन्नस लगी हुई है उसको पूरा कैसे किया जाए। तो यहाँ फिर आके हमने फिजियोथेरेपी शुरू किया। डिप्लोमा किया फिजियोथेरेपी में। तो और फिर 2009 आते थे फिर शादी हो गई, तो मम्मी की मेन टेंशन वही थी कि लड़का बाहर है बिगड़ ना जाए। तो 2009 में फिर करके जल्द शादी हो गई, 2010 में फिजियोथेरेपी कंप्लीट हो गई, फिर हमने क्लिनिक स्टार्ट कर दी। अपने गाँव पे ही
1: एज ए फिजियोथेरेपिस्ट।
0: हाँ गाँव पे ही, गांव पे क्लिनिक स्टार्ट कर दी। फिर 2011 में ये हुआ, तब फिर जॉब की सीकिंग शुरू हो गई कि जॉब कैसे लगे। तो 2011 में फिर हमने बीएड भी किया 2011-12 में सेशन में, लेकिन फिर उस टाइम थोड़ा सा वो था कि 1 साल में लेट हो गया, नहीं तो जॉब लग जाती बीएड में प्राइमरी टीचर में। फिर यहाँ भी इंटरेस्टिंग है मीडिया में आने का गोंडा में। हमारी एक छोटी सी हमारे घर पे प्रॉब्लम थी, उसको वहाँ लोकल रिपोर्टर जो थे वहाँ पे हमने 10-15 दिन दिया कि भैया इसको छाप दीजिए छाप दीजिए छाप छाप दीजिए। रोज मैं देखता अखबार नहीं छपी, रोज मैं देखता अखबार नहीं छपी, रोज मैं देखता अखबार नहीं छपी। बस वहीं से दिमाग घूमा, पता किया हमने तो पता चला कि हिंदुस्तान में उस पर्टिकुलर हेड उमरी बेगम में हेड हुआ करता था, अभी भी है, हिंदुस्तान में रिपोर्टर की जगह खाली है, यहाँ कोई नहीं। अब कोइंसिडेंट देखिए, मैं आया गोंडा, यहाँ पे हिंदुस्तान में जो ब्यूरो चीफ थे वो बनारस के निकले,
1: ओके,
0: मिस्टर आशुतोष पांडे जी, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने फिर जानकारी ली, मैं ये बताया कि मैं बनारस से आया हूँ, तो उनको इंटरेस्ट आ गया, तुरंत बिठाया, कहा कि अब एक पन्ना लिख के दो हमको, लिख के दिया। तो उन्होंने पूछा कहाँ इससे पहले कहीं लिखा है, तो उन्होंने बताया कि आपके वहाँ काशी वार्ता में। अच्छा अच्छा, उन्होंने कह दिया अब कल से तुम आपसे खबर भेजो वहाँ पे। शुरू किया, खबर जब शुरू हो गई छपने भी लगी, और जो खबर मैं लिख के आया था एक प्रैक्टिकल के तौर पे, वो सुबह छपी मिली हमको, तो अच्छा लगा कि जो जो काम मैं 20 दिन से कर रहा था दूसरे को कह रहा था वो मैंने खुद किया और दूसरे दिन आ गया, तब इंटरेस्ट आया। लेकिन पत्रकारिता को लेकर लोगों के समाज में अभी भी जो है, जो छोटे शहरों में या छोटी जगहों पे बहुत ज्यादा
1: भ्रांतियां
0: हैं, अच्छी नजरों से नहीं देखते
1: जी।
0: तो पापा ने बहुत हम तो डांट पिलाई, ये क्या है, अब पत्रकार बनोगे, ये करोगे वो करोगे। तो पहले गांव पे थे, हमको कोई पहचानता नहीं, क्योंकि बचपन से बाहर रहते थे, तो ये होता था ये उनके लड़के हैं, उनके पोते हैं, ऐसे लोग जानते। तो जब लिखना शुरू किया, 2-4 दिन बीते, 2 हफ्ते बीते, फिर एक एक खबरें निकलने लगी अच्छी अच्छी, तो ये लिख कौन रहा है, तो पता चला। फिर उसी दौरान हमने मई जून में शुरू किया था, जुलाई में बाढ़ आ गई, तो हमारा जो इलाका है उधर का वो बाढ़ से बहुत प्रभावित होता है, तरबगंज और करनैलगंज
1: जी।
0: तो हमारे गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर पे घाघरा है, तो बाल वहाँ बहुत बांधा कटने की और ये सब बहुत होती दिक्कतें। तो उस दौरान हमने वो जो शौक था वो काफी चरम पे था, तो क्लीनिक भी करते थे, ये भी करते थे। अब आप सोच लीजिए, शाम को मैं 5 बजे निकलता था बाढ़ पे जाके, बाढ़ के क्षेत्र में जाता था बाइक से, वहाँ बंधे पे पूरी फोटोज वगैरह जो हमको समझ में आती थी लेता था, और वहाँ से सीधी बाइक स्टार्ट होती थी 40 किलोमीटर दूर से, और यहाँ आता था, फोटो देता था, खबर देता था, और फिर पहुँच जाता था वापस घर 7-7:30 तक। तो अगस्त में लगातार 10 दिन हमारी खबर फोटो फ्रंट पेज पे आ रही, तो वो बड़ा मजा आया देख के। अगर खबर आई तो दिवाकर सिंह, खबर नहीं आई तो केवल फोटो है तो उसमें दिवाकर सिंह का नाम लगा हुआ है, तो वो देख के मजा आया। और उसी दौरान एक खबर हमारी फ्लैग छपी थी, जो जिसको आप लोग अखबार में ऊपर की लीड होती है फ्रंट पेज की सबसे ऊपर,
1: जी जी,
0: उसको फ्लैग बोलते हैं,
1: ओके,
0: वो फ्लैग की खबर छपी थी। एक स्कूल था, वैसे बाढ़ के दौरान कवरेज के दौरान हमको देखा छप्पड़ में चल रहा था बाढ़ बंधे के किनारे, तो उसने ऐसे पूछा बच्चों से, तो कहा प्राइमरी स्कूल है, हमने कहा प्राइमरी स्कूल छप्पड़ में चल रहा है, तो एक लड़का वहाँ पढ़ाता मिला, हम कहे आप कैसे, कहे नहीं वो हमको मास्टर जी ने रखा है यहाँ पे, महीने का 2000 देते हैं, हम यहाँ पढ़ाते हैं, हम कहे मास्टर जी कहाँ हैं, कहे वो तो फैजाबाद रहते हैं। तो हम कहे ये स्कूल कहाँ का है, कहे ये कोयलावर माझा जो नदी के उस पार वो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का था, और वो स्कूल चल रहा था गोंडा में। अब मैं आया, खबर लिखा, प्रभा जी को बताया, यार खबर तो अच्छी है, खबर उन्होंने पढ़ी रखी, फोटो को सेव कर ली, 2-3 दिन खबर नहीं लगी, हमके लगता है हमसे कुछ गलती हो गई। तो हमने कहा सर क्या हुआ, खबर में कुछ कमी थी क्या, कि नहीं नहीं बेटा कमी नहीं है, काम हो रहा, संतुष्ट नहीं हुआ मैं। लेकिन फिर वही खबर जब अगले दिन हमने फ्लैग छपी देखी, हेडिंग उसकी थी फैजाबाद का विद्यालय चल रहा गोंडा के तटबंध पर, यही हेडिंग थी, इसी हेडिंग से खबर ऑल ओवर इंडिया छपी, मतलब हिंदुस्तान के जितने एडिशन होते थे और हिंदुस्तान टाइम्स जो इंग्लिश वर्जन है सब में छपी थी वो खबर।
1: क्या बात है।
0: अब सुबह हमारे फोन घनघनाने लगे मोबाइल, कहीं सहारा समय वाले का फोन आ रहा है, कहीं GTV का फोन आ रहा है, कहीं आज तक का फोन आ रहा है, कि भैया क्या छाप दिया है, क्या छाप दिया है। और जो टीचर वहाँ, मुझे नहीं पता था, 3 टीचर वहाँ पोस्टेड थे स्कूल में, तीनों नहीं आते थे, वो बच्चा रखा था उसको, वो पढ़ाता था, 10th या 11th में था बच्चा, वो पढ़ाता था। अब उनमें से एक टीचर था जो ठाकुर था, उसने रिलेशन निकाल के हमारे पास फोन किया। शुरुआती दौर का आदमी, मुझे क्या पता, कभी हमको तो नहीं पता, हमें तो खबर दिखी, हमने लिख दिया, पता चला 2 घंटे बाद कि वो तीनों के तीनों सस्पेंड, BSA भी सस्पेंड,
1: ओके।
0: जांच बैठ गई, जांच में ये पता चला वो विद्यालय का बजट 3 बार निकाला गया और कागज में बह गया, इतना बड़ा ब्लंडर था वो,
1: ओके।
0: मतलब खबर निकालते समय मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर थी। वो प्रभारी जी ने, जो हमारे पांडे जी थे, उन्होंने पूरा पड़ताल कराई जब उसकी, पता चले तो बहुत बड़ी खबर है। तो वहां पे उसको स्टेट हेड ने उसको रोक लिया था कि इसको पूरी पड़ताल करके, क्योंकि दो जिलों की खबर थी, तो पड़ताल करके तब लिखी जाएगी। तो वहां से तो बिल्कुल हमको जैसे टॉनिक मिलता है, मिल गया। ऐसे ऐसे तीन चार खबरें निकाली, फिर वहां जो लखनऊ में बैठे थे लोग, तो उनकी नजर में थोड़ा नाम आना शुरू।
1: ओके।
0: तो उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जिले पे लाना है, लड़के में दम है। तो अब जिले, क्योंकि उस दौरान पैसा बहुत कम होता था, तो क्या सरवाइव कैसे करेंगे। तो आए यहाँ पे, आना भी था, मन भी था, सरवाइव कैसे करेंगे। हमने कहा साइड में हमारा मेडिकल का काम है, क्लिनिक करते हैं, तो डॉक्टर साहब यहाँ आर्यन पांडे नर्सिंग होम है, डॉक्टर राज पांडे जी, उनसे बात हुई। तो फिजियोथेरेपी यहाँ उनको जगह खाली थी, अच्छा बंदा चाहिए था उनको, उन्होंने मिले हमसे, सेटिस्फाई हुए, उन्होंने मौका दिया। तो फिर हमने कहा अब इतना है, मिल जाएगा कि हमारा खर्चा चल जाएगा, परिवार हमारा चल जाएगा, तब आ गए गोंडा।
1: ओके।
0: लेकिन पत्रकारिता चलती रही, क्योंकि गोंडा इसने ही पहुंचाया था, उसको छोड़ना नहीं था। तो मजा आने लगा था, गोंडा आके तो और मजा आ गया।
1: तो गोंडा आकर के आपको मजा भी आया, और कहीं ना कहीं आपने अपनी फील्ड में एक बार वापस से साबित किया कि आप जिस काम को छूते हैं उसे मुकम्मल करते हैं। ये बड़ी बात भी और बहुत बेहतर बात भी है। अब चूंकि आपने जो निभाया, जो किया, वो तो हमारे सामने है, वो हमने जस्ट सुना, लेकिन इसके अलावा एक रिपोर्टर का, एज रिपोर्टर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, काम क्या होते हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के उस पार वापस से आएंगे, बातचीत जारी रखेंगे। सुनते रहिए गोंडा वाला एफएम रेडियो, ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने स्पेशल शो गोधली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपके होस्ट मौजूद है आरजे अदनान, और आज इस स्पेशल प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मिस्टर दिवाकर प्रताप सिंह जी। वापस से हम आपका वेलकम करते हैं इसी शो।
0: थैंक यू सो मच।
1: और चूंकि मेरा अगला प्रश्न जो है वो मैं बोल के गया था ब्रेक पे जाने से पहले, कि आपको आने के बाद ये बताने की कोशिश करना है कि भाई ये रिपोर्टर का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है।
0: बेसिकली रिपोर्टर का काम ये होता है कि आप कहीं भी, पहली चीज आप देखिए कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, पॉजिटिविटी। जैसे कई, आप ही देखिए अखबार भरे पड़े होते हैं, सुबह आप देखेंगे तो मर्डर हो रहा है, लूट हो गई है, रेप हो गया है, तो ऐसे अखबार खोलते हैं तो तबीयत अच्छी नहीं लगती।
1: बेशक।
0: तो मेरे ख्याल से तो अब जरूरत है इस टाइम को कि मीडिया को पॉजिटिव होने की, क्योंकि आप समाज में जितनी निगेटिविटी फैलाएंगे, मैं किसी से जितनी निगेटिव बातें करूंगा तो वो चीजें उसके ऊपर हावी होती जाएंगी।
1: बेशक।
0: तो अभी सबसे बड़ी जरूरी है कि समाज में पॉजिटिविटी हमारी जरिए किस तरह से फैले, ये हमारी जिम्मेदारी।
1: एग्जैक्टली।
0: प्लस जो हमारी जॉब है, हमारी जॉब है खबर करना, तो खबर में हकीकत क्या है, कहाँ तक उस हकीकत को सामने लाना है, जिससे समाज का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है वो बिगड़े ना, माहौल ना बिगड़े, ये भी जिम्मेदारी बहुत क्या बोलते हैं बहुत संवेदनशील मसला होता है पत्रकार के लिए,
1: बहुत सेंसिटिव है, सही है,
0: तो उसको बहुत जिम्मेदारी के तौर पे करना चाहिए।
1: ओके, एंगल होता है बहुत जरूरी होता है किसी भी घटना को, अगर यूं ही तो नहीं देखते ना, एक एंगल तो आपको लेना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये एंगल होता क्या है और एक पत्रकार किसी भी घटना को प्रथम दृष्टया जब देखता है तो किस एंगल से देखता है?
0: उसमें देखता है कि पहले कि वो घटना सीधे सीधे है क्या,
1: ओके,
0: घटना है क्या और इसके पीछे कारण क्या है।
1: जी,
0: मान लीजिए कहीं कोई क्राइम हुआ है, तो प्रथम दृष्टया तो क्राइम सीन क्या है, क्राइम क्या है, वो तो बाकी सब पुलिस का काम है, लेकिन अपना है कि क्राइम की तह तक जाना कि ये हुआ क्यों है, किसने किया है, का कारण क्या है, आगे क्या कार्रवाई हो रही है, वही ना कि 5W, कब, क्यों, कहां और कैसे, ये सबसे जरूरी है। और इस बेसिक पे जब चलेंगे आप गलती की संभावना बहुत कम,
1: 5W1H की अगर
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: करते हैं,
0: बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आप भी सेटिस्फाई होंगे और खबर तभी बनेगी।
1: Exactly.
0: खबर कंप्लीट तभी होगी जब ये पूरे कंटेंट उसके अंदर होंगे, क्योंकि जो सुबह खबर पढ़ेगा वो आपको आपका जो खबर होगा उसको सही मान के पढ़ेगा, तो ये आपको खुद बिल्कुल पुष्ट होना पड़ेगा कि जो हम लिख रहे हैं वो सत्य है। 99.9% बिल्कुल पुष्ट हो गए तभी कलम चलनी चाहिए, अगर 1% भी उसने उसमें है दिक्कत तो उसको आपको नहीं लिखना है।
1: चलिए, ये तो आपने जो बात बताई ये बिल्कुल जायज मुझे लगी, क्योंकि शायद प्रिंट मीडिया के साथ प्रॉब्लम कह दे या उसकी स्ट्रेंथ कह दे कि एक बार जो छप गया सो छप गया, तो इसलिए गलती की गुंजाइश ना ही के बराबर होती है। लेकिन फिर भी मान लीजिए इंसान है, छप भी गया, तो फिर प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से अपने माफीनामा देता है या क्या प्रोसीजर अपनाता है प्रिंट मीडिया, अगर बाई चांस 0.1% ही हो गई गलती तो?
0: नहीं, गलती अगर हो जाती है तो चाहे वो हमसे हुई एक इंसान के तौर पे या संस्थान के तौर, क्योंकि संस्थान जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे अगर अखबार में खबर छपती है
1: जी,
0: अगर वो गलत है कहीं से भी
1: जी,
0: वो प्रूफ नहीं होती कि सत्य है, संस्थान पूरी पड़ताल कराता है, अगर वो सत्य नहीं है तो माफीनामा जारी होता है, बिल्कुल जारी होता है, वो छपता है उसमें और उसका माफीनामा संस्थान के तौर पर छपता है।
1: यानी संस्थान भी मानता है कि उससे ये भूल चूक
0: हुई,
1: किस वजह से हुई।
0: हाँ।
1: लेकिन कहीं ना
0: और कभी कभी होता है कई जगहों पे
1: जी
0: कि खबर भी सही होती है, पॉइंट भी सही होते हैं, आपका इनपुट भी सही होता है, सब कुछ सही है, लेकिन किसी की गर्दन फंसी होती है। मैं आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तान के बाद अमर उजाला में रहा, अमर उजाला के बाद अब दैनिक भास्कर में हूँ, हिंदुस्तान में 10 साल हमने दिया
1: जी।
0: अब अखबार का नाम नहीं लूंगा, तीनों अखबार में से एक अखबार था उसमें एक बड़ी खबर पड़ी छपी थी।
1: ओके,
0: तो यहाँ बालिकाओं को लेके, बालिकाओं के ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने छीटा कसी या छेड़खानी ऐसे कुछ किए थे, बड़ी खबर थी
1: जी।
0: तो जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी की गर्दन फंस गई थी, खबर पुख्ता बिल्कुल सत्य थी, उसमें एक रत्ती भर भी गलती नहीं थी। उनकी पहुंच ऊपर तक थी, अखबार के मालिक तक कहीं से बाई पास उन्होंने पहुंचा, वो दबाव बनाया, लेकिन जब वहां पता लगी खबर बिल्कुल सही है तब उन्होंने बीट रिपोर्टर को बुलाया, क्योंकि उनकी नौकरी पे सवाल आ गया था, उनका सस्पेंड होने वाले थे ऐसा कुछ था। तो फिर उसी खबर का अगला अंक जो जारी हुआ थोड़ा सा मोल्ड करके जारी की छापा गया, क्योंकि उनकी नौकरी पे
1: बात बनाई थी।
0: तो वहां गलती संस्थान की नहीं थी, रिपोर्टर की भी नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी वहां भी बनती है हमारी कि अगर आदमी को गलती का एहसास हो गया है, इवन भाई पुलिस तो गलती करती नहीं है या DM गलती करता नहीं है,
1: exactly.
0: प्रशासन गलती करता नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलती होगी जिम्मेदार, तो जैसे घर का कोई परिवार गलती करता है तो मुखिया को जिम्मेदार माना जाता है।
1: एग्जैक्टली,
0: तो अब गलती हुई, उन्होंने एहसास किया, तो फिर उसको हटा देना ज्यादा बेटर है। तो कहीं कहीं करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है।
1: एग्जैक्ट, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस बात के मद्देनजर रखते हुए कि कोई ये जो मैसेज जा रहा है
0: जी,
1: वो समाज की विपरीत नहीं जा रहा बल्कि किसी को सेव करने के लिए जा रहा है।
0: जैसे उस खबर के बाद छपा गया कि जब कार्रवाई क्या हुई
1: जी,
0: तो अब उनकी पॉजिटिविटी आ गई।
1: एग्जैक्टली,
0: अभी उनकी अगले दिन खबर कमी छपी थी, अब उनकी पॉजिटिविटी, कार्रवाई क्या हुई।
1: एग्जैक्टली,
0: तो अब वहां से उनको बल मिल गया, तो उनकी नौकरी बच गई, उनकी पोस्ट बच गई, यहाँ जिला बच गया, सब कुछ बच गया।
1: तो भाई बड़ी बात अभी एकदम स्टार्टिंग में आप कही थी कि सेंसिटिविटी वाली जॉब है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है और बहुत सेंसिटिव होता है। यानी कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा आपको लॉयल होना है, ईमानदार होना है, आपको पक्षपात नहीं करना अलग से, आप बायस नहीं हो सकते, आप न्यूट्रल रह करके ही आप पत्रकारिता कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये आपकी बातों से एकदम फैक्ट समझ में आ रहा है। अब चूंकि ज्यादा वक्त तो नहीं बचा, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को हम ये भी बता दे कि दिवाकर जी जो है वो महज पत्रकार नहीं है, महज फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, महज MR नहीं रह चुके हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे और सफल बिजनेसमैन भी है, एंटरप्रेन्योर भी है। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को नहीं पता है, तो प्लीज अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसमें क्या काम होता है, उसके बारे में थोड़ा सा।
0: जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हमारे पास अब पहले एक थी, अब दो फर्म हो चुकी हैं।
1: जी,
0: पहले शुरुआत में 2020 में कहते हैं ना कि कभी कभी लोग आपदा में टूट जाते हैं, कई लोग बंद, कभी कुछ लोग बन जाते हैं।
1: Exactly.
0: तो कुछ में एक नंबर हमारा भी था।
1: ओके.
0: तो कोरोना का वही 2020 का दौर था, कोरोना के टाइम पे छटनी काफी हो रही थी हर जगह पे।
1: जी,
0: तो हमें संदेश अंदेशा आया कि दिक्कत होने वाली है। तो अचानक जहाँ हमारा ऑफिस था, ऑफिस के बगल ही एक जगह थी, तो जगह अच्छी लगी। तो अचानक दिमाग में आया, वो बिजनेस का वो सोच रहे थे काफी दिन से कि सही जगह मिले तो कर ले, टाइम नहीं सूट कर रहा था।
1: ओके.
0: तो उस टाइम पे आगे अपनी इनकम को जारी रखने के लिए भी सोचना था, क्योंकि परिवार बढ़ रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे,
1: बेशक,
0: और आगे सब कुछ अंधेरे में चल रहा था कि आगे होगा क्या नहीं पता था,
1: नहीं पता था
0: हम सबको।
1: जी,
0: तो बस वहीं से एक स्टार्ट हुआ बिजनेस। तो होता क्या है, शुरुआत करता है आदमी तो थोड़ा सा लक और ये सब कुछ देखता है। तो पत्नी के नाम पे हमने स्टार्ट किया, पहली फर्म हमने डाली, तो उनको हमने आगे किया, फर्नीचर शॉप ही थी।
1: ओके.
0: फर्नीचर का काम शुरू किया रिटेल में। तो 2022 आते आते काम आप लोगों के दुआ से काफी ठीक चल निकला, मेहनत काफी हुई, और वहाँ भी जो पत्रकारिता के दौरान हमने नाम कमाया था उसका काफी लाभ मिला।
1: लाभ मिला उस इमेज का,
0: उस इमेज का, और इमेज हमारी ऐसी थी कि पूरे जिले में आज तक कोई आपको हमारे पीठ के पीछे ये नहीं कहा कि ये बंदा बेईमान है या किसी को इसने गलत किसी के साथ किया, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका काफी फायदा मिला। और अब जाके वो 2022 में फिर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली फर्नीचर की, और नई फर्म भी डाली। अपने ब्रांड नेम हमारा डॉक्टर फर्नीचर वाला करके है, डॉक्टर कहीं छुटा नहीं,
1: वो कसक इस तरह से निकाली जा रही है।
0: तो हमने अपना ब्रांड नेम डॉक्टर फर्नीचर वाला किया।
1: क्या बात है।
0: उससे फिर अब उसी के बैनर के तले काम शुरू है, चल रहा है, और कभी 8,000 रुपए पे काम करने वाला बंदा आज तकरीबन महीने में 1,25,000 रुपए लोगों को बांट।
1: चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, ये चेंज आया, लेकिन ये सुन लेना तो आसान है, मुझे लगता है इसके पीछे एक पूरी यात्रा है, और वो यात्रा सीधी सीधी नहीं बल्कि बहुत उतार चढ़ाव वाली यात्रा है। तो उतना तो शायद बता पाना भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग इस टाइम युवा हैं, बहुत सारे लिसनर्स इस वक्त भी आपको सुन रहे हैं और बिजनेस का आइडिया बहुत लगाते हैं, तो फर्नीचर ना सही कोई भी वो काम अगर स्टार्ट करते हैं, तो पहले बात तो मेंटल लेवल पे किस तरह की रेडीनेस होनी चाहिए, दूसरी बात है एक बिजनेस को चलाने के लिए किन किन चीजों की सच में जरूरत होती है, क्योंकि मैंने देखा युवा एट द एंड कैपिटल पे आके रुक जाते हैं, और जबकि कई सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, हम शायद उधर अप्रोच भी नहीं करते, हम देखते भी नहीं है, हम सीधे कहते हैं किसी दिन जब लाइफ में पैसा आएगा तो हम करेंगे। भाई जब पैसा आ जाएगा तो फिर और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो ये क्या है, मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं, इसके बारे में बताएं।
0: देखिए, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, सेविंग्स के कुछ 50-60 हजार रुपए रखे थे, बोल रहा हूँ शायद आपको मजाक लगे, 50-60 हजार रुपए रखे थे। वो जहाँ शोरूम में स्टार्ट करना था वहाँ हमने उसको पहले 50,000 में से 25,000 हमने उसको टोकन मनी दी कि आपका शोरूम हम ले रहे हैं, जुलाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पक्का नहीं था कि कोरोना चल रहा था, शायद मार्च में लॉकडाउन लगा था, 2 महीने लगातार लॉकडाउन था, तो फरवरी में हमने उसको टोकन मनी दी थी। फिर अब जब कोरोना लॉकडाउन लग गया तो पैसे की आमद और कम हो गई।
1: एग्जैक्टली.
0: तो लेकिन अब यह है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि काम होना था, इधर उधर से दोस्तों से रिश्तेदारों से, खासकर दोस्त ही काम आते हैं, एक दो या फिर एक आध रिश्तेदार।
1: एग्जैक्टली.
0: बाकी आप तकलीफ में हो ना तो सारे दोस्त रिश्तेदार सब कन्नी काट जाते हैं।
1: एग्जैक्टली.
0: तो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर वहां पे अपना रिलेशन था पहले बैंक में जहां मेरा अकाउंट था, उन्होंने कहा कि आप अपना GST दीजिए। तो योजना उस समय चली थी केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, तो स्टार्टिंग फेज में ही वहां से हमारी फाइनेंशियल हेल्प हुई, वो फिर उसी से हमने डेवलप किया और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, वो पूंजी को कैसे डबल करना है, डबल को ट्रिपल करना है, उस पे दिमाग लगाया। आपको गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटी देती है, बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए।
1: इवन
0: कभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप आधे अधूरे में स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि हमने बस दुकान खोली, सामान रखा, स्टार्ट कर दिया। सिस्टम में आइए, पहले आप GST रजिस्टर्ड कराइए। आप जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तब तक आपको बैंक कैसे पैसा देगा,
1: या गवर्नमेंट की जो
0: गवर्नमेंट कैसे मिलेंगे।
1: Exactly.
0: तो आप पहले GST लीजिए, GST के बाद अपना अकाउंट खोलिए, लेन देन कीजिए, या शुरुआत में ही आपको पैसा चाहिए, लेकिन GST सबसे जरूरी है। GST, आधार, पैन, अपने पेपर हमेशा 18 साल अगर आप पूरे हो गए तो सारे पेपर जरूर कम्प्लीट करिए। और मैं सभी को ये कहता हूँ, अगर आप साल का लाख रुपए भी कमाते हैं तो उसका रिटर्न आप फाइल कीजिए, ITR फाइल कीजिए।
1: Exactly.
0: भविष्य में कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
1: Exactly.
0: अपनी कमाई को छुपाइए मत, जो कमाते हैं उसको दिखाइए, बताइए कि मैं इतना कमाता हूँ। लोग क्या करते हैं कि अरे हमारी इनकम अगर हम बता देंगे, ITR फाइल कर देंगे तो सरकार ये कर लेगी। कुछ नहीं करेगी, बल्कि आप सरकार के लिए नंबर एक के बंदे हो जाएंगे आप, क्योंकि वही पेपर आपसे मांगे जाएंगे, तब आप पीछे पीछे भागोगे तो होगा नहीं।
1: Exactly. जब लोन चाहिए होता है तो ये पेपर बहुत जरूरी होते हैं, और सिविल भी इसीलिए चेक की जाती है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं आपको लीगल होना है पहली चीज, दूसरी बात है कि ये प्रोसीजर है, तो कहते ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है।
0: और बिजनेस में सबसे बात जरूरी चीज है कि आप सिविल जो कहते हैं, सिविल तो सरकार ने बनाई है, बाकी समाज में सिविल तो पहले से बनी है।
1: Exactly.
0: लेन देन का तरीका आपका क्या है।
1: Exactly.
0: आपको लायबल होना पड़ेगा, जुबान की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि आपको शुरुआती दौर में बैंक के पास जाने की जरूरत ही न पड़े।
1: Exactly.
0: तो आपको बाहर से ही मदद मिल जाएगी, हो सकता है कोई होलसेलर आपको, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको माल दे दे लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, आप काम शुरू कर दें। बस ये डेडिकेशन होना चाहिए, किलर स्टिंक्ट जो होती है वो होनी चाहिए कि हमको करना है।
1: Okay.
0: तो जब आप उसके साथ काम करेंगे तो जीरो से आपको उठना जरूर है, उठेंगे जरूर, मेहनत करना पड़ेगा। मैंने शोरूम पे शुरुआत में एक महीने अपने शोरूम पे मैं खुद झाड़ू लगाया हूँ, कोई दिक्कत, हमको शर्म नहीं आती थी। घर पे मैंने कभी नहीं लगाया, लेकिन शोरूम पे लगाता था।
1: Exactly. तो इसी बीच में एक सवाल और जहन में मेरे आ रहा है कि आपने इतने काम किए, इतना अच्छा सब में किया
0: जी,
1: फिर पत्रकारिता से जब बिजनेस चुनने की बात आई तो आपने फर्नीचर को ही क्यों चुना? क्या पहले से कोई आपके कांटेक्ट में थे जिनसे आपका लेन देन आसानी से हो सकता था, या आपको लगा कि इसका काम अभी गोंडा में काफी एस्पिरेंट है, यहाँ बहुत जरूरत है?
0: जी जी,
1: क्या सोच के किया आपने?
0: सबसे पहले तो आप बिजनेस जब शुरू करते हैं कोई भी
1: जी,
0: तो उसमें आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आपकी लोकेलिटी के मुताबिक जो बिजनेस आप चूज करने जा रहे हैं
1: जी,
0: उसकी लाइफ कितनी है पहले इसको ध्यान में रखिए।
1: मार्केट रिसर्च बोल सकते
0: हैं, मार्केट रिसर्च थोड़ी सी
1: जी।
0: तो उसमें हमको लगा कि जो फर्नीचर का सेगमेंट है वो लंबा चलेगा।
1: ओके।
0: आदमी घर बनवाना बंद नहीं करेगा, कूल्स में फर्नीचर चाहिए होंगे, ऑफिस बंद नहीं होंगे, शोरूम्स खुलेंगे और उसमें फर्नीचर चाहिए होंगे, तो हर सेक्टर में फर्नीचर का जो सेगमेंट है ये चलेगा और ये लगातार चलेगा, बंद नहीं होगा। आदमी एक घर बनवाया है, दूसरा बनवाएगा, एक फ्लोर बनवाया है, दूसरा फ्लोर बनवाएगा, उसने पुराना फर्नीचर, अब ये एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ अभी, इवन दो साल पहले जिसने मुझसे फर्नीचर लिया था वो फिर से फर्नीचर हमसे खरीद रहा है।
1: ओके।
0: तब मैंने कहा ये सेगमेंट, हमने कहा कि एक्सीडेंटली मैंने सेगमेंट सही चुना।
1: ओके। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि प्रीडिसाइडेड, लेकिन आपने सोचा कि थोड़ा सा जब ठंडे दिमाग से सोचा कि लॉन्ग टर्म में मुझे फायदा क्या करेगा, तो आपको फर्नीचर जो है ये सस्टेनेबल बिजनेस दिखा।
0: मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे आज के टाइम में आपका फूड सेगमेंट यानी कि आपका रेस्टोरेंट
1: जी,
0: आपका ग्रोसरी, आपका रेडीमेड गार्मेंट्स, आपका फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर और बेकरी शॉप्स, ये जो हैं सेगमेंट ये लगातार चलेंगे, ये बंद नहीं होंगे।
1: नहीं होंगे। Exactly.
0: और अगर किसी को करना है सही जगह, सही समय, सही टाइम पे आप करेंगे इन बिजनेस में, किसी में से हाथ डालेंगे आप, क्लिक कर रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्लिक कर जाएगा।
1: Exactly. क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड की चीजें हैं और ह्यूमन नीड हमेशा ह्यूमन नीड रहने वाली है, लेकिन एक बात जैसे आपने कहा कि प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च इस बात की भी करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मिल सकता है, आपको लोकल लेवल पे क्या मिल सकता है, आपके अपने, आपके दोस्त यार क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आपने जो इमेज बनाई है उसका इम्पैक्ट तो होता है।
0: बस
1: आप अगर खराब इमेज बनाएंगे तो भले ही आपने सुधर जाने का प्रण भी ले लिया हो, चीजें करे होंगे, तो उसको भी टाइम लगता है।
0: उसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैं आज वो बेच रहा हूँ सामान, तो पहले आपको कस्टमर बन के सोचना पड़ेगा।
1: सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली।
0: जैसे मैं हूँ तो मैं सेल से पहले उस सर्विस को लेकर सोचता हूँ,
1: सोचते हैं
0: कि इसकी सर्विस मैं कैसे दूंगा। मैं सर्विस को प्रायोरिटी देता हूँ। इवन आप गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम में
1: जी,
0: तो आप पहले सोचते हैं कि फला कंपनी की सर्विस कैसी है, क्योंकि आपको गाड़ी तुरंत बेचनी तो है नहीं ना। आप आज खरीद रहे हैं, 10 साल 5 साल उसको रखेंगे, तो इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, सर्विस कैसे होगी।
1: एग्जैक्टली।
0: तो हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और जब सर्विस आप अच्छी देंगे, वो सेल्स से ही आपकी सर्विस शुरू हो जाती है। आपकी कस्टमर डीलिंग, आपकी रिलेशनशिप और आपके कस्टमर सामान बेचने के बाद उससे फिर आपका कैसा इंटरेक्शन है, तब तक की सर्विस आपको काम देती है, वो कस्टमर फिर रिटेन कर जाता है और एक कस्टमर की चेन फिर बनाता है वो।
1: ये बात बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहा जाता है सबसे स्ट्रांग जो आपका प्रचार होता है, जो एडवर्टीजमेंट होता है, वो लोगों के जरिए होता है, माउथ टू माउथ जो होती है, ये बहुत बड़ी प्रचार होता है। ये बात बिल्कुल सही है। एंड इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स फॉलो करने पड़ेंगे, और ये बहुत अच्छी बात रही कि आपने इतने सारे काम चेंज किए, उसके बाद जिसमें भी आपने हाथ डाला उसमें डेडिकेशन दिखाया, उसमें रिसर्च किया, उसमें ईमानदारी से उस काम को किया, जॉब किया, बिजनेस किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि हमारा चलने का वक्त हो गया है, और जाने से पहले हमारे दो अंतिम प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि इनको बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आप बताएं, क्योंकि आपने इतना टाइम पत्रकारिता में दिया है, इतने लोगों से आप मिले हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक समाज का व्यक्ति होने के नाते, आपका क्या मानना है, कोई संदेश अगर आप हमारे सुन रहे लिसनर्स को देना चाहें।
0: अपने गोंडा के लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं बात कर रहा था कि अपने यहाँ सबसे बड़ी चीज है जो आज के समय में मैं महसूस कर रहा हूँ, खास तौर पर समाज में अभी भी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं
1: जी,
0: उनके प्रति समाज और माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है।
1: ओके।
0: क्योंकि यही बच्चे आगे चल के इस समाज का अंग बनेंगे।
1: बेशक बेशक।
0: तो इनको मैं अपने सामने कमजोर होते देख रहा हूँ।
1: ओके।
0: क्योंकि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ये कमजोर हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। इनको समाज से जुड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
1: तो मैं चाहूंगा कुछ शब्दों में आप सोल्यूशन भी बता दें कि क्या कर सकते हैं।
0: जैसे पहले होता था, हम लोग बच्चे थे
1: जी,
0: हम आप बच्चे थे अपने टाइम में, तो ओपन गेम्स होते थे, खुले में माहौल खेलते कूदते थे और बच्चों से इंटरेक्शन होता था। अब है कि स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है बस उसका नाम पता है, ना उसके मम्मी पापा के बारे में पता है। हम लोग क्या था कि हम लोग बच्चे पढ़ते थे, हम लोग उसके घर जाते थे, वो हमारे घर आता था, हमारे मम्मी पापा उसके मम्मी पापा से बात करते थे, पता होता था, सबके आपस में कॉन्टेक्ट्स होते थे, हंसते खेलते थे। वो चीज अब कहीं गुम हो गई। और इससे क्या है कि बच्चों में इनसिक्योरिटी, पेरेंट्स में इनसिक्योरिटी, सोसाइटी में इनसिक्योरिटी, आप गली में, अब यही गली में आप निकल जाइए, आप देख लिए कितने बच्चे सड़क पे अगर घूम रहे हो, कतई नहीं मिलेगा कोई बच्चा घर के बाहर।
1: एग्जैक्टली।
0: तब फोन में या टीवी में मिलेंगे आपको। कारण उसका है क्योंकि बच्चे अगर खेलेंगे, हम आप कहते हैं ना कि बच्चों को फोन नहीं देना है, टीवी नहीं देना है, लेकिन आखिर बच्चा करेगा क्या? 24 घंटे तो पढ़ेगा नहीं।
1: Exactly.
0: स्कूल से आके 10 घंटे तो पढ़ेगा नहीं। उसका मन भी मन है। और बच्चे को जो आप फ्री नहीं करेंगे, कोई आप माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल एकदम वो काट का उल्लू बन जाए, 99.9% लाए, कतई नहीं। आपका बच्चा स्टूडेंट बन सकता है लेकिन एक बेहतर इंसान नहीं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी इस तरह से, और इसके मायने बहुत है। शायद जितनी बात ये नॉर्मल और जनरल लग रही है, ये सही कहा कि बाद में यही समाज बनेंगे, यही समाज का मेन अंग होंगे। और अगर हम आज इन्हें कमजोर होते हुए देख रहे हैं, तो आज हमें चेतने का टाइम आ गया है, आज हमको जागने का टाइम आ गया, इनके लिए करने का टाइम आ गया। बेशक। आज का अंतिम सवाल है, क्योंकि आप रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में बैठे हैं, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला FM है।
0: मुझे बहुत मजा आया था जब पहली बार लॉन्च हुआ था ये
1: जी,
0: तो मोबाइल पे सुनता था, बड़ा मजा आता था।
1: पहले
0: लखनऊ जाओ तो गाड़ी में जब FM बजता था तो यार गोंडा में अपने FM नहीं बजता है।
1: एग्जैक्टली। लखनऊ नाम से सुनते थे उसमें। और अब क्या है ना कि गाड़ी में अगर आपने ऑन किया तो गोंडा शहर की तरह
0: बस मजा आ जाता है।
1: क्या बात है। तो ये फील ही काफी है अपने आपका, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जो हम हर किसी के लिए लेके आते हैं। और जैसा कि आपका मानना है कि मीडिया का काम एक समाज का बेहतरी के लिए होता है, ऑफ कोर्स हम भी मीडिया के ही अंग है, और हमारा भी कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू है, जो आइडियोलॉजी है, वो समाज की बेहतरी को लेकर की है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मुझे लगता है सुनने वाले हर शख्स को बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ उनको सीखने को समझने को भी मिला होगा आपकी लाइफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो हम सब की लाइफ से बहुत मैच खाती है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत जेन्युइन बात है आपने कही।
0: अरे हम लोग सब एक ही दूसरे के अंग हैं, ऐसा कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं।
1: बेशक,
0: बस खाली एक दूसरे को समझना चाहिए बस।
1: एग्जैक्टली,
0: और समझने के लिए बस है ना कि आदमी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है।
1: बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि जिस तरह हमारे श्रोताओं ने हमारी और आपका टॉक शो सुना है, वो अपनी राय इस वक्त जो सुन रहे हैं हमको एप्लीकेशन की चैट बॉक्स पे आकर के बता सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम अपने स्पेशल गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आपने हमको वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: हमारे पूरे गोंडा वासियों को ढेर सारी बधाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां बुलाने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों से हम कहेंगे कि भाई सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। अगले एपिसोड में किसी और नए मेहमान के साथ उनकी बातें, उनसे जुड़ी हुई बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

आधी मैं तुझमें, मुझमें तू आधा, और इसीलिए हमारा रिश्ता है इतना ज़्यादा खास। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सभी के साथ लाइव है आपके अपनी वाली आरजे बीना। एंड यस, ना सिर्फ लाइव हूँ मैं और आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ बात करने आज के खास दिन की। वैसे आज आपको पता है, आज जो है आज उत्तराखंड में मनाया जाता है हिमालय दिवस, और हिमालय से जुड़ी चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए। वैसे तो आप सभी को पता है हिमालय के बारे में, भाई एक लंबी श्रृंखला है पहाड़ों की हिमालय के अंतर्गत, और ये वैसे भारत के जितने भी हिमालयी पर्वत हैं या पूरा जो तंत्र है हिमालय का, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए और उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है ये दिन। वैसे मतलब पहाड़ों को ध्यान से समझें तो आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना सुनाई देती है जो भूस्खलन से या फिर पहाड़ों से किसी तरह का मतलब जल स्त्राव हो रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कंसर्न बढ़ाना पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि अगर हम कंसर्न नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो आपदाएं सुनने में आती है ना रोज़, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमारा या किसी का भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं होगा। कई बार हम लोग ये सोचते हैं अपने एरिया में तो ये नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ आए, या ज़रूरी नहीं कि पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं ना। तो हम सभी को थोड़ा कंसर्न बढ़ाना चाहिए, और जैसा कि आपको पता है आज है वेंसडे, तो आज हम लोग करेंगे गानों की जुगलबंदी आप लोग के साथ। एंड ना सिर्फ जुगलबंदी होंगी बल्कि दोनों टीमों के साथ बराबरी की पार्टिसिपेशन भी देखने को मिलती है, और मुझे पता है आप लोग तैयारी से पूरे आए हैं। तैयारी मतलब कि एक दूसरे को अच्छे से मज़ा चखाने वाली तैयारी जो होती है ना, स्पेशली लड़के जो हैं लड़कियों को शब्द जब देते हैं गाना गाने के लिए। हाँ, अंताक्षरी स्पेशल शाम है, आज बुधवार है, आप सुन रहे हैं गुंडा मैसेज मसाला आरजे पीना वाला के साथ, आरजे पीना यानी कि मेरे साथ। और आपको पता है वेंसडे के वेंसडे हम लोग काफ़ी सारी कॉल्स लेते हैं, आपकी आवाज़ में गाने सुनते हैं, क्योंकि आज होता है एक लाइव कॉम्पिटिशन। वैसे किसी भी, मतलब मैंने नहीं सुना रेडियो स्टेशन पर लाइव अंताक्षरी हो, लेकिन हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अलग है, एक दूसरे से कनेक्टेड ज़्यादा है, इसीलिए एक दूसरे की जो कहते हैं ना कंपटीशन वाली भावना उसको समझ लेते हैं। कई बार लड़के जीतते हैं, कई बार लड़कियां जीतती हैं, और कई बार टाई भी हो जाता है, और मुझे अच्छा लगता है जब दोनों ही टीमें बढ़िया खेलती हैं। और हारना जीतना यार एक तरफ होता है, कभी भी इस चीज़ को इतना मतलब वो मत समझना कि नहीं नहीं नहीं भाई यहां तो जीत के हम नहीं। मुझे पता है आप लोग भी ये नहीं सोचते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सभी लोग मतलब खेलते हैं तो दिल से खेलते हैं, ये सोच के नहीं खेलते कि हमको जीतना है, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है। एंड दैट फीलिंग मेक्स दिस शो वेरी वेरी फैंटाबुलस, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप जब खेलते हो तो आपकी आवाज़ में वो एनर्जी दिखती है। और आज 9 सितंबर है, और आज बर्थडे भी आपके फेवरेट स्टार यानी कि मेरे भी फेवरेट स्टार, हमेशा से मतलब कहते हैं ना कि टॉप में रहता है। जब भी किसी बेस्ट एक्टर या फेवरेट एक्टर की बात होती है तो मैं ना चाहते हुए भी ये नाम तो हमेशा ही बोल देती हूँ। जी हाँ, अक्षय कुमार आपकी फेवरेट और मेरे भी फेवरेट, और अक्षय कुमार की जो आज बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया है, मतलब सालों से एंटरटेन कर रहे हैं, तो अक्षय के बारे में बात करना तो बनता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये डूड टाइप पर्सनैलिटी वाले इंसान आज कितने बरस का गया। जी हाँ, 59 बरस के हो गए हैं ये, यानी कि 59 साल के हो गए हैं, और आने वाले साल में ये 60 के हो जाएंगे। लेकिन देख के कोई कहेगा क्या, नहीं यार हम लोग तो अभी 24-25 में ही एकदम 50 के लगने लगते हैं, क्या स्ट्रेस लेते हैं। वैसे ये लोग बहुत अपना ध्यान रखते हैं यार मूवीज़ के लिए, इनको अपनी बॉडी को कैसे चेंज करना होता है। मैंने देखा है कि कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो एक मूवी बनाने के लिए कई बार मतलब अपना वेट गेन करते हैं, 15 किलो 20 किलो 25 किलो तक, और फिर वो वेट लूज़ भी करते हैं। और इसमें भूमि पडनेकर का नाम बहुत अच्छे से मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक फिल्म आई थी जो दम लगा के हईशा, उसमें उन्होंने बहुत वेट गेन किया था, एंड कुछ ही महीनों बाद उनको फिर देखा गया, वो वापस से अपनी मतलब कितना अच्छा ये लोग करते हैं। और सच्ची मतलब कहने के लिए कि अरे यार हम तो एक्टर बन जाएंगे, एक्टर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब लोगों की अच्छी बातें भी सुननी पड़ती हैं और बुरी बातें भी। यहाँ तो हमें कोई एक ताना भी दे देता है तो सुन के हम लोग आग बबूला हो जाते हैं। तो बीइंग एक्ट्रेस और एक्टर बहुत कुछ सहना पड़ता है,
और इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो पूरा नाम जो है वो है राजीव हरिओम भाटिया। हाँ, क्या बात है, अक्षय कुमार का नाम ये है। ये रहने वाले अमृतसर पंजाब के हैं और जो इनकी सबसे ज़्यादा फेमस फिल्म हुई, जहाँ से मतलब इनको लोकप्रियता मिली, वैसे तो इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारी फिल्में की जो बहुत लोकप्रिय नहीं हुई, लेकिन पहली फिल्म जिसने इन्हें पहचान दिलाई वो है खिलाड़ी कुमार। ठीक है, फिर अक्षय कुमार ने पिछले लगभग 30 सालों से 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और एक्शन, कॉमेडी, देशभक्ति, हर टाइप की फिल्मों में इन्होंने अपना मतलब अच्छे से अच्छा, मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब तारीफ जितनी की जाए कमी होगी यार, चाहे वो OMG हो, चाहे हेरा फेरी हो, भूल भुलैया हो, केसरी हो, एयरलिफ्ट हो, और 2009 में इन्हें पद्मश्री भी दे दिया गया। और मिलना चाहिए भाई एक ऐसा एक्टर जो हर रोल में अपने आप को फिट करके हमारे साथ अपनी हर चीज़ को शेयर कर रहा है। एंड मैं सच्ची बताऊँ, ये मतलब अक्षय कुमार की मैं तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, मतलब आप लोग सोचेंगे कि इनको पसंद है तो तारीफ़ कर रही है, लेकिन आप लोग भी समझते होंगे वो मतलब ईगो से बिल्कुल दूर हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउन टू अर्थ टाइप इंसान है जहाँ तक मुझे पता है। और बहुत सारी बातें इनके बारे में करने का मन तो कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, आज मुझे आप लोग के साथ खेलना भी है, मतलब खेलना अक्षय कुमार की बातें करना और खेलना दोनों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी कहता है कि हमेशा खेलते रहो। यस, तो चलिए आज वैसे आप लोगों ने मतलब अक्षय कुमार की फेमस फिल्मों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा होगा। वैसे चलिए मैं बता देती हूँ कि करियर की शुरुआत में उन्होंने बैक टू बैक जो है ना 14 फ्लॉप फिल्में भी दी थी, उसमें तो काफ़ी सारी ऐसी थी जिनका नाम भी आपको पता नहीं होगा, और लोगों को लगा कि अक्षय जो है इन 14 फ्लॉप फिल्मों के साथ जो है ये आउट हो जाएंगे। ठीक है, और उस ज़ीरो मतलब आप खुद सोचिए, जिसकी 14 फिल्में फ़्लॉप हो जाएँ उसके बाद वो कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। पर कहते हैं ना कि सीखते सीखते इंसान बहुत कुछ कर लेता है। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा और बता दूं कि असली में जो इनको फेम मिला उससे पहले ये कुछ बैकलॉग में काम करते थे, जैसे कि बैंकॉक में ढाबों पे इन्होंने काम किया है, रेस्टोरेंट्स में वेटर बन के काम किया है, शेफ़ की शिफ्ट्स में भी काम किया है, इसके अलावा मार्शल आर्ट्स में इन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। जब वो मुंबई आए तो उन्होंने बच्चों को कराटे सिखाना शुरू किया, भाई तुरंत तो इनकम हो नहीं जाती, आपको साइड इनकम रखनी पड़ेगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे मॉडलिंग में एंट्री मारी, कैमरे के सामने पहली बार आए तो उनको समझ में आया कि हाँ ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कैमरे के सामने। वैसे लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इनको तो स्टार नहीं माना, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, आई गेस उनका भी टाइम आ गया। और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो काफ़ी सोशल बैकग्राउंड है उनके पिता जो हैं

तो अगर उनकी फैमिली की बात करें तो उनके पिता हरिओम भाटिया आर्मी ऑफिसर थे, माँ अरुणा भाटिया वो भी उनके साथ ही रहती थी। साल 2001 में अक्षय ने बॉलीवुड लेजेंड्स जैसे कि राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की। दोनों के दो बच्चे भी हैं, बेटा आरव है, बेटी नितारा है। पूरी फैमिली की फैमिली जो है वो मीडिया से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि ट्विंकल ने भी बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, पर एक टाइम पे इन्होंने अपना फैमिली जो कहते हैं ना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभाला है। काफ़ी अच्छी इनकी फैमिली लाइफ चल रही है। हे बेबी हो, भूल भुलैया हो, वेलकम हो, और ये लगातार 2007 में आने वाली इनकी चार जबरदस्त फिल्में थी, नमस्ते लंदन तक। और इन्होंने उस मतलब 2007 के बाद ये लगातार ऊपर ही उठे और आज तक इनकी सारी फिल्में लोगों ने बहुत पसंद की। हमारे साथ शिवाजी यादव हैं बजाज मिल से, वंश यादव हैं बजाज मिल से। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। दीदी मैं जा रहा हूँ। शिवाजी आप कहाँ जा रहे हैं भाई, अभी तो खेलने की शुरुआत भी नहीं हुई। और चलिए आपके पसंदीदा एक्टर यानी कि अक्षय कुमार के आपको गाने सुना देते हैं भाई, उनका बर्थडे है तो सभी लोग फटाफट से पहले चैट रूम में अक्षय कुमार को विश भी कर दें। और मुझे लगता है कि आज उनका बर्थडे है तो उनके लिए कुछ गाने तो सुनना बनता है बॉस। तो चलिए अक्षय के बैक टू बैक कुछ प्यारे प्यारे से गाने सुनते हैं और

तो ये तो सबका पसंद वाला गाना हो गया, लेकिन कोई ऐसे गाना जिसको सुन के आपका लगे कि मतलब दिल कहे कि यार ये गाना कैसे बन गया दुनिया में, तो ये गाना सुनिए और बताइए कि अक्षय का ये गाना कैसा है। ठीक है ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए टीम ए एंड बी, फटाफट से हम लोग शुरू करेंगे आज अंताक्षरी, और बहुत जल्दी शुरू करेंगे जिससे कि मतलब टाइम बिल्कुल वेस्ट हो ही ना आज, क्योंकि सबको दोनों टीमों को बराबर बराबर टाइम मिले। तो जल्दी से टीम ए बी के मेंबर्स मैं कहूँगी कि चैट रूम में अपनी जो प्रेजेंस है वो लगा दें।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9816 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
6: अरे सुना
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
8: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
9: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
8: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
9: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
8: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
10: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
11: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात। Thought of the day and what happened to this day. जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड। सो वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। और काफ़ी सारे अक्षय के गाने सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको लास्ट वाला गाना तो बहुत पसंद आया होगा ना, मतलब इश्क कुत्ता है ये, मुझे सुन के बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ऐसा गाना तो सुन के यार कोई भी मतलब हंस हंस के उसका पेट मतलब लोटपोट हो जाए यार, ऐसा गाना मतलब कौन लिखता है, लिरिक्स कैसे ये लोग बनाते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता। गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी कैसे हैं और अनूप आ चुके हैं, गुड इवनिंग अनूप जी क्या हाल है। और लड़कों की टीम लग रहा है एकदम फुल टू तैयार है, लेकिन लड़कियों की टीम अभी भी बेकरार है लग रहा है, चाय बना के पीने में लगी हैं फिलहाल। मैं भी चाय की प्याली पी के रख के आई हूँ और इंतज़ार ही कर रही थी वैसे लड़कों की टीम का और लड़कियों की टीम का। लड़कों की टीम में तो भाई पूरी ऊर्जा दिख रही है और हैंड रेज कर दिया, भाई हम तैयार हैं, मैं एकदम सही हूँ। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। थैंक यू वेलकम करने के लिए। वैसे तो मैं काफ़ी देर से आप लोग का वेलकम कर रही थी, लेकिन आपने आके मेरा भी वेलकम कर दिया, मज़ा ही आ गया। चलिए ये बताइए आप लोग आज खेलने के मतलब एकदम दल बल से आए हैं, तो अपनी सखियों को भी बुला लीजिए, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, वैसे टीम मेंबर ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आप बुलाएं, आप अपने साथ में अपने दोस्त अपने मतलब अपने रिलेटिव्स को भी ज्वाइन करा सकते हैं, तब और मज़ा आएगा एक दूसरे को सपोर्ट करने में, एक दूसरे की टीम को सपोर्ट करने में। फिर आप लोग को लगेगा कि यार मतलब क्या बढ़िया सा गेम चल रहा है, तो ये चीज़ रखिए हैं, तो फिर इससे आपको ना मतलब ये होगा कि हमें इंतज़ार नहीं करना है, हम गेम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कहाँ कहाँ से सुनने वाला है। फ़िलहाल मैं आप लोग को सुनाने वाली थी कुछ, लेकिन क्या सुनाने वाली थी वो तो मैं भूल ही गई। फ़िलहाल के लिए ये बात बिल्कुल सही है यार कि मौसम जो है ना बड़ा रंग दिखा रहा है आज। वैसे मौसम से याद आया मुझे कि ये बदलता मौसम हमारी हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। मैं देख रही हूँ हर दूसरा इंसान कह रहा है वायरल फीवर है, वायरल फीवर से ज़्यादा मच्छर, भाई घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि मतलब घर में कुछ भी चीज़ें हैं तो सबसे पहले तो पानी वगैरह, बारिश में अगर बाहर गमला शमला रखा होगा ना तो उसमें पानी जमा हो जा रहा होगा बारिश का, तो उसको गिरा दिया करें जिससे मच्छर अपना जो रिप्रोडक्शन का काम है वो ब्रीडिंग वहाँ ना कर सके। इसके अलावा भाई ओम श्री गणेशाय नमः, मेरे भाई क्या बात है, श्री गणेशाय भी हो गया मतलब, लेकिन देखिए आपके श्री गणेश करने से क्या फ़ायदा जब लड़कियों की टीम ही नहीं आएगी। फ़िलहाल अगर वो लोग नहीं दिखते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग मतलब आप लोगों से गाने सुनते हैं बिना किसी गेम के, पर अभी तो लड़कियों का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, नहीं लड़कियाँ कहेंगी कि भाई मतलब हम लोग का इंतज़ार नहीं किया गया, हम लोग तो लड़कों का इंतज़ार करते हैं, तो ये वाला सीन नहीं होने देंगे हम लोग। और हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। वैसे ये बताइए कि एक गाना है ये मतलब मैं आप लोग को डेडिकेट ही करने वाली थी, लेकिन सोचा कि आप लोग के साथ ही करूं, अकेले गाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कैसा है ये गाना। वैसे ये गाना मेरी पसंद नहीं, आप लोग की भी पसंद है, तो स्टार्ट करती हूँ। कोई गेस करने वाला है तो बताना कि ये गाना कौन सा है। वैसे मेरा नहीं, सबका फेवरेट है, और ये उन लोगों के लिए जिनकी वजह से चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान आती है।

आप लोग को डेडिकेट किया है, क्योंकि ये गाना जो है ना वो सच में एक दूसरे के लिए ही है, क्योंकि आप आएंगे तो भी दूसरा गा पाएगा और तू भी दूसरा मुस्कुरा पाएगा, तो इसलिए मुस्कुराने की वजह भी तुम हो और गुनगुनाने की वजह भी तुम हो।

आज लड़कियों की टीम थोड़ा स्लो मोशन में काम कर रही है। चलिए मोशन कैसा भी हो, हम डरने वालों में से नहीं है। देखते हैं कोई कॉल करता है कि नहीं। अभी थोड़ी देर में हम लोग शुरू करते हैं, मैं पहला लेटर दे दूंगी।

0: सो ये गाना तो यहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि अभी तो कुछ है जो सुनाने को बाकी है, वो है आपकी आवाज़ में गाने। तो चलिए अब शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, बिना डिले किए करते हैं शुरू अपना काम। तो पहला लेटर जो है वो दोनों में से जो भी टीम को मिल जाता है, मतलब मिलता है क्या, मतलब जो सबसे पहले कॉल कर देता है वो टीम पॉइंट की हकदार होगी। तो चलिए पहला जो मेरा फेवरेट सा लेटर है वो है इसी गाने का, क्योंकि मतलब ये गाना ख़त्म हुआ, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की तुम वजह हो, जिया जाए ना पिया रे र। तो सबसे पहला शब्द है र से, तो चलिए देखते हैं र से कौन रुकता है और कौन गाना सुनाता है। आपका नंबर है 6393-31-64-29। जो जहाँ भी बैठे हैं श्रोता लोग हैं फटाक से कॉल करें। और सबसे पहला कॉल आ चुका है, किस टीम का है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो कॉल करने वाले हमारे लिसनर ही बताएंगे। कॉल अभी तक कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई। यस वी आर ऑन एयर। यस हेलो,
1: शुभ संध्या दीना जी।
0: शुभ संध्या, और आवाज़ पहचानते हुए मुझे मालूम पड़ रहा है कि हमारे साथ अनूप जी हैं। गुड इवनिंग अनूप जी, क्या हाल है, कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया, मस्त।
0: रह से गाना सुना दीजिए अब।
1: रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा,
0: क्या बात है,
1: लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा।
0: क्या बात है, और आपने बहुत अच्छा सा गाना सुनाया और अपनी टीम को सबसे पहले पॉइंट्स दिला दिए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम।
0: तो चलिए अगला लेटर जो है वो मैं फिर खुद दूंगी, मतलब मैं ये वाला नहीं सीन रखूंगी कि गाना जिससे ख़त्म हो उससे आपको गाना है। अगला मैं लेटर देने जा रही हूँ आप लोग को, थ से गाना सुनाइए। गुड इवनिंग महेंद्र, कैसे हैं आप? और हमारे साथ लाइव हैं अनिल जी। शुभ संध्या अनिल जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका भी गोरखपुर से, आप हमें सुन रहे हैं। महेंद्र जी हमें सुन रहे हैं राजस्थान से, नागेश्वर मध्य प्रदेश से, सबका स्वागत है। तो थ से गाना सुनाने के लिए देखते कौन सी टीम आगे आती है, लड़कियां या फिर लड़के। फटाक से डायल करिए अपना नंबर 6393-31-64-29। तो चलिए देखते हैं कितनी बार कौन कॉल कर पाता है और कौन गाना सुना पाता है, और देखते हैं अभी लड़कियों की टीम से कॉल है कि लड़कों की। हेलो
2: मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग एंड यस, लड़कियों की टीम ऐसा नहीं कि चैट रूम में नहीं दिख रही है तो क्या सुन नहीं रही है।
2: मैम किचन में ही हूँ और किचन से ही कॉल कर रही हूँ।
0: क्या बात है, देखिए मतलब लड़कों को क्या है, मतलब ऐसे चैट रूम में मैसेज कर दिया तो सोच रहे हैं कि
2: आज भगवान की छठी है ना मैम, तो फिर काम ज्यादा है।
0: हाँ ये बात तो सही है, मतलब मैं लेकिन छठी वाला जो काम था वो सुबह ही कर ली, मतलब जो
2: काजल वाजल लगना है।
0: क्या बात है, तो चलिए काजल तो लगाएंगे हम आपके साथ, लेकिन चलिए थ से गाना सुना दीजिए आज।
2: थ से मैम,
0: थ से
2: थोड़ी जो पीली चोरी तो नहीं की है, और रानो को सीला जरा तो संभालो, हमें गिर न पड़े, थोड़ी जो पीली है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा सा गाना आपने सुनाया, एकदम मूड चेंज करने वाला, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। तो भाई आशु जी आ गई लड़कियों की टीम से, ऐसा नहीं है कि लड़कियां हमारी सुन नहीं रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप लोग कभी भी हमारी लड़कियों की टीम को जज मत करिएगा, ये करछी चलाते चलाते ना अपने कान और सारी इंद्रियां एक्टिव रखती हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़कियों की टीम के भी 30 पॉइंट्स हो चुके हैं, एंड अब देखते हैं कौन सी टीम आगे आती है। मेरे को तो अल्फ़ाबेट बोलने के पहले ही कॉल आ गया, तो चलिए आवाज़ सुनते फिर ही बढ़ देते हैं लेटर। हेलो
1: जी, बीना जी।
0: जी अगला लेटर है चा,
1: चम्मच वाला,
0: और भी कोई होता है।
1: चाहा तो बहुत ना चाहे तुम्हें, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया, दिल का सनम ये कुसूर नहीं, चाह तो बहुत।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा सा गाना आज आपने सुना दिया, मजा आ गया सुन के, अच्छा हुआ चढ़ दिया मैंने। थैंक यू सो मच अनूप जी, बहुत बढ़िया गाना था। तो ये देखिए, ये होता है अंताक्षरी का मज़ा, मतलब नए नए गाने सुनने को आप लोग को साथ साथ मिल जाते हैं। तो फिलहाल चलिए देखते हैं अगला कौन लिसनर हमारे साथ आ रहा है यहाँ पे, अपने सुर में सुर मिलाने कॉल करने देते हैं, क्योंकि अब कॉल करें तभी एक लेटर देते, पहले दे देंगे ना सोच लेंगे लोग। तो इंतज़ार का फल मीठा, देखते हैं कौन किसका मतलब आज गेम लगाएगा, मतलब कौन किसको हराएगा। तो फिलहाल के लिए इंतज़ार का जो फल है वो मीठा, अभी इंतज़ार है कॉल का, लेकिन कॉल आया नहीं, आ गया।
2: हेलो,
0: चलिए वापस से हमारे साथ, अभी तो वन वन मैन आर्मी चल रही है दोनों की टीम, तो आजू जी वापस से हमारे साथ हैं, तो धा से गाना सुना दीजिए।
2: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, हमको किसी का गम में डर नहीं, कोई गैर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले।
0: वाह क्या बात है, मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आशु जी और मतलब सारी टीम मेंबर्स को मैं बोलूँगी, आप लोग गाने बड़े अच्छे अच्छे से ढूंढ के लाते हैं, और इसीलिए तो सारे दिमागों की जो यहाँ पे खिचड़ी बनती है ना, हर वेजिटेबल उसमें दिखाई देता है, खिचड़ी नहीं तहरी बन जाती है। तो अगला कॉल का इंतज़ार करने से पहले मैं इस गाने का स्टैंजा सुना देती हूँ, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। इस गाने का स्टैंजा बड़ा अच्छा है, कुछ कह ले

0: प्यार, लेकिन हम करेंगे आपसे इजहार क्योंकि करना है आपको कॉल इस बार। देखते हैं कॉल किसका है अभी। और हेलो
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आवाज़ सुनी सुनी लग रही है और मुझे लग रहा है शिल्पी जी की आवाज़ है क्या?
1: जी, खूब पहचाना आपने।
0: बहुत कम फोन करने वालों की अगर मैं आवाज पहचान रही हूँ तो इसका मतलब मैंने खूब ही पहचाना।
1: नहीं, मैं कम फोन नहीं करती मैम, इतना आपका सुपर डुपर प्रोग्राम है कि मिलता ही नहीं है, कट जाता है, मिलता ही नहीं है। मैं हर मंडे को मैं ट्राई करती हूँ, हर बुधवार को ट्राई करती हूँ, बट मिलता ही नहीं है।
0: अरे सॉरी, मतलब मैं क्या बताऊँ, फॉर्चुनेटली।
1: सॉरी नहीं मैम, ये तो अच्छी बात है, अपना फेमस प्रोग्राम है।
0: फॉर्चुनेटली आज मैं आपकी आवाज़ सुन पा रही, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो आज मैं आपको क्या बताऊं, आपने कॉल ही कर दिया है तो मैं खुशी के मारे शब्द लेटर नहीं ढूंढ पा रही हूं। फिलहाल आपके लिए बढ़िया सा कोई लेटर मैं सोचती हूं। त से गाना सुना दीजिए।
1: किसका?
0: त त त त त
1: त से
0: त से तरबूज।
1: तुम्हारी नजर क्यों खफा

0: कुछ भी न था, तुम्हारी नजर खुद सजा हो गई। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, मज़ा आ गया। और मतलब गाना सुन के मज़ा आ गया सबसे ज़्यादा। तो टीम को पॉइंट मिले ना मिले, लेकिन गाना बड़ा अच्छा था। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: ओके ओके,
1: तो भाई ये होता है, मतलब ये एनर्जी होती है कि सबकी आवाज़ सुनने को एक साथ मिल जाती है, और इस हाई एनर्जी के साथ हाई क्वालिटी की आवाज़, आह क्या बात क्या बात। चलिए देखते हैं अगली आवाज़ किसकी सुनने को मिलने वाली है, और आवाज़ सुनते हैं।
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम?
2: अमित कुमार।
1: अमित, कैसे हैं आप आज? बहुत गंभीर होकर बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं सच्ची बताऊँ अमित की तो फिलहाल मैं तारीफ करना चाहूँगी। कोई ऐसा बुधवार अभी तक नहीं गया जब अमित से मेरी बात ना हुई हो। बहुत
2: मुझे
1: ही
2: अंताक्षरी बहुत अच्छी लगती है।
1: अमित, सच में मैं आपकी तारीफ इसलिए करना चाहूंगी ऑडियर कि अमित एक ऐसे लिसनर हैं, चाहे एकदम जीरो कोई मतलब पार्टिसिपेशन हो लड़कों की टीम से, बट अमित की आवाज मुझे हमेशा सुनने को मिलती है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द मतलब मैं कहूंगी वेरी रेगुलर लिसनर। तो आप सुना दीजिए गाना खासे। पुराने गाने बहुत सारे हैं, वैसे नया भी होगा कोई।
2: मैम हम पुराने जमाने के तो है नहीं, लेकिन पुराना अब याद कर रहे हैं, आ जाएगा तो
1: जमाने के तो मैं भी नहीं हूँ पुराने। लेकिन हाँ मतलब इधर भी गाने हैं खास से, काफी गाने हैं। चलिए मैं आपको दूसरा लेटर दे देती हूँ। अब आपने मतलब रेगुलर कॉल किया तो एक छोटा सा तो ऑफर आपको मिलना चाहिए। चलिए यह से गाना सुना दीजिए। यह से
2: याद याद याद बस याद रह जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद याद याद बस याद रह जाती है।
1: क्या बात है, और बिल्कुल आपकी आवाज, ये देखिए याद हमें है और हम भूलते नहीं आपको। थैंक यू सो मच। तो चलिए अगले कॉल की ओर रुख करते हैं, और मज़ा आ रहा है, मतलब सब लोग बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं, पॉइंट्स सबके ऐसे बढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एंड चलिए देखते हैं अब किसकी आवाज़ सुनने को मिलने वाली है कॉल पे। और मैं बताऊँ कि इसके बाद सिर्फ दो लेटर्स मैं दूँगी, दो कॉल मतलब मैं लूँगी लेटर्स के लिए। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वर्ड राउंड शुरू करते हैं, और अभी देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
3: हाँ मैडम जी नमस्ते।
1: मुमताज जी स्वागत है आपकी आवाज़ का।
3: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
1: मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली, कैसे हैं मुमताज जी?
3: बस ऊपर वाले की करम है, आप लोगों की दुआएं हैं।
1: अरे वाह क्या बात है। चलिए क से गाना सुना दीजिए
3: जी। किस अक्षर से?
1: क से। क
3: कितना हसीन चेहरा, जितनी प्यारी आंखें, जितनी प्यारी आंखें, आंखों से चलता पार, नफरत से बनाया होगा, नफरत से तुझे मेरे यार।
1: नफरत से तुझे रब ने बनाया होगा।
3: मैडम जी
1: हाँ हाँ, चलिए सुनाना सुना।
3: थोड़ा दूसरे लाइन का है गाना, मैं खुद बनाया हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है, स्वागत है।
3: तेरी नजर उठे पे मुझे पाप दिखे, जो उठे नजर पे सब कुछ मिटे, तू हंसे तो कलियां मुरझाए, तुझे फूल भी देख के सूख जाए, तेरी गंदी गंदी सूरत ये कितनी है बदसूरत, तेरी इसी अदा से मैं दूर दूर मेरे यार, नफरत से बनाया होगा खुरखत से तुझे मेरे यार। जी मैडम।
1: क्या बात है, ऐसे अगर आप किसी की तारीफ कर देना वो इंसान तो मतलब कभी आपसे बात ना करे। क्या कहने,
3: आप दूसरा अक्षर देंगी तो मैं उससे भी सुना सकता हूँ।
1: लेकिन
3: तो
1: ये तो कोई बात नहीं, आपने गाना तो मतलब ये गाना का से ही शुरू होता है तो इसलिए पॉइंट मैं आपको दूंगी। लेकिन बहुत अच्छा आपने सुनाया, मजा आ गया सुन के। क्या लिरिक्स बनाई आपने, मतलब जस्ट इसकी ऑपोजिट वाली, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया।
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो मुमताज़ जी ने लड़कों की टीम को पॉइंट दिला दिया और इसी के साथ लड़कों की टीम 30 पॉइंट्स आगे हो जाती है, यानी कि पॉइंट्स हो जाते हैं टीम बी के सीधे 120। और चलिए अगला कॉल देखते हैं किसका है। हेलो
4: हेलो नमस्ते मैम, भीम कुमार बोल रहा हूँ, गांव कटैया तेंदुआ भगत कोंडा ही से।
1: अरे वाह क्या बात है भीम जी, आपने मतलब अपनी पूरी जानकारी देते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है 89.6 FM पे आपकी आवाज़ का। तो अंताक्षरी चल रही
4: आज जुड़ा हूँ मैम।
1: क्या बात है, और मतलब मैं कारण तो नहीं पूछूंगी लेकिन मैं ये कहूँगी आप ऐसे जुड़े हैं, जुड़े ही रहिए, और अपनी आवाज़ में अगर कुछ सुनाना है तो मैं आपको लेटर दूँ, अगर आपकी मतलब इच्छा है तो लेटर दूँ मैं आपको गाना गाने के लिए।
4: जी दीजिए। मैं हम गाना वाना नहीं गा पाते हैं।
1: तो अंताक्षरी चल रही है, आपको अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, गाना नहीं गा पाते हैं तो क्या होगा।
4: ठीक है मैम, ठीक है कोई बात नहीं, कॉल कर दिया हूँ तो मैं थोड़ा प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं बस।
1: अरे तो कोई बात नहीं, आपको मतलब कोई गाना तो आपने सुना ही होगा, जैसे बचपन में आपने अंताक्षरी तो खेली ही होगी कभी ना कभी।
4: अरे मैम मगर वो गाना ही का थोड़ी गा नहीं पाते।
1: अरे तो कोई सिंगर थोड़े गा रहा है, सारे के सारे ऐसे ही गा रहे हैं, मतलब अपनी खुशी से अपनी टीम को जिताने
4: काल में गाना चाहिए, अब नहीं गा पाएंगे तो।
1: चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपको आपसे बात करके। तो भीम जी ने अपनी टीम को सपोर्ट भेजा है, तो सपोर्ट के साथ देखते हैं अगला कॉल किसका है, और इसी के साथ ये लास्ट लेटर होगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट राउंड शुरू कर दूंगी। आवाज़ सुनते किसकी है। हेलो
5: हेलो मैम, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, स्वागत है आपका हमारे साथ लाइव है। प्रीति जी जो हमें सुन रही हैं बहराइच से, कैसी हैं।
5: अच्छी हूं।
1: सो प्रीति जी ये बताइए, आपको मैं लेटर दूं।
5: जी जी।
1: या आप भी छठी की तैयारी कर रही हैं।
5: बालाजी गए थे घूमने।
1: ओह क्या
5: जी।
1: आ गई कि नहीं अभी।
5: आ गए।
1: चलिए ठीक है, प्रसाद का इंतजार करेंगे हम। आप मुझे गाना सुना दीजिए ध से। ध ध ध ध
5: ध से। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना, नीचे दिल लगाना है, हद से गुजरे जाना।
1: क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। और देखिए ये दोनों टीमें बराबर आ गई हैं, कोई किसी से कम नहीं है। मैंने सोचा लड़कों की टीम के पॉइंट्स बढ़ जाएंगे लेकिन लड़कियां भी सोच रही हैं कि पॉइंट्स ना कहीं गिरे, हम लगातार ऐसे ही खेलते रहें। तो चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद वापस से आपके कॉल्स कनेक्ट करूंगी, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना रेडियो स्टेशन। अब होगा इसके बाद शब्द राउंड, यानी कि वर्ड राउंड, यानी कि टीम ए यानी कि लड़कियों की टीम वर्ड देगी लड़कों की टीम को, और टीम बी यानी कि लड़कों की टीम देगी वर्ड लड़कों को, जिससे कि हम कम से कम 30 मिनट्स इस राउंड को खेल सके। और इसके बाद 5 मिनट के लिए हम खेलेंगे 1 मिनट राउंड, जिसमें एक एक मिनट दोनों टीमों को दिया जाएगा, कौन सी टीम का मेंबर कौन से कितने गाने गाएगा ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि जिसका पहले कॉल आएगा वही सुनाएगा। तो चलिए एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक, और फिर से वापस हम करते हैं शुरुआत आप लोग के साथ इस प्यारी सी शाम की। वैसे शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन गाना सुनना अभी बाकी है। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: तो लड़कों की टीम के लिए वर्ड आ चुका है सरताज, और देखते हैं किसका कॉल आता है और कौन गाना सुनाता है। तो सबसे पहला कॉल आ गया है, चलिए आवाज सुनते हैं किसकी है। हेलो।
1: हाँ मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते मुमताज जी, सर
1: बात कर रहा हूँ।
0: सरताज से गाना सुनाइए।
1: से
0: सरताज, अक्षर से नहीं सुनाना है, शब्द से सुनाना है। शब्द से सुनाना है जी। सरताज,
1: सरताज मैडम जी, आप किसी दूसरे को अक्षर दे दीजिए, माइंड में नहीं आ रहा है इस वक्त।
0: चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं अब कौन गाना सुनाता है सरताज से। हेलो, कॉल एक और आ रहा था वो डिस्कनेक्ट हो गया, सुनते हैं अगली आवाज़ किसकी है। हेलो
2: हेलो
0: हेलो,
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, फिलहाल लड़कियों की बारी नहीं है, लड़कों की बारी है, तो मैं चाहूँगी आप नेक्स्ट राउंड में कॉल करें, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं सरताज से सुनाने के लिए, लड़के अगर सुन रहे हैं तो फटाफट से कॉल करिए, और मतलब आप तुरंत तुरंत तुरंत मतलब रेडी हो जाइए, आप कौन सा गाना सुनाएंगे। सरताज से शब्द तो भाई बहुत खतरनाक टाइप का लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और देखते हैं कौन है जो सुना सकता है गाना फटाफट से। सो सरताज से गाने वाले लोगों की अभी कमी दिख रही है। सरताज, सर पे हो जिसके ताज, वो है सरताज। कोई बात नहीं, चलता रहेगा ऐसे ही गानों का सिलसिला, लेकिन चलिए इंतज़ार का फल मीठा होता है, और एक बड़ा बढ़िया सा गाना हम लोग सुन भी रहे थे, लेकिन कॉल करके अगले कॉलर को मौका देते हैं, देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो हेलो हेलो, आप लोग कॉल करते करते कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे तो टाइम बीत जाएगा। हेलो, अभी कॉल नहीं आ रहा। हेलो
3: जी, बिना जी।
0: तो आवाज आई है ना, अनूप जी की आवाज़ आई है, अनूप जी के घर से काफ़ी आवाज़ भी आ रही है अनूप जी के अलावा भी। हेलो
3: जी, बिना जी बताएं।
0: अनूप जी, आपको सरताज से गाना सुनाना है।
3: किस पे?
0: सरताज,
3: सरताज
0: जी, सर पे हो ताज जिसके, सरताज।
3: गाना तो एक है और उसका है क्या नाम है, खुदा गवाह मूवी का।
0: बिल्कुल सुना दीजिए, अब एक लाइन भी सुनाएंगे तो पॉइंट आपको मिलेगा।

0: बस सुना दीजिए।
1: तू मुझे कबूल गाने में शायद ये वर्ड है जहाँ तक मुझे याद है,
0: लेकिन वो लाइन सुना दीजिए जिस लाइन में है।
1: नहीं याद है, एग्जैक्ट नहीं याद है।
0: ओह माय गॉड।
1: एक्चुअली मैंने बताऊं, मैंने वर्ड भी नहीं सुना था। मैं अभी एक लोग का फोन आ गया तो मैं जस्ट अभी रेडियो ऑन किया, तो मैंने फिर देखा कोई कॉल नहीं किया, मैंने कहा मैं ही फोन करके पूछूंगी कौन सा वर्ड है ना। मैंने इनबॉक्स देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने केवल फोन कर दिया।
0: ओहो, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कौन और कॉल कर रहा है। हेलो हेलो।
2: हाँ नमस्ते जी। नमन
0: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं सुरेश जी? स्वागत है आपकी आवाज का।
2: सुरेश कुमार
0: जी, आपको गाना सुनाना है सरताज से।
2: ये महेंद्र कपूर और लता की आवाज में है
0: जी। स्वागत।
2: मेरे सरताज, मेरे दिलदार, तुम्हें देख लिया, हाँ तुम्हें देख लिया। हेलो,
0: क्या बात है।
2: ये महेंद्र कपूर और लता की आवाज में है, ये दो लाइन स्टार्टिंग यही है।
0: अपनी टीम को बचाने के लिए शुक्रिया।
2: गूगल से सुन सकते हैं
0: आपका। अपनी टीम को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लगता है। चलिए सुना दीजिए। हेलो हेलो हेलो।
2: हाँ
0: जी जी, आपका कॉल होल्ड हो गया था।
2: मेरे सरताज, मेरे दिलदार, तुम्हें देख लिया, हाँ तुम्हें देख लिया।
0: क्या बात,
2: महेंद्र कपूर लता की आवाज में।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरेश जी ने आके अपनी टीम को ऐसे बचाया है जैसे कोई मसीहा। और अब मैं देखना चाहती हूँ लड़कों की तरफ से शब्द कौन सा आएगा, और लड़कों की तरफ से धर्मेंद्र जी ने शब्द सबसे पहले दिया है गर्दिश, और देखते हैं गर्दिश से कौन गाना सुनाता है। हेलो।
3: हाँ जी।
0: हेलो, हाँ जी, आपका शुभ नाम?
3: मोहम्मद रफी मंत्री बोल रहा हूँ, पालदाना था इंदौर से।
0: रफी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि अभी लड़कियों की बारी है, तो मैं चाहूँगी कि आप नेक्स्ट टाइम कॉल करें। तो देखते हैं कौन कॉल करता है लड़कियों की टीम से। गाना है गर्दिश से, आपको गर्दिश वर्ड है, इसी से आपको गाना गाना है। हेलो।
4: हेलो
0: जी, आपका नाम?
4: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, बालदाना का इंदौर से।
0: अरे वाह, क्या बात है हसीना जी, स्वागत है सबसे पहले आपकी आवाज़ का। पहली बार आपकी आवाज़ में सुन रही हूँ, तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आपको गाना सुनाना है गर्दिश शब्द से, एक शब्द है गर्दिश,
4: ये गर्दिश।
0: हाँ, लड़कों की टीम ने आपकी टीम को दिया है, तो सुना दीजिए
4: गर्दिश।

0: क्या बात है हसीना जी, आपने आके पहली बॉल में सिक्सर लगा दिया। मुझे तो लगा लड़कियों की टीम को गाना ही नहीं आता होगा, लेकिन आपने आके मतलब नहीं चौका भी नहीं, सीधे सिक्सर, क्या बात है।
1: और ना ही कुछ सोचा भी नहीं था मैडम कि क्या हो रहा है, मैंने गुंडक सुना ही नहीं था अभी तो।
0: क्या बात है, जो दिल से सुनते हैं वो उनको लगातार सुनने की जरूरत नहीं, वो जब भी सुनते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू।
1: और अचानक एक गाना भी याद आ गया।
0: क्या बात है हसीना जी, आपने सुरीला भी गाया, बहुत मजा आया, क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये होती है टीम पार, मतलब लड़कियां एक दूसरे का सपोर्ट काम करते करते भी करती रहती हैं, और इसीलिए तो सबसे खास है लड़कियां हमारे लिए। अब लड़कों की बारी है, क्या कहते हैं, आपको गाना सुनाना है हलचल से। काफ़ी आसान सा शब्द दे दिया प्रीति जी ने, तो हलचल से गाना सुनाएंगे हमारे लड़के, देखते हैं कौन सा गाना सुनाते हैं। हलचल। बाकी लड़कियों की टीम कहाँ चली गई है भाई, सब लोग वर्ड दो, मैं एक ही लड़की का बार बार वर्ड नहीं लूँगी। फिलहाल मैं प्रीति जी का ले रही हूँ, क्योंकि बाकी लड़कियाँ शब्द नहीं दे रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी सबको मौका मिले, ऐसा ना हो कि एक ही मतलब टीम का मेंबर बार बार शब्द दे। फिलहाल के लिए आपका कंसीडर करते हैं, लड़कों को गाना है हलचल शब्द से गाना, फटाक से आप लोग अपना गूगल वाला दिमाग लगाइए और फटाफट गाना सुनाइए। तो कौन सुना रहा है भाई, कौन सुना रहा है। चलिए बारिश हो रही है हल्की फुल्की यहाँ शहर में, तो मैं बारिश वाला एक गाना सुना देती हूँ, तब तक आप लोग सोचिए हलचल से कौन सा गाना सुनाना है।

0: गाना हम लोग बाद में सुनेंगे, और अभी हमारे कॉलर का कॉल आ चुका है तो उनकी आवाज़ सुनते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
1: नमस्कार मैम, शुभ संध्या, मैं जुगल किशोर वर्मा एमपी से।
0: अरे कैसे आप, मतलब रास्ता भूल गए आज या फिर ईद का चांद निकल आया, क्या कहूँ मैं
1: जो आप समझ लो मैम, थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं लगा पाया था इतने दिन से।
0: कोई बात नहीं, हलचल शब्द आपकी टीम को मिला है तो हलचल से गाना सुनाइए।
1: धीरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, दिल में हलचल से मच जाएगी पावरी हो। धीरे हुए पानी में,
0: क्या बात है, आज तो सब मतलब दिल से गा रहे हैं और दिल से अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मजा आ गया। थैंक यू सो मच जुगल जी। चलिए अब बारी है लड़कों की टीम की, देखते हैं लड़कों की टीम लड़कियों को कौन सा शब्द दे रही है। फरमान, लड़कियों को शब्द मिल गया फरमान। फरमान सुना दिया जाए भाई, मैं तो सोचली गाना सुनने, मुझे पता है ये शब्द खतरनाक है, इसमें टाइम लगेगा, तब तक के लिए चलिए बारिश वाला गाना सुन लेते हैं। अगर किसी लड़की को फरमान से गाना आता है तो जल्दी से बिना देरी किए मैं ये फरमान जारी कर रही हूँ कि आप कॉल कर दें। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, मुझे बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम।

लग रहा है लड़कियों की टीम को फरमान से गाना नहीं आता है, तो चलिए अब मैं लड़कों की टीम को शब्द देना चाहूँगी, कल्पना। कल्पना से आप लोग गाना सुनाइए और कल्पना करके बताइए कि गाना आता भी है या नहीं। अगर आपको कल्पना से गाना आता है तो बिना कल्पना किए जल्दी से गाना सुना दीजिए।

सो फरमान से गाना ना आना एक बड़ी हार हो सकती है लड़कियों की टीम की। एनीवे कोई बात नहीं, आप चाहें तो आप सुना सकते हैं। लड़कियों की टीम से मैं कहूँगी, कल लड़कों की टीम से कहूँगी, कल्पना से गाना सुनाइए आप।

0: चलिए भाई, गाना सुनाने के लिए कोई तो आ चुका है लड़कों की थीम से। हेलो हेलो अनूप जी,
1: जी बीना जी, मैम
0: आपने
1: एक गाना है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है ये, और
0: कल्पना
1: भी बहुत पुरानी है, वो तो मुझे भी नहीं पता कौन था, जिसमें मुझे चार महीने याद है।
0: कल्पना से
1: जी
0: चलिए स्वागत है।
1: नव कल्पना नव रूप से रचनार की जगुनार की सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की। मैम यही चार आगे।
0: क्या बात है, फिलहाल ये चार लाइन काफी हैं आपको पॉइंट्स दिलाने के लिए, क्या बात है। तो भाई अनूप जी ने गाना सुना दिया और अपनी टीम को पॉइंट दिला दिया, और अब बारी है नेक्स्ट और आखिरी राउंड की, जो डिसाइड करेगी किसकी टीम जीतेगी और किसकी टीम हारेगी। तो 1 मिनट राउंड के लिए आप लोग अगर तैयार हैं तो जो भी कॉल पहले आता है लड़कियों का या लड़कों का, उनको 1 मिनट दिया जाएगा। 1 मिनट में जो टीम सबसे ज़्यादा गाने गाएगी उसकी टीम को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे। पर आज एक कंडीशन लागू है 1 मिनट राउंड के लिए। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार जो बीना ने फिर फंसा दिया। देखिए आज है अक्षय कुमार का बर्थडे, तो आपको 1 मिनट में गाने तो गाने हैं मैक्सिमम, लेकिन अक्षय कुमार के गाने हैं, उसकी फिल्म के गाने हैं। तो ऐसा तो बहुत सारी फिल्में हैं अक्षय कुमार की, और मतलब हम लोग की तो पसंद वाली फिल्में हैं। तो अक्षय कुमार की फिल्म के जितने मैक्सिमम गाने आप गा देंगे आपको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो टाइम ले सकते हैं, मैं तब तक के लिए गाना सुना देती हूँ रब्बा रब्बा हीरोपंती से, और तब तक के लिए आप सोच के आराम से मैक्सिमम गाने गाने वाले लिसनर कॉल कर दें। 1 मिनट मिलेगा आपको और 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँगी मैं आपके गीत आपके नाम से, और फिर देखते हैं कौन सुनाता है गाना आप लोग के साथ। गुड इवनिंग रवि, कैसे हैं आप? और चैट रूम में लिखने से अच्छा था कि आप कॉल कर देते, फटाक से आपकी टीम को पॉइंट मिल जाता। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, इसके लिए शुक्रिया। और चलिए सुनते हैं ये गाना आपके साथ, क्योंकि किसी की जाती नहीं, किसी को आती नहीं और मेरी जाती नहीं, क्या हीरोपंती।

0: चलिए देखते हैं अब कौन कॉल कर चुका है सबसे पहले और किसकी टीम बिल्कुल तैयार है। हेलो हेलो, ये क्या भाई, ये कौन सा मतलब सिस्टम है, आप लोग की आवाज़ आती है आवाज़ चली जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी टीम आज दम ले के आती है और आज अपनी टीम को जिताने के लिए इतना बड़ा जो कहते हैं ना कि चैलेंज है वो ले लेती है। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नमस्कार। हेलो, सबलू जी थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। जी सबलू जी, मैं सुन पा रही हूँ लेकिन आवाज़ कट कट के आपकी आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाए।
1: नेटवर्क प्रॉब्लम आज लग रहा है।
0: हाँ चलिए, अभी थोड़ी सी आवाज़ क्लियर हुई है। एक मिनट राउंड चल रहा है और आपने एक मिनट राउंड के लिए कॉल किया है। अक्षय कुमार के सिर्फ गाने गाने हैं, आप कहें तो मैं आपका समय शुरू कर दूं।
1: जी अक्षय कुमार जी का गाना है ना,
0: सिर्फ अक्षय कुमार के गाने गाने हैं और आपकी टीम से आपको मौका मिला है तो आप ही गाएंगे अकेले। तो ये बताइए कि आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, नेटवर्क में रहेंगे तो मुझे गाने गिनने में आसानी होगी। हेलो
1: जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: जी जी। हेलो हेलो सबलू जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप मैं चाहूँगी दोबारा कॉल करें। तो सबलू जी की आवाज़ नहीं आ रही और सबलू जी ने कॉल करके मतलब अपना मतलब जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया है और देखते हैं अब किसका कॉल आता है और कौन अपनी टीम को जिताने के लिए जो भरसक प्रयास है वो करने वाला है। तो चलिए देखते हैं, सबलू जी दोबारा कॉल करते हैं कि कोई और कॉल कर देता है। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, सबलू जी, सबलू जी का मुझे लग रहा है कॉल है या किसी और लिसनर का कॉल है, फ़िलहाल आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, मतलब एंड आते आते जो होना होता वो ऐसे ही हो जाता है। फ़िलहाल चलिए देखते हैं कौन कॉल कर रहा है। थोड़ा सा आप लोग नेटवर्क में रहा करिए जब भी आप ऐसे मतलब टीम को जिताने वाला मामला हो, क्योंकि उस समय आपके मतलब टीम को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कौन फिर से कॉल कर रहा है। हेलो हेलो
2: जी, बीना जी, अनूप मिश्रा बोल रहा हूँ।
0: जी जी अनूप जी, वापस से आपका स्वागत है। तो वन मिनट राउंड के लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल
2: मैम, एक मिनट बस। जी
0: आपका टाइम शुरू होता है अब, सिर्फ अक्षय कुमार के गाने आपको गाने हैं।
2: जी, एक बेवफा है मेरा यार दिलदार, एक ऊंचा लंबा कद वादा रहा सनम, तू चीज बड़ी है तेरी मेरी कहानी, सुबह होने ना दे टिप टिप बरसा, सुबह से लेकर शाम तक ओ मंगलम मंगलम, पैसा पैसा पैसा क्यों करती है, मेक सम नॉइस फॉर देसी बॉयज, मौसम की तरह मुझको याद सताए तेरी, मुझसे शादी करोगी, मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली, हमको दीवाना कर गए, तेरा प्यार प्यार प्यार हुक्का बार चुरा के दिल मेरा, फलक देखूं दिल ने ये कहा है, दिल से दिल डूबा दिल डांस मारे, चिंता ता चिता चिता बस एक किंग।
0: स्टॉप स्टॉप स्टॉप स्टॉप स्टॉप। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 गाने गाए। ओहो क्या बात है, अक्षय कुमार का बर्थडे इतना बढ़िया सेलिब्रेट होगा मुझे नहीं पता था, क्या बात है। मतलब मैंने उम्मीद की थी कोई गाएगा तो 10 गा देगा, 15 गा देगा, 26 गाने, ओहो क्या कह रहे हैं।
2: बहुत सारे छूट गए अभी तो, बहुत सारे।
0: और मैंने इसीलिए ये टारगेट दिया क्योंकि अक्षय ने इतनी फिल्में की और मतलब अक्सर मतलब हर दूसरे इंसान का फेवरेट एक्टर होता है अक्षय कुमार, तो इसीलिए मैंने कहा कि उसका बर्थडे है तो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, मजा आ गया। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, लड़कों की टीम ने कमाए हैं 260 पॉइंट, मायने रखते हैं, और लड़कियों को जीतने के लिए कमाने हैं कितने पॉइंट, ये तो लड़कियों की टीम ही बताएगी। फिलहाल लड़कियों की टीम 170 पे पहले से बैठी है और लड़के 220 पे हैं। 220 में 260 जुड़ जाएं तो भाई बहुत तगड़े पॉइंट्स हो जाते हैं। 400 कितने हो जाएंगे, 80 ना। हाँ मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है। हाँ हाँ चलिए, तो चलिए भाई देखते हैं क्या होता है लड़कियों की टीम का। लड़कियां थोड़ा सा हिम्मत बंधाइए और कॉल कर दीजिए और अपनी टीम को जिताने का प्रयास बिल्कुल करिए। एक मिनट राउंड में तो मुझे आपका कॉल चाहिए ही चाहिए और मैं चाहूँगी कि आप लोग फटाफट से अपनी आवाज़ में कुछ सुनाएं। आपको जीतने के लिए काफ़ी पॉइंट्स की ज़रूरत है, यानी कि 260 प्लस 50 कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, अराउंड आपको 320 पॉइंट्स की ज़रूरत है जीतने के लिए। तो देखते हैं कौन कॉल करता है लड़कियों की टीम से। मैंने 5 मिनट लेने के लिए बोला है और अभी ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो अक्षय कुमार के गाने बहुत सारे सुनते होंगे, तो देखते हैं। मज़ा आ रहा है वैसे तो मुझे। आप लोग भी सोचिए कि मतलब क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है। पूछो न मुझसे कहानी मेरी, सोच सोच के धड़कने बढ़ रही मेरी। क्या लड़कियों की टीम गाना गाएगी कि नहीं? प्लीज़ गर्ल्स, प्लीज़ प्लीज़ बेइज्जती मत कराओ यार, कॉल कर दो। कोई दो चार बात 10 गाने ही सुना दो, लेकिन प्लीज़ जीतने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं जीतना है लेकिन तब भी गाना तो सुना दो यार, 5 ही गाने सुना दो, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन का तो रहे। यही ना हो कि मतलब बाद में लड़कों की टीम गएगी कि लड़कियाँ तो यार बिना गाए ही चली गई, तो ये नहीं होना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या यार मतलब तुम लोग आज मुझे मतलब मेरी नाक कट जाएगी क्या? गुड इवनिंग उषा, गुड इवनिंग राजेश, गुड इवनिंग सोनिया, गुड इवनिंग रवि, गुड इवनिंग महेंद्र जी अगेन, एंड गुड इवनिंग राजू सीतापुर से हैं, निधि सीतापुर से हैं, सबका स्वागत है भाई। There is no one. 2 मिनट और बचे हैं, मैं आपके लिए और वेट नहीं करूँगी। अगर लड़कियों की टीम का कॉल आता है तो फिर आपको मौका मिल जाएगा। 1 मिनट काफ़ी होता है जीतने के लिए। मुझे पता है आप लोग 30 से 35 गाने गा सकती हैं और जीत भी सकती हैं, लेकिन अगर आप गाएं तो नहीं, तो लड़कों की टीम तो जीती है ही क्यों। बॉयज मेक सम नॉइज फॉर देसी बॉयज। अरे यार चलिए देखते कौन गाएगा।
3: हेलो मैम।
0: हेलो, अरे भाई आपका कॉल आया, थोड़ी तसल्ली हुई।
3: मैम वैसे मैं डिक्लेयर कर दूं क्योंकि मैं पीछे चल रही हूँ उस पॉइंट में, इसलिए हमें हार जाना है, लेकिन फिर भी हम गा रहे हैं क्योंकि आपने कहा अक्षय कुमार का गाना गाना है, तो मैंने कहा गा देते हैं। वैसे मैं अपनी हार स्वीकार कर रही हूँ मैम।
0: चलिए स्वागत है, टाइम शुरू करूँ? आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: चिड़ा के दिल मेरा भोली वाली लड़की, हमें सीधे सादे एक लड़की चाहिए खास का, सौदा खरा खरा तेरे संग यारा खुश, गोरे गोरे मुखड़े ते काला काला, जब हम लगी लगी है ये दिल की, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा, हम दो पेनी छत के ऊपर, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त टिप टिप बरसात, सुबह से लेकर शाम तक काश कहीं ऐसा जाम वो है जो आंखों से छलकता है छलकता है, हम सीधे सादे अच्छे अच्छे, हमको दीवाना दीवाना कर गए, और मैं भूल गए और भी तो, अरे बहुत याद है, बहुत प्यारे बहुत सारे गाने, अरे
0: बस अब आपका टाइम खत्म हो गया। आपने गाए 15, 16, 17, 18, 19 गाने गाए, कोई बात नहीं, नॉट बैड। आपने मतलब लास्ट मोमेंट पे आके सुना आपने और आपने तुरंत रिस्पॉन्स किया, और मुझे लगता है कि आपने कहीं से कोई हेल्प नहीं दिया, आपने सारे गाने खुद गाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बहुत
3: हाथों पे उंगलियों पे गिनके गाए
0: हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच, और मजा आ गया। थैंक यू सो मच गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई लड़कियों की टीम ने आज खेला तो, लेकिन थोड़ा सा और फास्ट खेलती तो और जीत जाती, कोई बात नहीं। 190 पॉइंट्स भी कोई मतलब ना, 19 गाने गाना एक एक्टर के बता दिए जाएं आपको तो मतलब इतना आसानी कि एक मिनट में आप सोच भी लें और गा भी लें, ये बहुत मतलब टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं, या बहुत मतलब जो रेगुलर कॉल करते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं लड़कियों की टीम की पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, इसी के साथ लड़कों की टीम को भी दूंगी। भाई लड़कों की टीम ने इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोई कहीं से मतलब अपनी टीम को हारने ही नहीं देना चाहता है, तो ये एक टीम पावर ही होती है जो आपको जीतने का हौसला दिलाती है। एंड यस, दिस टाइम लड़कियों की टीम के 360 पॉइंट्स ज़रूर हैं, लेकिन लड़कियों की टीम ने भी स्टार्टिंग से खेला, मज़ा आया, सब इंगेज भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, पर सच में देसी बॉयज़ ने तो आज कमाल कर दिया। तो मेक सम नॉइज फॉर देसी बॉयज़, एंड यस आज के विनर हैं हमारे, यस यस यस, देसी बॉयज़। तो चलिए आज की सेलिब्रेशन लड़कों के नाम, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई बॉयज टीम। आज आप लोगों ने मेरा दिल एकदम खुश खुश खुश कर दिया, वैसे लड़कियों की टीम ने भी किया, पर सच्ची बताऊँ आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा खेला। एंड मेरी तरफ से मतलब मैं कितनी भी खुशियाँ, कितनी भी आप लोग को शुभकामनाएँ तो वो कम होंगी, पर सच्ची आप लोग मज़ेदार खेलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं, एक से एक इंसान है जो एक एक गानों को चुन के ला रहा है और सुना रहा है, कोई गाने नए बना के सुना रहा है, मुमताज़ जी ने कैसे बढ़िया सा गाना बना के सुना दिया, और उधर हमारे क्या कहते हैं सुरेश जी ने एक बढ़िया सा पुराना सा गाना निकाल के अपनी टीम को हारते हारते मतलब 50 पॉइंट्स दिला दिए। तो ये होती है टीम पावर, और मज़ा आ गया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यस, आज की पार्टी लड़कों के लिए है, और प्लीज़ ऐसी एनर्जी अगले वीक बरकरार रखिएगा, और उम्मीद करूँगी लड़कियों की टीम अगली बार जीत के दिखाएगी। तो जीत का नाम है कंटिन्यूटी। तो अगले वीक मिलेंगे इसी कंटिन्यू एनर्जी के साथ, कल तक के लिए इंतज़ार करिए क्योंकि कल होगी भोजपुरिया शाम, और भोजपुरिया शाम में होता है बड़ा धमाल क्योंकि हम करते हैं भोजपुरिया और अवधी अंदाज में बात। तो भाई आपको कल के लिए आज ही इनवाइट कर रही हूँ, कल भाई सब लोग टाइम से आ जाना 6 बजे ठीक अपना फेवरेट शो सुनने के लिए, गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला। तब तक के लिए आप सुनिए गीत आपके नाम से आरजे सिंपल के साथ, हंसते रहो मुस्कुराते रहो बजाते रहो अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मैं बगावत हूँ मुझे खौफ सिखाओगे क्या, मैं बगावत हूँ मुझे खौफ सिखाओगे क्या, जो झुकी ही नहीं उसको झुकाओगे क्या, मेरे वसूल मेरी जात का हिस्सा है जनाब, मेरे वसूल मेरी जात का हिस्सा है जनाब, दो घड़ी के लिए मुझको खरीदोगे क्या। तुम्हें आदत है जमाने को दबाकर जीने की, मुझसे टकराकर मगर चैन से सो पाओगे क्या, मैं बगावत हूँ मुझे कैद में रख पाओगे क्या, मेरे लहजे को कैद करने आए हो तुम मगर, मेरे लहजे को ये बताओ कैद कर पाओगे क्या। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपके। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, आवाज विकास गोंडा से, रवि नवीन राजपूत एमपी से, निधि सीतापुर से, राजू सीतापुर से, महेंद्र राजस्थान से, और इनका कहना है कि नमस्कार, शुभ संध्या आरजे सिंपल मैम जी। आज बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार जी का जन्मदिन है। ओ हैप्पी डे, हैप्पी बर्थडे। इस खास मौके पर मेरी तरफ से उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं, ये कहना है राजस्थान से महेंद्र का। और महेंद्र के साथ मेरा भी कहना है कि अक्षय जी को ढेरों सारी शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से और ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की भी तरफ से। आज की, महेंद्र का कहना है कि आज की मेरी खास फरमाइश है फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी का गीत तू कौन है तेरा नाम क्या। मैम जी, अगर मेरी फरमाइश आपकी प्लेलिस्ट में जगह बना ले तो आज की शाम और भी शानदार हो जाएगी। सो नाउ लेट्स गो टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द अक्षय कुमार की। ओ माय गॉड, सो स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम एवरीवन इन योर शो। एंजॉय करते हैं पहली फरमाइश जग्गू दादा की। जग्गू दादा को सुनना है गाना दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। इतना गंदा नहीं करना चाहिए था, मुस्कुरा के नहीं जाना।

गलत हुआ ना कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए? ऐसा नहीं करना था जग्गू दादा। आपके दिल के किसने टुकड़े किए हैं मुझे बताना, उसके दिल के टुकड़े हम सब मिलके करेंगे, है ना? सो जग्गू दादा की ये फरमाइश थी। एमपी से बढ़ते हमारे आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ, अगले जज्बात की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से। उनको सुनना है गाना कुमार सानू और कविता जी की आवाज में, हाउ रोमांटिक वाला गाना, मेरी सांस सांस मेरे यार के लिए है। सो एंजॉय करेंगे ये हाउ रोमांटिक नगमा। लेकिन उसके पहले सोनिया तिवारी का कहना है कि जब अपनी ही सांसें पराई लगने लगे और खुदा भी दुआओं से मुंह मोड़ने लगे, तब समझ आया कि तबीयत सिर्फ शरीर की नहीं, जिंदगी की रंगत भी वक्त के साथ ढलने लगी है। रूठ गया है खुदा भी मुझसे जब से मेरी तबीयत खराब हुई है। हम तो समझे थे वो मरहम बनेगा, पर यहाँ तो हर दुआ बेअसर हुई है। आखिर क्या हुआ है ऐसा? आप चाहें तो मुझे 6393316429 पर कॉल कर भी बता सकती हैं सोनिया तिवारी जी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपने एकदम दिल में दबा के रखी है। मुझसे कह सकती हैं, मैं किसी से नहीं कहूंगी, पक्का प्रॉमिस। सो एंजॉय कर लेते हैं धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सविता शास्त्री जी आपका स्वागत है, उषा कश्यप गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से आपका भी स्वागत है, अनूप मिश्रा जी गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। आवाज विकास गोंडा से रवि, स्टे ट्यून्ड। आशा मिश्रा जी लखनऊ से, स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों, ये फरमाइश हमारे पास इसलिए आई हुई थी धर्मेश त्रिपाठी की तरफ से, जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले अनूप मिश्रा जी का गोंडा से कुछ कहना है। उनका कहना है कि शब्द पहचान बने मेरी तो बेहतर है, शब्द पहचान बने मेरी तो बेहतर है, चेहरे का क्या है, वो मेरे ही साथ चला जाएगा एक दिन। बहुत खूब। और मैं भी कुछ कहना चाहूंगी अनूप मिश्रा जी आपसे कि जीत इतनी आसान दे रहा हूँ, जीत इतनी आसान दे रहा हूँ, भला और क्या दूं जान दे रहा हूँ। तुम भले ही मुकर जाओ बातों से, मगर मैं तो अपनी जुबान दे रहा हूँ। तुम तीर मार लो मुझे बेझिझक, तुम तीर मार लो मुझे बेझिझक, मैं ही खींच कर कमान दे रहा हूँ। कैसे पहुँचोगे तुम मुझ तक, कैसे पहुँचोगे तुम मुझ तक, लो अपने कदमों के निशान दे रहा हूँ। कैसी लगी आप सबको ये लाइंस, जरूर चैट बॉक्स में बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश है सोनिया तिवारी की, उनको सुनना है गाना मौसम है आशियाना आशिकाना। सो एंजॉय करते हैं ये पाकीज़ा का बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी बहुत ही खूबसूरत सी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आशिका ना हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारे आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले सोनिया तिवारी का कुछ कहना भी है। इनका कहना है कि मौसम है आशिकाना और सुरों ने दिल को छू लिया, आपकी मधुर आवाज ने हर पल को हसीन बना दिया। ऐसी खूबसूरत फरमाइश और प्यारी प्रस्तुति के लिए आरजे सिंपल जी दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी कुछ, मैं भी कहना चाहूंगी।

उसे मिटाने को हम भी तैयार बैठे हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश दोस्तों। अगली फरमाइश है आवास विकास गोंडा से रवि की, उनको सुनना है गाना तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि महफिल जवां है हंसी है, किसके लिए है ये गाना रवि मुझे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग।

ये फरमाइश थी आवाज विकास गोंडा से रवि की। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी कि वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। दीपक जी हथियागढ़ गोंडा से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल, और इसी के साथ में पप्पू हार्डवेयर गोंडा से आपका भी स्वागत है। कहना है कि तजुर्बे के मुताबिक खुद को ढाल लेता हूँ, कोई प्यार जताए तो जेब संभाल लेता हूँ। वक्त था सांप की परछाई डरा देती थी, अब एकाध मैं आस्तीन में पाल लेता हूँ। मुझे फांसने की कहीं साजिश तो नहीं, हर मुस्कान ठीक से जांच पड़ताल लेता हूँ। बहुत जला चुका उंगलियां मैं पराई आग में,

अब कोई झगड़े में बुलाए तो मैं टाल देता हूँ। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है नवीन राजपूत जी की, एमपी से उनको सुनना है। एमपी से ग्रीट ऑपरेटर नवीन राजपूत को सुनना है गाना चल छैया छैया। सपना अवस्थी मलाइका अरोरा का ये गाना, सुखविंदर सिंह शाहरुख खान का ये नगमा, सदा बहार नगमा एंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ नवीन राजपूत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

में तो नजर आ जाए, कहीं हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है जन्म दिवस हमारे अक्षय कुमार का, हमारे अक्की का। बढ़ेंगे उन्हीं के फरमाइशी गीत की तरफ, और फरमाइश हमारे पास में आई हुई है निधि की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये हाउ रोमांटिक नगमा, हम सबके दिल में बसने वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ निधि की फरमाइश पर। इसी के साथ में महेंद्र का कहना है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं लगता, तेरे बिना ये दिल कहीं नहीं लगता, तेरी मौजूदगी से सजती है हर खुशी, तू साथ हो तो हर पल हसीन लगता है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

अरे अब तो भूलना पड़ेगा ना, जो गई जो रात गई वो बात गई ना मैडम जी, अलका याग्निक जी। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा दोस्तों, अक्षय कुमार का नगमा, अक्की का नगमा, सिर्फ और सिर्फ किसकी फरमाइश पर, यही सोच रहे हैं ना, तो निधि की फरमाइश पर जो कि है सीतापुर से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से, और उनको सुनना है गाना खिलाड़ियों का खिलाड़ी पिक्चर का गाना तू कौन है तेरा नाम क्या। एंजॉय करेंगे ये फरमाइश, लेकिन उसके पहले क्या आप सभी को पता है दोस्तों कि खुद भूल भुलैया के डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी हमारे अक्षय कुमार ने असल जिंदगी में एक ऐसी रात बिताई है जिसे याद करके वो आज भी कांप उठते हैं। डू यू नो अबाउट दिस? नहीं ना, आई नो। तो असली कहानी ये है कि जब अक्षय फिल्म 36 चाइना टाउन का गाना दिल सिग्नेचर फिल्मा रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, तो उन्हें 104 डिग्री तेज बुखार था। डॉक्टरों ने बेड रेस्ट कहा था, लेकिन शूटिंग कैंसिल ना हो इसलिए उन्होंने पैरासिटामोल लेकर रात के 3 बजे शूट किया, और शूटिंग के दौरान अचानक पूरा सेट जलकर राख हो गया और लाइटें अचानक से बंद हो गई। उस धुएं और सन्नाटे के बीच अक्षय को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने सेट को तबाह कर दिया। बाद में भी अक्षय ने माना कि उस काली रात का अनुभव उनके जीवन का सबसे अजीब और सिहरन पैदा कर देने वाला किस्सा था। क्या आप लोगों ने ये किस्सा सुना था कि नहीं, चैट बॉक्स में लिख के बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना, मींस महेंद्र की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अक्की।

गायिका महेंद्र की फरमाइश पर हमारे अक्षय कुमार का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कुमार सानु साधना सरगम की आवाज में एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप जी की गोंडा से। एंजॉय करेंगे, बिल्कुल एंजॉय करेंगे ये फरमाइश। लेकिन उसके पहले दोस्तों, क्या आपको पता है कि अक्षय कुमार नाम किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर ने नहीं दिया था हमारे अकी को, बल्कि इसके पीछे का एक 10 सेकंड का एक ऐसा मोड़ था जिसने राजीव भाटिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। असली किस्सा ये है कि 1987 में अक्षय की पहली फिल्म आई थी आग। उसमें अक्षय का रोल सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का था और वे मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर बने थे। उस फिल्म के हीरो का नाम कुमार गौरव था और फिल्म में उनका कैरेक्टर नेम था अक्षय। सेट पर 10 सेकेंड के उस रोल के दौरान राजीव भाटिया को वो अक्षय नाम इतना भा गया कि वो बिना किसी को बताए सीधे बांद्रा गए, कोर्ट गए और अपना नाम बदलकर राजीव भाटिया से अक्षय कुमार करवा लिया, जबकि उस वक्त उनकी कोई पहचान भी नहीं थी। आप लोग को ये बात पता थी कि नहीं, चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं उषा कश्यप जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ये नगमा बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले एक और किस्सा मैं हमारे आज के पौधे बॉय अक्षय कुमार का सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिस हीरो को हम पर्दे पर एक पंच से गुंडों को उड़ाते हुए देखते हैं ना, कभी उसकी रातें बैंकॉक की एक अंधेरी रसोई बर्तन में बर्तनों को घिसते हुए बीतती थी। जी हाँ दोस्तों, असली किस्सा है अक्षय जब थाईलैंड बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स सीख रहे थे तो उनके पास रहने खाने के पैसे नहीं थे। वे रात में एक रेस्टोरेंट में शेफ और वेटर का काम करते थे। वे अक्सर काम खत्म होने के बाद देर रात रेस्टोरेंट के फर्श पर अकेले सोते थे और उनके सिर के ठीक ऊपर कराटे और मार्शल आर्ट्स के महान गुरुओं के पोस्टर लगे होते थे। अक्षय कहते हैं कि उन काली और शांत रातों में वो घंटे पोस्टरों को घूरते रहते थे और खुद से वादा करते थे कि एक दिन दुनिया उन्हें जानेगी। हाउ मोटिवेशनल नो। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की, उनको सुनना है गाना ऊपर वाले अपने साथ हैं। सो एंजॉय करते हैं ये गाना सबलू सावंत की फरमाइश पर जो कि है मुंबई से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

खुशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाक से पेट पूजा कर लेना। स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार देसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
4: आज मेरी एज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने को कंट्रीब्यूट करेगी।
0: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
8: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
9: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
10: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शो फरमाइशी में आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में और आप सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। इस गाने की फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी सिंचाई विभाग से राजेश कुमार की तरफ से, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी मैं कि तेरे चाहने वालों की कतार में खड़े हैं, तेरे चाहने वालों की कतार में खड़े हैं, यानी बिन पैसे के हम बाजार में खड़े हैं। इतनी चहल पहल तुम्हारे इर्द गिर्द देखकर कभी लगता है कि किसी दरबार में खड़े हैं। है वाकिफ कि तेरे नजरें टिकती नहीं हम पर, फिर भी न जाने क्यों इंतजार में खड़े रहते हैं। और तेरे करीब से गुजरने वालों ने बताया है हमें, वो कब का जा चुका है, हम बेकार में खड़े हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। और सुनना है देवी प्रसाद जी को गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। तो एंजॉय करते हैं देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: सुर में गाना सीखिए,
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में।
2: थोड़ी सी जगह
0: एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार।

नजर चाहिए, हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आज है हमारे अक्षय कुमार का हैप्पी वाला बर्थडे, तो कुछ ना कुछ किस्सा कहानी तो आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल सुना के ही जाएगी जितना उसको पता होगा। तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया था जब लगने लगा था कि खिलाड़ी का सफर अब यही खत्म होने वाला है। 90s के दशक के ढलते सालों में अक्षय की लगातार एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, सीधे 14 फिल्में फ्लॉप हुई थी। निराश होकर उन्होंने अपने दोस्त के साथ और कहीं नहीं कनाडा में जाने की और काम ढूंढने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन ठीक उसी वक्त निर्देशक सुनील दर्शन की फिल्म जानवर, जो कि सन 1999 में रिलीज हुई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और अक्षय के डूबते करियर को नई सांस दी और फिर से ब्लॉकबस्टर हीरो बन गए हमारे अक्षय कुमार। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। सो एंजॉय करते हैं मुमताज अंसारी जी की फरमाइश, अब उनको सुनना है गाना तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, और दिल रोया कि अख भर आई किसी से अब क्या कहना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, और दिल रोया कि अख भर आई किसी से अब क्या कहना। क्यों दोस्तों, हमने इंजॉय किया ये बहुत ही दर्द भरा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ आप सभी के साथ, लेकिन इसके पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं आज है हमारे अक्षय कुमार का हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे, और मैं सुना रही हूँ आप सभी को अनसुने किस्से। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी सेफ्टी नेट या बॉडी डबल के जान जोखिम में डालना अगर कोई सीखे तो हमारे अक्षय कुमार से। ये काम सिर्फ खिलाड़ी ही कर सकते हैं। अक्षय बॉलीवुड के उन गिने चुने स्टार्स में से हैं जो अपने ज्यादातर स्टंट्स खुद करते हैं। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में द अंडरटेकर जैसे रेसलर को उठाने के दौरान उनकी पीठ में बहुत गंभीर चोट आई थी, स्पाइन इंजरी हुई थी उनको। इसके बावजूद उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर से कूदने या जलती आग के बीच शूटिंग करने से परहेज नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और हमारे खिलाड़ी ऑब्वियसली हैं खतरों के खिलाड़ी। सो अब इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है कार्तिक कश्यप की गोंडा से, और उनको सुनना है गाना मुझसे मोहब्बत का इजहार करता और काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। सो इंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आर के श्रीवास्तव जी गोंडा से डी के।

से प्यार करती, अरे मिल जाएगी किस्मत वाली, अपने आप आ जाती है आंखों के सामने। अब वो हमारी बात है कि हम समझ पाते हैं कि देर कर देते हैं। हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज़, विकास कोंडा से। इंजॉय करेंगे अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगी एक और किस्सा अक्षय कुमार का। जी हाँ, जहाँ बॉलीवुड में देर रात पार्टियाँ शार्टियाँ चलती रहती हैं, वहीं एक हमारे सुपरस्टार का सीक्रेट और एकदम से कड़ा वाला डिसिप्लिन छिपा है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार किसी भी लेट नाइट पार्टी में शामिल नहीं होते। उनका फिक्स स्केड्यूल है रात 9 बजे तक सो जाना और सुबह 4 बजे उठकर स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स या रनिंग करना। वो किसी भी फिल्म के मेकर्स के सामने पहली शर्त ही यही रखते हैं कि शूटिंग सुबह जल्दी शुरू होगी और समय पर ख़त्म होगी। तो ये हैं हमारे अपने खिलाड़ी, हमारे अक्षय कुमार से। एंजॉय करते हैं अब धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

खड़े हैं दिल थाम के धर्मेंद्र मोहन ने आवाज विकास गोंडा से की थी। इस गाने की फरमाइश बढ़ते हमारे आज के अगली और आखिरी फरमाइशी गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइशी गीत हमारे पास में आई हुई है संतोष कुमार की गिलौली से। उनको सुनना है अक्षय कुमार का गाना। एंजॉय करेंगे ये गाना, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि संघर्षों की रात से निकलकर जिसने लिखी अपनी तकदीर, अनुशासन के दम पर बनाई अपनी एक अलग ही तस्वीर, ढलती रात अब खामोशी का पैगाम ला रही है और ये महफिल अब रुखसत का वक्त बता रही है। उम्मीद है अक्षय कुमार की जिंदगी के ये अनोखे किस्से आपकी इस रात को और एक नई रोशनी देंगे और एक नई सोच देंगे और मीठी सी मुस्कान ज़रूर दे के जाएंगे। कल फिर मिलेंगे कुछ और हसीन दास्तानों के साथ में, अनदेखे पन्नों के साथ में और आपकी पसंदीदा धुनों के साथ में, आपकी फरमाइशी गीतों के साथ में। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर बालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं उदालक शर्मा की फरमाइश।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी का। आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गज़ल। और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद ख़ास। और आज का दिन हो जाता है बेहद ख़ास, क्योंकि भाई इस दिन हमारे जो श्रोता होते हैं वो बन जाते हैं वक्ता। जी हाँ, कल इनका प्रोग्राम होता है, आप गुनगुनाते हैं, आप गाते हैं और हम सभी सुनते हैं। जी चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जी हाँ, हमको लगता है कोई जुड़ चुका है हमारे साथ। देखते हैं भाई हमारे साथ कौन है जो फिलहाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी
1: हेलो राधे राधे सर।
0: एक मिनट रुकेंगे आप।

0: हेलो
1: हेलो राधे राधे सर। आप
0: जी, राधे राधे, कैसी हैं आप? ओहो,
2: कैसे हैं?
0: मतलब अगर मैं इस आवाज को पहचान रहा हूँ तो शायद ये फेरों ना नजर से नजरिया है।
2: जी अर्चना।
0: जी जी जी मतलब पिछली बार जब आप आई थी तो मतलब श्रीमती सविता जी ने कहा था कि अब की बार अर्चना जी आएंगी तो वो अपनी पसंद का कुछ भी सुनाए चलेगा, लेकिन नजरिया जरूर सुनना चाहेंगी। तो मैंने जो है वो उनकी ख्वाहिश आप तक रख दी है, आगे आपकी इच्छा।
2: उससे पहले मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगी।
0: हाँ, क्या बात है।
2: हाँ।
0: तो चलिए भाई, आज की खूबसूरत शाम, आज की महफिल का आगाज साक्षात रचना जी से हुआ है। जी हाँ, तो चलते हैं आपके गीत की तरफ।
2: जी
0: जी

दिल धड़के रह रह कर तेरा मेरा प्यार अमर

0: क्यों दिल धड़के रह कर, क्यों दिल धड़के रह कर।
1: मतलब ये गाना यहीं समाप्त हो गया क्या? अरे
0: जी
1: वाह, मतलब क्या अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया अपना जी आपने। और अनूप जी दिखते हैं, वाह वाह वाह वाह वाह, तेरा मेरा प्यार इतना सुरीला, अनबिलीवेबल। मतलब यकीन नहीं होता लोगों को कि ये किसी ने गा दिया है। कितनी खूबसूरती से गाया है आपने। इस गाने को गाया नहीं है, इस गाने को आपने निभा दिया है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
1: क्या बात है। तो भाई उनकी इच्छा थी तो हमने आप तक पहुंचा दी थी नजरिया, अब आगे
0: जी
1: आपकी इच्छा। जी
0: जी बिल्कुल गाएंगे। एक मिनट सर।
1: जी हाँ नूप जी, ये अर्चना जी हैं और एनजीएम की पढ़ी हुई विद्यार्थी हैं, इसमें म्यूजिक टीचर भी हैं।

0: क्या बात है भाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब लगता है कि यह गीत या तो उन्हीं के लिए बना था या तो आपके लिए बना है। और भाई श्री तेजनाथ शुक्ल जी भी लिखते हैं भाई, शानदार, बहुत ही शानदार रचना जी को दिल से आभार। अनिल शास्त्री जी लिखते हैं बहुत सुंदर गाना गाया। और सविता जी ने लिख दिया है भाई शुभ संध्या सर जी, और धन्यवाद रचना जी, बहुत बहुत प्यार, आपका प्यार हमने, उनका प्यार हमने आप तक पहुंचा दिया, आपका आशीर्वाद भी उन तक हम पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: शुभ रात्रि नहीं, अभी तो शुभ संध्या हुई है
1: जी, मेरे लिए रात्रि हो गई।
0: नहीं नहीं, अभी तो, अभी तो 10:30 बजे तक आपको जगना ही जगना है
1: जी।
0: बहुत बहुत बहुत प्यारा गाया आपने। और श्री लिखते हैं आवाज सुर लय का अद्भुत संगम।
1: थैंक यू लिसनर
0: जी। हाँ इतना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: राधे राधे सर।
0: राधे राधे जी। हाँ तो भाई ये हमारी अर्चना जी, और वास्तव में भाई जितनी तारीफ की जाए इनकी आवाज़ की उतनी कम। और चलते हैं, देखते हैं फिर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो, हाँ नमस्कार जी, मोहन श्रीवास्तव बोल रहा हूँ।
0: अरे अरे, क्षण स्पर्श प्रणाम।
2: और कैसे हैं
0: जी?
2: खुश होइए
0: जी, आशीर्वाद आपका।
2: एक गाना हम सुना देते हैं।
0: हाँ क्या बात है, आप पहले देव का स्वास्थ्य ठीक है?
2: हाँ, वो दीवानों से ये मत पूछो।
0: दीवानों पे क्या गुजरी है? आहा, मुकेश कुमार को आप लाए हैं।
2: मुकेश जी का। हाँ
0: क्या बात।
2: दीवान

0: क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, इसकी हम आपको एक पंक्ति बताएं कि इस गीत को जब हम सुनते थे तो हम ये समझ नहीं पाते थे कि औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है। और जब इस गाने को हमने देखा तब इसका मतलब समझ में आया कि कवि कहना क्या चाहता है कि वहां पर एक गिलास रहता है, वो दुल्हन सजाता है और इसके पश्चात अब मैं समझ में आता है, ओहो क्या बात है कि मतलब।
1: एक गीत और सुना दो, समय हो तो।
0: हाँ सुना दीजिए थोड़ा सा।
1: चल

0: क्या बात है भाई, आपने गीत गाया उधर अनुप मिश्रा लिखते हैं, वाह वाह बहुत ही प्यारा, बहुत और श्री चैतन्य सुख लिखते हैं कि बहुत खूब, क्या बात है। मतलब
1: हमने आपको स्टार मिलकर पर गाए हुए कई गीत आपको भेजे थे, देखा
0: जी, है जी जी जी, वास्तव में आप बहुत खूबसूरत गाते हैं, बहुत ही प्यारा गाते हैं, माशाल्लाह इसी तरह आपके कंठ में विराज मान रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है और हम सभी आपके गीतों का आनंद लेते रहे।
1: बहुत बहुत आशीर्वाद
0: जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको,
1: खुश रहिए
0: जी। भाई अरविंद श्याम मनकापुर भी हमारे साथ हैं और उन्होंने लिख दिया है कि भाई सभी को शुभ रात कह रहे, अभी कहाँ शुभ रात कह, देखते हैं कौन जुड़ चुका है हमारे साथ। हेलो,
2: हाँ नमस्कार भैया।
0: हाँ क्या बात है, प्रतीक्षा हो रही थी दर्द कुमार जी की, मैं गलत तो नहीं हूँ?
2: और कैसे हैं आप
0: जी, आशीर्वाद आपका।
2: चलो जी, हमारा सभी दोस्तों को, सभी लिसनर को मेरा नमस्कार है और आपको भी आशीर्वाद है और आलोक जी को भी मेरा नमस्कार है
0: जी
2: और राजेश सिंह को भी नमस्कार है। तो बड़े मुश्किल से लग गया लाइन, तो
0: नहीं नहीं अरे मुश्किल से नहीं, बस
2: तेरे दर्द से दिल आवत रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल आवत रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हम काम लाया, नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हम काम लाया, अपनी वफा से गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए, दर्द दिल हम कैसे सहे, दूर भी हम कैसे रहे, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे, जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे, अरमा मुझे है सपने धुआं है, मर मर के भी चिंता यहाँ है, बेखुदी में हम खो गए, के जुदा तुझसे हो गए, चाहत का जहाँ भाग रहा, चाहत का जहाँ बात रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। थैंक यू सर।
0: क्या बात है भाई, और अनूप मिश्रा ने लिखा है कि सुरेश जी को बहुत बहुत प्रणाम, और लिखा है कि वाह सुरेश जी आज नए गाने के साथ मतलब
2: कुमार सानू
0: रफी जी को छोड़कर आप कुमार सानू पर चले आए, और हमको लगता है ये शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना का गीत है।
2: दीवाना,
0: और क्या गीत चुना, मतलब नए गीत में भी आपने चुना तो दर्द चुन लिया, और अरविंद जी भी मन कब उसे कहते हैं वाह वाह क्या बात है, बहुत प्यारा गाया आपने।
2: वाह मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई,
0: बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको।
2: चलो ये छोटा सा और है, देखे चाहिए रफी की आवाज।
0: जी जी
3: तेरी साथी में तू तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफाई सही बेवफाई सही, दिल रुबा है मेरी खुश रहे, या मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, ओ या मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले, मौत ही आखरी मौत ही आखरी बस दवा।

मेरी खुश रहे, उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा। ओ उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा।

0: जी यही आज मर जी यही ना खुदा है मेरी खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी बेवफा ही सही दिल रुबा है मेरी खुश रहे
1: क्या बात है, मतलब दर्द कभी दर्द कुमार से दूर नहीं जा सकता। जी हाँ, वहाँ मोहनलाल सरस्वती जी कहते हैं ब्यूटीफुल सिंगिंग, बहुत लाजवाब। अनूप जी ने लिखा है कि दिल लूट लिया सुरेश जी आपने।
2: थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।
1: दर्द कुमार के ऊपर दर्द खिलता है।
2: हाँ तो
1: बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा गया आपने, प्रणाम आपको।
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी भाई। तो ये वो थे जिनको हम दर्द कुमार के नाम से पुकारते हैं। अब देखिए भाई, अब चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अब अगले कौन से ऐसे श्रोता हैं। जी हाँ बिल्कुल, और हमारे पास फोन आ चुका है, देखते हैं कौन है मैं साहब। हेलो।
3: हाँ जी सर नमस्कार।
1: ओहो, हाँ जी सर नमस्कार। ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की होती है, दुनिया के सबसे गहरे सागर प्रशांत महासागर जी की। एम आई राइट?
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।
1: जी कैसे हैं गोंडा के उदित नारायण जी आप?
3: जी जी बहुत अच्छे हैं सर, और आज आपके प्रोग्राम में हमें सम्मिलित होने का मौका मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद।
1: अरे आपको धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और कैसे हैं आप? जी जी
3: बस बढ़िया। फर्स्ट टाइम में लेते हुए
1: जी
3: मैं स्टार्ट करता हूँ। एक आपको उदित नारायण जी का गाना सुनाएंगे एक लाइन, और एक लाइन आपको सुनाएंगे किशोर कुमार जी का।
1: अरे वाह क्या बात है, तो आज हमारी बिटिया रानी भी है कि नहीं है?
3: हाँ बिटिया रानी भी है।
1: चलिए क्या बात है, तो आज लाइक फादर लाइक डॉक्टर होने वाला है।
3: जी जी जी
1: जी

कर जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किस हुस्न वाले की निशानी

0: उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।
1: थैंक यू सर।
2: क्या बात है, क्या बात है, ये तो किशोर कुमार थे ना?
1: जी ये किशोर कुमार जी का है।
2: हाँ, और अब चलेंगे उदित नारायण जी की तरफ।
1: जी उदित नारायण जी का भी सुनाते हैं सर।
2: जी
0: हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में

दिल में कहीं तुम छुपा लो, तुम पे मरते हैं और हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा,

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, तालियां तालियां तालियां। वास्तव में यूं ही नहीं, मैं आपको गोंडा कविता नारायण बोल देता हूँ, है आप। क्या बात है भाई, बहुत सारी तारीफ मनु मिश्रा जी लिखते हैं, वाह, और तेना शुक्ल लिखते हैं, वाह बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह, दो बात हो चुकी है। और हमारे साथ गीता बहन जी भी है, प्रणाम करते हैं आपको, तारीफों के पुल बन गए, क्या बात है। तो
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर।
1: जी हाँ, उदित नारायण जी के बाद अब हम किसकी ओर चलने वाले हैं?
0: जी जी सर, मतलब अब ये तन्वी जी गाएंगे।
1: जी जी,
2: हेलो
1: जी, प्रणाम आपको
2: सर, नमस्ते,
1: कैसी हैं आप?
2: अच्छे हैं सर।
1: बहुत दिनों के बाद आपको सुन रहा हूँ।
2: जी सर।
1: तो क्या सुनाने वाली हैं आप
2: आज? मैं आपको सुना दे आपके प्यार में।
1: आहा, क्या बात है, क्या बात है,
2: तो शुरू करें?
1: जी जी, निसंदेह।
2: आपके प्यार में

किसका नहीं आपने हमको मोहब्बत हुई, इसका दई आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट के बाजुओं में बिखरने लगे आपके प्यार में हम संवरने लगे।

आकाश की बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी।

इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई।

0: की शबनम की चोट से हम सनम हद से आगे गुजरने लगे आपके प्यार में हम सवरने लगे। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई तन्वी जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत ये आपने चुना। और गीतज ने लिखा है कि भाई वेरी लवली वॉइस, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी। अरविंद जी लिखते हैं वाह वाह वाह, कई बार वाह। तो जरा बुधवार को आ जाया कीजिए भाई, आपकी आवाज़ हम सभी के कान में पड़ जाया करे तो बहुत अच्छा जाए।
0: जी सर, कोशिश करेंगे।
1: चलिए ईश्वर, इस समय आपके एग्जाम्स चलने वाले होंगे और
0: ऑल द बेस्ट।
1: हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।
0: थैंक यू सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। जी हाँ भाई, तो ये तन्वी जी हैं जो श्री प्रशांत कुमार तिवारी जी की बेटी हैं। और फिर देखते हैं, हमारे साथ कोई और जुड़ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, जी ये फोन स्वतः आया और स्वतः कट गया। और हेलो,
2: शुभ संध्या मनु जी।
1: आहा, सो चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी।
2: अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी।
1: तो ये रात बनेगी जी। कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए क्या हाल चाल है।
1: बढ़िया बढ़िया, आपका पैर एकदम फर्स्ट क्लास,
2: एकदम बिल्कुल मस्त,
1: एकदम बिल्कुल उछल कूद शुरू कर दिए।
2: हाँ, कूद फान मचाने शुरू कर दिए।
1: मतलब ईश्वर से यही कामना भी थी कि बहुत जल्दी आप कूदते फानते नजर आए।
2: आज आज के प्रोग्राम की शुरुआत जो अर्चना जी ने की है, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। मैंने इतना बढ़िया तेरा मेरा प्यार अमर गाना असली नकली मूवी का मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना था।
1: वास्तव में बहुत प्यारा गाया है,
2: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत उम्दा,
1: और स्केल भी बहुत अच्छी,
2: बहुत अच्छा। मतलब काफी जहाँ तक नोट जा सकते थे, ऊपर के नोट नीचे के नोट, मतलब सारा सब कुछ परफेक्ट था। मतलब मैं उनका गाना सुनने के बाद सर मैं ये सोच रहा था कि मैं गाऊं या ना गाऊं।
1: अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब ये तो यही की विद्यार्थी है, नारी गान स्कूल की ही स्टूडेंट रही है और अब म्यूजिक टीचर हो गई है और सिखाती है।
2: चलिए बस, हमारी बहन बेटियां ऐसे ही प्रगति करती हैं, बस यही काफी है।
1: बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सही कहते हैं
2: जी सर।
1: तो आज आपसे क्या उम्मीद है?
2: सर गाने तो सर चुने थे तीन, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि गाऊं कौन सा। एक रफी साहब का है, एक मन्नाडे साहब का है और एक रूप कुमार राठौर साहब का है। अभी आप बताइए आप क्या सुनेंगे।
1: हम सोच रहे हैं मन्नाडे को सुन लिया जाए।
2: चलिए सर मन्नाडे को ही सुनते हैं,
1: कहीं कसमे वादे प्यार वफा तो नहीं।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल वही गाना है।
1: मेरा गेस सही था, क्या उपकार क्या वो प्राण के ऊपर फिल्माया गया। हा हा हा। और आपकी आवाज में खूबसूरत लगेगा ये मैं जानता हूँ।
2: ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ निभाने की।
1: जी, और आप निभा ले जाएंगे ये हमको पूरा विश्वास है।
2: कोशिश करूंगा सर।

0: यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बन कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। Thank you, sir.
1: क्या बात है भाई, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व ने प्रशंसा की है आपकी। श्री अशोक त्रिपाठी जी पहले तो चरण स्पर्श करते हैं, आपको प्रशंसा की है और गीता श्रीवास्तव ने तो लिख दिया है वाह मन्ना रे। मतलब देखिए ये मतलब चॉइस हमारी अच्छी थी इसका मतलब।
0: हाँ सर, दिल से आभार सभी लोगों का और
1: मतलब ये
0: आपको प्रणाम जो बड़े हैं उनसे जी।
1: और वास्तव में मतलब प्राण के ऊपर मन्ना डे की आवाज बहुत अच्छी लगती है।
0: थैंक यू सर। सर चंद लाइनें रफी साहब की अगर आप इजाजत दें तो।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: वैसे चिर परिचित गाना है ये, आपने भी कई बार सुना होगा। अभी मुमताज अंसारी ने लास्ट टाइम गाया था ये पिछले बुधवार को
1: जी।
0: तो उस दिन मैं यही गाने वाला था, लेकिन जब उन्होंने गाया तो मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट को दूसरा गा लूंगा, आज मैं गुनगुनाना चाहूंगा इसे
1: जी।
0: मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी।

हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले ये झुकी झुकी निगाह।

0: है, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, दो के दो गीत और दोनों के दोनों बाकमाल, बहुत ही प्यारा गीत गाया आपने अनूप जी, दोनों को निभाया आपने। वर्सटाइल सिंगर, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मन्ना डे को भी निभाया और रफी साहब को भी निभाया।
0: थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा मैं आपको रूप कुमार राठौर जी के साथ।
1: जी बिल्कुल, हम प्रतीक्षा रहेंगे, कहीं ये तो नहीं जिंदगी मौत का बन जाए, संभालो यार।
0: हो रहा चैनो अमन,
1: हाँ हाँ, मतलब धूप और राठौर का ये बहुत बढ़िया गाना है, या बरसात के मौसम में?
0: नहीं सर, एक और है, ऐ जाते हुए लम्हो।
1: हाँ, जरा ठहरो, क्या बात है, क्या बात है,
0: बहुत यही गाना था
1: बिल्कुल। तो मतलब इसको हम शनिवार को सुनते हैं?
0: बिल्कुल सर, शनिवार को। ओके
1: अच्छा, प्रणाम।
0: ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर।
1: हेलो हेलो,
2: हाँ जी बुद्धू जी,
1: चरण स्पर्श, चरण स्पर्श,
2: खुश रहिए, खुश रहिए।
1: कैसे हैं श्री आर के श्रीवास्तव जी आप?
2: बहुत अच्छे हैं, और आज जो चैट बॉक्स जो है सही कराया, तो फिर वो पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, तो कुछ लिखते हैं तो क्या क्या मांगने लगता है उस लड़के।

0: अदर मानते हैं, एक प्लेटफॉर्म है, एक परिवार है
1: जी,
0: और जो है तो जब इजाजत हो तो बताइए।
1: अरे अरे प्रार्थना करेंगे आपसे।
0: अरे नहीं प्रार्थना उतना नहीं, चलिए थोड़ा पुराना गाना है, हो सकता है बोला पसंद है।
1: अरे क्या बात करते हैं, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड।
0: तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकार

है, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है। सामने आ जा एक बार, आ जा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां के भेंट।

0: की खाक चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी, अब तो चलिया एक बार है आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। थैंक यू मनु जी।
1: वाह, आप जब गीत गा रहे थे तो हमको एकदम लगा राजकुमार एकदम पर्दे पर।
0: अरे नहीं सर, आज अरे ठीक है, अरे इतना ना वो करिए, खैर ये है कि चलिए थोड़ा बहुत गा लेते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद।
1: गीता जी ने बहुत सारे स्टार दिए, उन्होंने कहा बहुत दिन बाद आए हैं सर, दो लाइन से काम नहीं चलेगा, पूरा गाना सुनना पड़ेगा। और
0: अनुपम में हमको इतना ही याद था।
1: हाँ बहुत सुंदर, मतलब इतना ही याद था, लेकिन हमको लगता
0: है जो हम गाते हैं फेसबुक वगैरह पे
1: जी,
0: तो उसपे पूरी पूरा चार्ट रहता है ना, स्टार मेकर वगैरह पे
1: जी,
0: तो वहाँ दिक्कतें होती नहीं, इसलिए हम याद भी नहीं करते।
1: हाँ वैसे आपको
0: ये तो आपको, हाँ जी,
1: अरे वैसे भी आपको इतना गीत याद रहता है।
0: अरे थोड़ा बहुत तो देखिए, अब वही प्रोफेशन में जब उतरे हैं
1: जी,
0: थोड़ा बहुत करते रहते हैं और कुछ नहीं। चलिए, और टाइम बहुत हो गया, दूसरे को मौका दीजिए
1: जी,
0: और अगर लोगों को पसंद आया तो ये हमारा सौभाग्य है।
1: बहुत बहुत पसंद आया, पसंद नहीं बहुत पसंद।
0: चलिए अभी मैं चैट बॉक्स देखता हूँ
1: जी,
0: लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि वो हमारा गड़बड़ है कुछ। थैंक यू।
1: फिर भी आप लोगों को शुभकामनाएं दे सकते हैं।
0: नहीं, बिल्कुल शुभकामनाएं है हमारी। अब मैं बराबर चैट बॉक्स में मिलूंगा, ये बात नहीं है
1: जी। बहुत बहुत आभार इसके लिए आपका।
0: नहीं, वो लड़का कहा कि वो उसने ठीक किया है किसी तरीके से
1: जी,
0: तो अब वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर हमारी कहीं उंगली गलत लग गई। चलिए क्या, टाइम ना खराब कीजिए, टाइम बहुत कम है
1: जी। जी अच्छा,
0: ये सब तो बात है। ओके सर, ओके
1: जी। हाँ तो भाई, ये श्री आर के श्रीवास्तव जी, और भाई इतनी तारीफ की जाए, वास्तव में उतनी तारीफ कम है। और हम तो इनको गोंडा के किशोर कुमार कहते हैं, लेकिन आज तो रफ़ी साहब का गीत, वो नीलकमल, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, आह मतलब वास्तव में काबिले तारीफ जी। हाँ भाई, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपके पास 5 मिनट का वक्त और है, और ये 9:30 से 10:30 कब हो जाएगा यकीन मानिए हमें खुद नहीं पता चला, अब आपको कैसे पता चलेगा। मतलब बैठे बैठे बैठे बैठे 1 घंटे 5 मिनट कब बीते ये एहसास मुझे को नहीं हो पाया। तो आइए अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे श्रोता की तरफ, और अब जो हमारे पास शेष

0: जी हाँ भाई, और देखते हैं कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
1: अरे नमस्कार।
0: वही मैं सोच रहा था कि आज हमने आपको कैसे मिस कर दिया।
1: और क्या हाल है सर?
0: दादा चरण स्पर्श, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: एक्चुअली आज बड़े अच्छे अच्छे लोगों को सुनने को मिल गया।
0: अरे मतलब ये सभी लोग आपके शागिर्द हैं, मतलब समझिए
1: जी।
0: ये सभी कहते हैं कि हम गोरखपुर वाले दादा से सीखते हैं।
1: अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है
0: बच्चे।
1: तो मैं आज आपको धड़कन पिक्चर का गाना सुनाता हूँ। मेरे दोस्त तुम्हें मेरा मीत मुबारक।
0: आय हाय हाय हाय, क्या बात है।
1: ठीक है
0: जी जी,
1: तो शुरू करो।
0: जी जी निसंदेह।
2: के दुनिया बता

मुबारक मेरे दोस्त तुझे, मेरा मीत मुबारक, ये साज नया नया गीत मुबारक मेरे दोस्त तुझे, तेरा मीत मुबारक मेरे दोस्त तुझे, तेरा मीत मुबारक। खिली है बाहर से ये फूलों की कली, ख्वाबों की दुल्हन पड़े ना।

है, कभी बाबुल की गली, कभी बाबुल की गली, गाए खुशी के तराने ऐसी प्रीत मुबारक, गाए खुशी के तर...

रख चमके क्यों ना तारा उसकी किस्मत का, जिसको मिला हो यह सिर तोहफा। चमके क्यों ना तारा उसकी किस्मत का, जिसको मिला हो यह सिर तोहफा। बड़ा है नसीब वाला है वो जग में, हाथ में हो जिसके

0: तुझे तेरा मीत मुबारक। थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, एकदम उतार दिया आपने गीत को।
0: कोशिश किया।
1: अरे दादा, विशाल बेदती लिखते हैं, देर आए दुरुस्त आए, क्या खूब गाया है दादा। वास्तव में गाया नहीं, निभा।
0: थैंक यू।
1: और भाई अब उनसे जरूर सुनेंगे जिनके बिना आप अधूरे हैं। हेलो।
0: हाँ
1: हम उनसे जरूर बात करना। हेलो
2: हेलो
1: जी, चरण स्पर्श
2: जी,
1: चरण
2: स्पर्श बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप कैसी है तबीयत आपकी?
1: जी जी एकदम स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
2: चलिए ऐसा ही होना चाहिए। आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग गाए हैं गीतों को।
1: कहा जाता है ऑल इज वेल इफ इट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, इसीलिए इसीलिए हमने आपको बुला लिया है।
2: अच्छा अच्छा
1: जी,
2: ठीक है, धन्यवाद। आज कोई तैयारी तो नहीं? आज है कान्हा जी का छठी का दिन, कई लोग मना रहे हैं।
1: जी जी जी।
2: तो आज मैं वही मतलब सुना देती हूँ अमर प्रेम का।
1: जी।
2: बड़ा नटखट
1: है। क्या बात है, सुना देती।
2: तो अगर टाइम ना हो तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ गा देती।
1: नहीं नहीं, आप गाइए गाइए गाइए।
2: ठीक है, मैं सुना रही हूँ, शुरू करें?
1: जी जी निसंदेह।

0: सर।
1: हाँ बात है भाई, हमने शुरुआत की थी तो गीत था तेरा मेरा प्यार अमर। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि इस दुनिया में अगर अमर हो गया प्रेम तो यशोदा और कृष्ण का प्रेम अमर हो गया।
0: जी बहुत सही।
1: दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, जहाँ कहा जाता है कि यशोदा मतलब जो आपको यश दे वही यशोदा, और नंद मतलब जो सभी को आनंद दे वही नंद।
0: तो बहुत अच्छा,
1: तो जो सभी को आनंद देते हैं और जो जो सबका यश चाहती हैं, अगर माता पिता ऐसे होते हैं तो बच्चे का नाम कृष्ण होता है, और कृष्ण का अर्थ होता है जो सबके मन को भा जाए,
0: जीतने वाला। सही बात है, जीतने वाला
1: वही कृष्ण है। और जो रियल माता पिता है वो देवकी, मतलब सोचिए वो देवकी कन्या है, और वसुदेव अर्थात वासुदेव, ऐसे लोगों के घर कृष्ण का जन्म होता है। और आज आपको याद रहा कि उनकी छठी है तो भगवान कृष्ण
0: का लोग मना देते हैं।
1: हाँ, और बहुत से लोग हमारे घर में स्वयं भी मनाया जा रहा है। और ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि आपने जो है वो भगवान कृष्ण की छठी को शानदार ढंग से मनाकर इस कार्यक्रम को जो आपने पूरा किया है वो वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ है।
0: जी धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी इच्छा पूरी की है आपने अर्चना जी से गवा करके।
1: जी आप,
0: बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: आपका आदेश हमेशा सलाखों पर था, है और रहेगा।
0: और
1: गीता जी लिखती है कि भाई मन खुश हो गया इतना सुंदर भजन सुनकर।
0: गीता जी को भी बहुत बहुत मतलब नमस्कार
1: जी। और मतलब आपने
0: सभी को, जितने लोग आज शामिल हुए हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बधाई छठी जी उनकी, कान्हा जी की
1: जी।
0: और आपको भी भगवान बहुत हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और इसी तरह कार्यक्रम पेश करते रहे, यही दुआ है मेरी।
1: बस बस आपकी कई आशीर्वाद रंग लाएगा। अच्छा, चरण स्पर्श आपको,
0: खुश रहिए।
1: जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बहारे गज़ल में, ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की नहीं बल्कि हम सभी के दिलों की धड़कन। आप सभी श्रोताओं का जो आज वक्ता बने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी वो गुजरे लम्हे। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार की सुबह निशा को बेहद बोर लगती। हर सोमवार की तरह आज भी देर से आंख खुली। हड़बड़ी में उठकर तैयार हुई, नाश्ता बनाया, अपना और अनुज का टिफिन पैक किया, फिर सरपट बस स्टॉप की तरफ भागी। सोमवार को वो अक्सर 8:30 की चार्टर्ड बस मिस कर दिया करती थी, मगर आज किस्मत कुछ अच्छी थी, जो बस भी उसी की तरह लेट थी। वो दौड़कर बस पर सवार हो गई और एक विंडो सीट को हथिया कर गहरी सांस छोड़ते हुए तसल्ली से बैठ गई। बस अगले स्टॉप पर रुकी तो उसमें 3 लड़कियां सवार हुईं और निशा से पिछली सीट पर बैठ गई। सवारियों के कोलाहल के बावजूद निशा आंखें मूंदे शांत बैठी थी। पिछली सीट से लड़कियों की धीमी धीमी चुहलबाजियों, हंसने की, खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं। उनके कुछ उड़ती उड़ती सी बातों ने निशा का ध्यान खींच लिया। पता है यार, पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मगर कुछ दिनों से मैंने बार बार नोटिस किया है कि वो जब तब नजरें बचाकर मुझे ही देखता रहता है, बहाने से मेरे आसपास से गुजरता है। कल तो वो मुझसे नोट्स मांगने भी आ गया, जैसे पूरी क्लास में एक मैं ही बची हूँ नोट्स देने के लिए, उनमें से एक लड़की कह रही थी। तो दूसरी बोली, सच? दिखने में कैसा है, स्मार्ट है क्या? लड़कियों की उत्सुकता बढ़ रही थी। हाँ वो तो है, पहली लड़की ने कहा। वाओ क्या बात है, तो क्या वो तुझे प्रपोज करेगा? तीसरी लड़की बोली, पता नहीं। पहली ने कहा तो दूसरी फट से बोल पड़ी, तो तू कर देना। पहली का जवाब था, ना बाबा। उसके बाद उन तीनों की मिली जुली दबी हुई खिलखिलाहट निशा के कानों में पड़ी। उनकी वो दिलकश चुहलबाजियां निशा के दिल को भी गुदगुदा गईं और 4 साल पहले की कुछ ऐसी ही रोमानी यादें किसी बेलगाम सावनी घटा की तरह उमड़ घुमड़ कर उसके स्मृति पटल पर छा गईं। निशा और उसकी बचपन की सहेली सुधा साथ साथ कॉलेज जाते थे और उनमें रास्ते भर इसी तरह बेफिजूल मगर दिलचस्प गुटरगूं चलती रहती थी। मसलन आज कॉलेज में किसने क्या पहना था, किस लड़के ने उन्हें फटाने की नाकाम कोशिश की, किसका किसके साथ अफेयर है, और भी न जाने कितनी ऐसी ही बातें।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है वो गुजरे लम्हे। अब तक आपने सुना, निशा बस में ऑफिस जा रही थी और पीछे बैठी तीन लड़कियों की बातें उसे उसकी पुरानी यादों में खींच ले गईं। अब आगे, कॉलेज खत्म करते ही निशा की एक अच्छी कंपनी में एज अ ट्रेनी नौकरी लग गई थी। सुधा का ऑफिस भी पास ही था। शाम को घर जाने से पहले आदतन दोनों देर तक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते। अपने पैरों पर खड़े होने की भावना ने निशा में गजब का आत्मविश्वास भर दिया था। सोच निश्चित हो गई थी और दिल के भीतर रह रह कर कुछ इंद्रधनुष के सुनहरे रंग सी कल्पनाएं उभरने लगी थीं। मगर इसमें उसका दोष नहीं था, उसकी नादान उम्र का था। यही तो वो उम्र थी जब नजरें हर राह हर मोड़ पर उस अनदेखे अनजाने चेहरे को खोजने लगती हैं, जिसको पाकर कुछ और पाने की ख्वाहिश ही नहीं रहती। अपने आसपास से गुजरने वाले हर खूबसूरत चेहरे को देखकर मन पुकार उठता है, कहीं ये वो तो नहीं। उम्र के उसी नाजुक पायदान पर खड़ी निशा का दिल भी कुछ बेकरार सा रहने लगा था और आंखें भीड़ में उस हमसफर को तलाशने लगी थीं, जिसका हाथ थामकर आने वाले जीवन का हसीन सफर तय करना था। एक दिन निशा अपने केबिन में बैठी थी, तभी उसके बॉस एक अपरिचित नवयुवक के साथ वहां आए। निशा, मीट मिस्टर दिनेश, इन्होंने आज ही हमारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है। निशा ने उस युवक को देखा और न जाने क्या हुआ कि उसकी आंखें अनायास ही शर्मसार होकर झुक गईं। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व, इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर सादगी और विनम्रता भरी बड़ी बड़ी आंखें। पल भर के लिए निशा को लगा जैसे उसके ख्यालों में छाई रहने वाली अनदेखी अनजानी छवि रूप धरकर प्रत्यक्ष आ खड़ी हुई है जहन में एक बार फिर, कहीं ये वो तो नहीं का गंभीर प्रश्न उभर आया जो उसकी धड़कनों को तेज कर गया। बड़ी मुश्किल से बेकाबू हुए दिल को संयत कर निशा ने शालीनता से दिनेश का अभिवादन किया। प्रथम परिचय के आदान प्रदान के बाद दिनेश तो वहां से चला गया, मगर उसके साथ आया खुमार भरा रोमानी झोंका निशा के दिल पर दस्तक दे वहीं ठहर कर रह गया। पहली नजर के प्यार के किस्से सुने तो थे, मगर आज निशा ने उसको स्वयं अनुभव किया था। उसके बाद कुछ अजीब सिलसिले शुरू हो गए थे। दिन में उसकी चोर नजरें बार बार दिनेश की ओर घूम जातीं और जब उसे एहसास होता कि दिनेश भी उसे देख रहा है तो घबराहट में वो चेहरा घुमा लेती। नजरें मिलती तो उसके दिल के तार झनझना जाते।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है वो गुजरे लम्हे। अब तक आपने सुना, निशा ने ऑफिस में नया नया ज्वाइन किया था। उस उम्र में नजरें हर वक्त किसी ऐसे को ढूंढती हैं जो शायद उसका हमसफर बन सके। और फिर उसकी मुलाकात दिनेश से हुई जो सच में उसके दिल को छू गया। अब आगे एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने की वजह से दोनों को बातचीत के मौके भी मिलते रहते। दिनेश एक बात पूछता तो वो दो आगे की बात भी बता देती। उसके इसी सपोर्टिव नेचर को देखकर दिनेश भी अक्सर उसी से हेल्प लेने आता। दिनेश के हंसी मजाक और खुले गर्म जोश व्यवहार से निशा को लगने लगा कि उसका प्यार शायद एक तरफा नहीं है। और जिस दिन दिनेश ने ये कहा कि निशा, अगर तुम ना होती तो ना जाने इस ऑफिस में मेरी कैसे गुजर होती, उस दिन उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था। दिनेश के आकर्षण में कैद निशा का दिल किसी चंचल हिरनी की तरह कुलांचे भर रहा था। उसकी सैलरी अपने लिए ही कम पड़ने लगी थी। ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल, हेयर कलर आदि कराना उसे कंपल्सरी लगने लगा था। अपने आउटफिट को लेकर भी वो बहुत अलर्ट हो गई थी, हमेशा टिप टॉप रहने लगी थी। पर्स में एक छोटा सा आईना भी रहने लगा था जिसे चोरी छिपे जब तब वो देख लिया करती थी। क्या बात है निशा, बड़ी बनी सवरी रहने लगी हो, कहीं शादी की बात चल रही है क्या? नहीं तो, उसके दोस्त चिढ़ाते तो वो झेप जाती। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उसके कोलीग्स उसमें आए चेंजेस को टोह रहे थे और शायद इसका कारण भी जानने लगे थे, मगर वो सब बातों से बेखबर अपनी ही सपनों की दुनिया में मगन थी, जिसमें झांकने का हक सिर्फ उसकी अतरंग सहेली सुधा को ही था। शाम को दोनों मिलते तो निशा दिनेश से जुड़ा एक एक ब्यौरा उसके सामने रख देती। क्या कभी उसने तुझसे कुछ साफ साफ कहा है, एक दिन सुधा ने पूछ लिया। नहीं तो, जबान से कुछ नहीं कहता मगर मैं उसकी आंखों में सब पढ़ सकती हूँ। निशा का स्वर आश्वस्त था। तो तुझे पक्का यकीन है कि वो भी तुझे? सुधा बोली, और नहीं तो क्या, एक दिन कह रहा था कि मेरे बिना तो ऑफिस में उसका एक भी दिन गुजरना होता, जब देखो मुझसे ही बातें करने के बहाने ढूंढता रहता है। सर भी कह रहे थे कि दिनेश उनसे मेरी तारीफ कर रहा था। निशा लजाती हुई मुस्कुराई। वो कुछ नहीं कहता तो तू ही कह दे, ज्यादा देर मत कर। सुधा बोली, देखती हूँ। निशा ने ठंडी आह भरी।
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है?

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है वो गुजरे लम्हे। अब तक आपने सुना, निशा और दिनेश एक ही ऑफिस में थे। दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार का इजहार तो नहीं किया था, लेकिन निशा को उसकी नजरों से, उसकी बातों से ऐसा लगता था कि वो उससे प्यार करता है और निशा भी उसे दिलो जान से चाहती थी। अब आगे, निशा के लिए दिनेश की पहल का इंतजार करना मुश्किल हो चला था। उसने कई बार सोचा कि उससे साफ साफ पूछ लेगी कि जब वो उसे पसंद करता है तो कहता क्यों नहीं, और ये भी बता देगी कि वो उसे दिल की गहराइयों से चाहती है, मगर मौका आने पर जबान दगा दे जाती। आज भी वो कुछ ऐसा ही सोचकर ऑफिस आई थी, मगर आज दिनेश ऑफिस में ही नहीं था, किसी से कुछ कहकर भी नहीं गया था। उसके बिना निशा को ऑफिस में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए उसकी राह देखते हुए, किसी विरहिणी की भांति आंखें इंतजार की वेदना में सूनी हो चली थीं। आज दिनेश वापस आ गया था। वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था। उसने अपने सभी साथियों को, जिनमें निशा भी थी, इकट्ठा किया और एक गुड न्यूज का प्रसारण कर दिया। कल मेरी सगाई हुई है, अगले महीने शादी है, आप सबको जरूर आना है। क्या? निशा अवाक थी। उसे सहसा अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वाह साहब, मुबारक हो। सिर्फ शादी के इनविटेशन से काम नहीं चलेगा, सगाई की पार्टी भी देनी होगी, और वो भी आज ही। दूसरे कॉलीग्स की बधाइयां सुन धीरे धीरे निशा के गले बात उतरी कि जो सुना था वो वहम नहीं, हकीकत था। उस पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी थी, दिमाग सुन्न पड़ गया था। लगा जैसे किसी ने आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे निर्बाध पक्षी को विषैले तीर से घायल कर जमीन पर तड़पता छोड़ दिया हो। वो खुद को किसी तरह संभाल अपने केबिन में आकर बैठ गई। मन के भीतर तूफान चल रहा था। प्यार मुझसे और शादी किसी और से? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? कहीं घर वालों के दबाव में आकर तो अपनी भावनाओं का दमन? मगर मुझसे तो कह सकता था। उसके केबिन के बाहर लोग अभी भी दिनेश को घेरे खड़े थे। चलो, एक और बेचारा शहीद होने जा रहा है। अरे भाई, ये तो बताओ, लव मैरिज है या अरेंज्ड? लव कम अरेंज्ड, दिनेश बोला। मतलब? किसी और ने पूछा तो दिनेश ने बताया, मतलब ये कि हम दोनों क्लासमेट्स थे और पिछले 4 सालों से एक दूसरे को प्यार करते थे। हमारे घरवाले भी इस बात को जानते थे। बस मेरी नौकरी लगने का इंतजार था, सो नौकरी लगते ही हमारी एंगेजमेंट हो गई। निशा पर एक और बड़ा सा पत्थर गिर पड़ा। तो वो मुझसे नहीं, किसी और से? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता रहा कि वो मुझसे? कितना अपनापन, कितनी गर्मजोशी होती थी उसकी बातों में। मगर वो तो सभी से ऐसे ही बातें करता है। उसने कहा था कि मेरे बिना उसका एक दिन ऑफिस में काम ना चले, मगर ऐसा तो मेरे बॉस भी कई बार कह चुके हैं। उनके बारे में तो मुझे कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। वो मुझे बार बार देखता था, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? आज निशा खुद से ही बातें कर रही थी। उसका अंतर्मन उसे सच्चाई का आईना दिखा रहा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है वो गुजरे लम्हे। अब तक आपने सुना, निशा को लगता था कि दिनेश उससे प्यार करता है, बस इजहार नहीं करता। मगर एक दिन दिनेश ने ऑफिस में आके अनाउंसमेंट की कि उसकी उसकी गर्लफ्रेंड से एंगेजमेंट हो गई है और निशा के सारे सपने चूर चूर हो गए। अब आगे, दिनेश की शादी की खबर और अपनी नासमझी से निशा बहुत आहत थी। किसी से शिकायत भी तो नहीं कर सकती थी, कहती भी क्या, सब कुछ उसका अपना ही किया धरा था। शाम को सुधा उससे मिलने के लिए आई तो उसकी हालत देखकर घबरा गई। अरे ये क्या उदासी सूरत बना रखी है, कल तक तो भली चंगी थी, क्या हुआ, आज भी तेरा दिनेश ऑफिस नहीं आया क्या? निशा ने जवाब दिया, आया था। तो सुधा बोली, तो तुझे तो खुश होना चाहिए। निशा ने बताया, कल उसकी सगाई थी, अगले महीने शादी है। सुधा अवाक रह गई, क्या, मगर वो तो तुझसे, फिर यूं अचानक कैसे? निशा ने अपनी ही एक और बनाई हुई कहानी सुधा को बता दी। वो बेहद मजबूर था, उसके पिता ने पहले से ही अपने एक दोस्त की बेटी से उसकी शादी तय कर रखी थी। जब दिनेश ने शादी का विरोध किया तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार का मानसिक आघात नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए दिनेश को मजबूरन। और तेरा क्या, उसके बाद काटकर सुधा बोली, मैंने उसे समझाया कि फर्ज प्यार से कहीं ऊंचा होता है, इसलिए उसे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए। मैंने उसे भरोसा दिया कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। कहते हुए निशा तकिए में अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोकर मन हल्का तो कर लिया, मगर मुंह अभी भी तकिए में ही छुपा रखा था। उसकी झूठी नजरें सुधा की उन आंखों का सामना करने में सक्षम नहीं थीं, जिनमें उसके तथा कथित त्याग और महानता के सम्मान में आंसू उभर आए थे। निशा का अब उस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो चला था। दिनेश से नॉर्मल बिहेवियर और उसी तरह उसे आंसर्स देना उसके बस की बात नहीं थी, तो उसने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। नए परिवेश और समय के साथ जीवन के प्रथम मगर असफल प्रेम की क्षणिक अस्तित्वी लहर धीरे धीरे अतीत के सागर में विलय हो गई। समय गुजर तो रहा था मगर उम्र अभी भी। कहीं ये वो तो नहीं के नाजुक सवालिया पायदान पर ही खड़ी थी। और एक दिन निशा के शांत झील से जीवन में किसी ने फिर से प्रेम का कंकड़ फेंका। जल तरंगे लहरा उठी, सतरंगी इंद्रधनुष के सुनहरे रंगों को समेटे अनेक हसीन रुमानी कल्पनाएं पुनर्जीवित हो उठी। और इस बार ये रंग किसी एक दिल से नहीं बल्कि दो दिलों से निकले थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब निशा और अनुज अपनी शादी की सेकेंड एनिवर्सरी मनाने वाले थे। अचानक बस रुकी और कंडक्टर ने अपनी कर्कश आवाज में निशा का बस स्टॉप अनाउंस कर दिया। आवाज से निशा उठ खड़ी हुई, मुड़कर पिछली सीट पर देखा तो गुटरगू अभी भी जारी थी। उसने अपने मन ही मन उस लड़की को प्रेम में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और मुस्कुराते हुए बस से उतर अपने

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

संगीत तो मेरा देश है और सप्तक मेरा धर्म, सुरताल मेरी जाति और रियाज मेरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस स्वर कोकिला की बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी की आवाज ना ही किसी पहचान की मोहताज है, ना ही किसी विवरण की, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी आवाज है जिसे भारत की तरह एक नाम ही काफी है। भारत, भारत की पहचान हम सबकी प्यारी लता दीदी। स्वर कोकिला की मधुर तान भारत की पहचान बनी लता मंगेशकर महान। इस प्यारी सी आवाज के साथ में आज का शो हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी प्यारी आरजे ख्वाहिश के साथ में। जी हाँ, आज ये ख्वाहिश आज लेकर के आई हैं लता मंगेशकर जी की बहुत सारी ऐसे अनसुनी अनकहे किस्तों को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि हम कभी भी उन चीज़ों को, उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। लता जी के लिए जितना भी कहा जाए, जितना भी उनके बारे में बात की जाए वो कम है। जैसे समुद्र से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें, या फिर भर भर के हम कितने भी टैंक पानी निकाल लें, क्या वो कम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ में कहीं जाते हैं तो हमारी और अपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से ही पाई। पिता के अचानक से निधन के बाद में उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्मों में गायन व अभिनय का आरंभ किया। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां सर पे आने लगे तो हमारे ऊपर वो अलग से एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण किस तरीके से करें। ठीक वैसे ही लता दीदी ने भी अपनी सारी इच्छाओं

को दमन करते हुए उस पद पर आगे गईं, जहां पर उन्हें बहुत सारी उपलब्धि तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बचपन खोया आगे की बुलंदियों को पाने के लिए। तो आइए लता दीदी के इस प्यारे से एक गीत के साथ, जो कि उन्होंने अलग अलग स्वरों में अलग अलग पहचान के रूप में गाए हैं। कई गाने तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे देशभक्ति गीत हो गया, बेवफाई सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया, या फिर किसी को मनाने का सॉन्ग हो गया। आज का जो हमारा दौर हो रहेगा, आज का जो सफर रहेगा, वो कुछ बेवफाई वाले सॉन्ग्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत एक उनकी ही आवाज़ में।

सन 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात ख्याति दिखाई। उसके बाद वे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाई। यूं ही स्वर कोकिला की उपाधि उन्हें नहीं मिली, जब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे गीतों को गाया तो हिंदी सिनेमा ने भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाया। जब उनसे मराठी गाना गवाया गया तो भी वह उसमें खरी उतरी। चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा में उन्होंने अपनी ख्याति को फैलाने के लिए बहुत कुछ अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर एकाकर एक बार उन्हें उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाने में कुछ भी पीछे नहीं रहा। लता जी ने लगभग 7 दशकों तक भारतीय संगीत जगत पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। उन्होंने शंकर जयकिशन, एसडी वर्मन, आरडी वर्मन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा उनका देशभक्ति गीत भी आज भी हर एक भारतीय को भाव विभोर कर देता है। ठीक उसी तरीके से उनके कई ऐसे पद्म भूषण वाले गाने, पद्म भूषण इसलिए क्योंकि कई संगीतकारों के साथ में जब उन्होंने काम किया तो उन्हें पद्म भूषण भी हासिल हुए। उनके योगदान को देखते हुए उनके अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लता जी की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पंडित पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के गायक व संगीतकार थे। लता जी को संगीत संस्कार बचपन से ही मिले थे। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर यानी बचपन से ही एक ऐसा बीज होता है जिसे सिर्फ वो अंकुरित होने के लिए हमें सच्चे और एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें उसको सींच सके, उस बीज को सींचने के बाद उसको अंकुरित कर सके और एक फूल की तरह हमें खिला सके। लता जी के पिताजी ने यही काम किया। उनकी सारी चीज़ों को उन्होंने अपने आप के अंदर से निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करी। उनके करियर के शुरुआत के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी कड़ी मेहनत करी कि आज लता जी वो उन्हें हमेशा से अपने जहन में रहती हैं और उन्हें याद करती हैं। पिता के निधन यानी 1942 के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। उन्होंने 13 साल की उम्र में किटी हसल 1942 फिल्म से अभिनय और गायन शुरू किया। उनकी पहली सफलता 1949 में फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला से थी। संगीत खेमचंद प्रकाश से लता जी को इस गाने से बहुत बड़ी ख्याति और बहुत बड़ी पहचान भी मिली। उनकी आवाज को स्वर कोकिला कहा गया, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 36 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में गाया, परंतु हिंदी और मराठी गीतों में उनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। लता जी ने लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए विश्व कीर्तिमान से कम नहीं रहा। इसीलिए उन्हें आज भी हम अपने जहन में, हम अपने दिल में यूं बसाए बैठे हैं, जैसे कि कोई अपनी बहुत ही प्यारी सी याद को कभी न भूलने वाला एक हिस्सा बना के रखता है। कहते हैं जब हम दर्पण देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो संगीतकार होते हैं, जैसा कि लता जी ने हमेशा से यही किया, जब वो दर्पण में देखती थी तो ऐसे कई संगीतकारों को अपने सामने पाती थी, अपने अपने सामने देखती थी कि किसी दिन मुझे ऐसे संगीतकारों के साथ मिल करके गाने गाने हैं। जिस बच्चे के अंदर अगर ये ललक है, अगर ये कोशिश है कि आगे चल करके हमें इस संगीतकार के साथ बैठ करके हमें भी गाना है, हमें भी उनकी छवि में अपने आप को डालना है, तो ही मेहनत सफलता और संघर्ष की कहानी को हम जन्म दे पाते हैं। इन सब के बीच में रही हमारी लता दीदी। आइए लता दीदी का एक और गाना सुनते हैं जो कि उन्होंने बेवफाई के रूप में गाया और बहुत ही सबको प्रिय रहा।

सारा

कहते हैं कि पुरस्कारों की छड़ी में अगर सबसे पहला पुरस्कार जब हमारे जीवन में कोई मिलता है तो हम उसे हमेशा से याद रखते हैं। ठीक वैसे ही लता दीदी को तो कई पुरस्कार दिए गए, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार जिन्हें वो हमेशा से अपने जहन से लगा के रखती थी, जो कि उनकी सम्मानित पुरस्कारों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969 में तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 से अलंकृत किया गया, क्योंकि ये पुरस्कार वो थे जिन्हें वो हमेशा अपने पास रखती थी। कहते हैं कि जब हम किसी भी उपलब्धि पे पहुंचते हैं ना, तो हमें बहुत सारे पुरस्कार तो मिलते ही हैं और हमारा घर उन पुरस्कारों से भर जाता है। लेकिन आज भी जब लता दीदी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था, तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका एक कमरा, एक से बड़ा सा हॉल जिसमें उन्होंने कई पुरस्कारों को इस तरीके से रखा है मानो उनकी जीवन भर की पूंजी हो, यानी कि किसी भी इंसान के लिए पूंजी क्या ही हो सकती है कि हमने अपने लिए ये जमीन बनाई, हमने अपने लिए इतना सोना बनाया, हमने अपने लिए इतने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन लता दीदी के लिए उनका ये पुरस्कार का दिन, ये पुरस्कार सारे उनकी महत्वपूर्ण पूंजियों में से एक रहा और उन्होंने अपने घर को बिल्कुल इस तरीके से सुशोभित करके रखा जैसे उनकी जीवन भर की पूंजी उनसे कोई छीन रहा हो। और उन्होंने अपने घर के एक कोने में, यानी कि एक बड़े से कमरे में, उन्होंने आज भी अलंकृत करके उन्हें हमेशा के लिए यादों के बीच में समेट दिया। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि लता दीदी की आवाज में है।

अमर गूंज है और हर दिल में बसी लता दीदी की आज भी मौज है। 6 फरवरी 2022 को उनका मुंबई में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत ने अपनी सबसे अनमोल धरोहर खो दी, फिर भी उनकी आवाज आज सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे हमेशा से प्रेरणा लेती रहेंगी। गायन के अलावा वे संगीतकार भी रहीं। नाम अनंत घन और मराठी फिल्मों के लिए संगीत दिया। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय कोरोना का वक्त चल रहा था, उम्र संबंधी जटिलताओं के चलते उनका निधन हुआ। उन्हें विरासत की, ये तो कहा जाता है कि उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी धरोहर मिली, एक बहुत बड़ा नाम भी मिला जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और आज उनका नाम सदैव भारतीय जगत में अमर रहने वाला है, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे यहाँ से जाकर के हमारे दिलों से तो कभी नहीं जाते हैं, लेकिन वो आसमान में जाकर के एक वो तारा बन जाते हैं जिन्हें देख करके गर्व से हम ये कह सकते हैं कि वो रही हमारी स्वर कोकिला।

सभी संगीतकारों के, जैसे कि आपने सॉन्ग सुने हैं जिसमें लता जी हैं और आशा जी हैं, आर डी वर्मन साहब जी हैं और उसके साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लेकिन लता दीदी ने जब इन सब के साथ में काम किया, इन सब के साथ में गाने गाए, तो उनको एक ही नाम से पुकारा जाता था, हमारी प्यारी लता दीदी। लता दीदी की सादगी, लता दीदी का चलन, लता दीदी की बोली इस तरीके से थी मानो सबको मोह लेने वाली। जब वो सेट पे आती थी तो एक उनकी बहुत ही प्यारी सी आदत हुआ करती थी कि जब वो कोई भी सॉन्ग को गाती थी, जब वो उनके साथ में बैठ करके रिकॉर्डिंग करती थी, तो वो चप्पल कभी नहीं पहनती थी। आप जानते हैं क्यों? बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम को पूजा के नाम से ही माना करती थी। वो कहती थी हमारा काम ही हमारी पूजा है, हमारी उपासना है। इस वजह से आज तक उन्होंने जितने भी गाने गाए थे, उन्होंने कभी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के टाइम पर कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। यहाँ तक कि जब भी वो लाइव शो करती थी, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट करती थी, तब भी वो बिना चप्पल के ही करती थी। तो ऐसी लता दीदी के साथ में ऐसी हमारी स्वर कोकिला, जो उन्हें इतनी बड़ी उपाधि यूं ही नहीं दी गई। साथ ही साथ में जब भी वो कहीं पर बड़ी से बड़े शोज में जाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो उन्हें खादी की साड़ी बहुत पसंद हुआ करती थी। सिंपल रहना, कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सेम ये स्लोगन उन पर फिट होता था। खादी की सफेद साड़ी, क्रीम कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी उनकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि सादा कपड़ा उन्हें बहुत ज्यादा ही पसंद हुआ करता था। सभी संगीतकारों के साथ जब वो काम करती थी, तो एक बार उनके जहन में ये बात आई कि हम यूं ही बिल्कुल साधारण से रहते हैं, कोई मुझे देख करके ये ना समझे कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो उनकी एक बिंदी लगाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, एक छोटी सी काली बिंदी लगाती थी, बस तब क्या था, उनकी खूबसूरती में, उनकी सादगी में चार चांस लग गए थे। संगीत के साथ साथ उनकी सादगी इस तरीके से फैली जैसे मानो सूर्य की किरणें पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जब फैलती है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। बेवफाई के बहुत सारे गाने जब उन्होंने गाए, तो उनमें से कुछ ऐसे गाने जो आज के शो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, एक और प्यारा सा गाना।

अगर हम बात करें लता दीदी के शुरुआती दिनों में, तो उनकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें सामने आती हैं कि जिसके पीछे उनका ये बुलंदी वाला जो सफर रहा, उन्हें पाना वो वाकई में डिजर्व करती थी। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी तो उन पर आ ही गई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर शुरुआती वर्षों में उन्हें कई बार ये भी कहा गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है और उन्हें अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा मेहनत और अभ्यास भी करना पड़ेगा। काफी पृथक प्रयासों से उन्हें इस आवाज जो आज तक हमारे जहन पे है, काफी प्रयास करने के बाद में, काफी अभ्यास करने के बाद में इस आवाज को वो सभी के सामने प्रभावित कर पाई। साथ ही साथ में तब से और आज तक उन्होंने कई ऐसे फिल्में की जैसे बरसात, आंदोलन, बाजार, आशियाना जैसी फिल्मों में गा करके अपनी पहचान को आगे बढ़ाया। ये थी पहचान उनके शुरुआती तौर पर। 1949 में फिल्म महल का गाना आने वाला आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और फिर उन्हें रातों रात उपलब्धि मिल गई थी। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल हर शैली में अपनी आवाज दी और फिर उन्होंने कुमार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ में अपनी आवाज को कई विविधताओं के रूप में प्रस्तुत किया। 90 के दशक में भी लता जी ने हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में गाकर यह साबित किया कि उनकी आवाज हमेशा जवां ही रहेगी। दीदी तेरा देवर दीवाना और तेरे लिए जैसे गाने आज भी सुपरहिट है, जो कि हर एक शादी में अगर ये गाने ना चलें तो वो शादी अधूरी सी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए हमने कई बार उन्हें सम्मानित होते हुए देखा और सुना है। लता दीदी ने विदेशों में भी कई ऐसे कार्यक्रम और शोज किए जो दुनिया भर में भारतीय संगीत का मान बढ़ाते रहे और हमेशा उनके लाइव शो हम जब आज देखते हैं तो मान बढ़ाएंगे ही। उन्हें भारत की नाइटिंगेल और क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उनकी आवाज में।

स्वर्णिम युग की बात करें तो 1955 से लेकर के 1975 के बीच में उनका स्वर्णिम युग कहलाता है। इस दौर में लता दीदी ने संगीतकार शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बहुत सारे ऐसे ख्याम के साथ में मिलकर के सदाबहार गीत गाए, इस जो कि गाने आज भी हिट नहीं सुपरहिट माने जाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम और साथ ही साथ में अजीब दास्तां है ये, दिल अपना और प्रीत पराई, लग जा गले वो कौन थी, ए वतन के लोगों जिसने पूरे देश को रुला दिया, पंडित नेहरू की भी आंखें भर आई थीं जब लता दीदी ने ये गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। साथ ही साथ में जब उनकी सफलता और विविधता आगे बढ़ती गई तो कई ऐसे सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में भी जाकर के उन्होंने कई ऐसे गीत और कई ऐसे गानों को गाए जो कि आज हमारे जहन में हमेशा से रहते हैं। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल हर शैली में अपनी आवाज को इस तरीके से पहुंचाया जैसे मानो कि हम उन्हें सदियों से खोज रहे थे और आज वो हमें मिल पाई हैं। नई पीढ़ी के साथ में अगर हम बात करें 1990 से लेकर के 2010 के बीच में तो कई ऐसे संगीतकार भी उनके साथ में आए तो भी उनके साथ मिलकर के कई उन्होंने गाने गाए जैसे कि हमारी श्रेया घोषाल जी हैं और उनके साथ में भी उन्होंने कई सारे गीतों को अपनी आवाज दी। तो आइए इस प्यारे से एक और गीत को सुनते हैं जो कि बेवफाई के नाम पर कई हम सबके जहन में आज भी रहते हैं।

स्वरों की देवी लता मंगेशकर दीदी को शत शत नमन। उनकी मधुर आवाज सदा हमारे दिलों में यूं ही गूंजती रहेगी। लता दीदी सिर्फ गायिका नहीं बल्कि सुरों की वह गंगा थीं जिनका प्रभाव हमेशा हम सबके जहन में रहेगा। उनकी आवाज हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं और हमारी धरोहर भी हैं। लता दीदी हमारे संगीत की आत्मा हैं, जिन्होंने अपने स्वरों से पूरी दुनिया को बांध के रखा हुआ है। उनकी गायकी हमें भक्ति, प्रेम और जीवन के हर रंग का अनुभव कराती है। इसी तरीके से आज का सफर, यानी कि आज का सफर हमारा लता दीदी के साथ उनकी यादों को लेकर के था। मैं हूं आपकी आज एक ख्वाहिश, मिलूंगी एक नए सफर पे, एक नए संगीत के साथ में, एक नए गायक के साथ में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।